सुप्रभात, हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। आज वीरवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 14वीं तिथि, तदनुसार 2 जून सन 2026।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 5:59 हुए हैं। हमारी आज की सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम में सबसे पहले ज्ञान ज्योति।

जी हाँ, संत जन कहते हैं कि ईश्वर भक्ति ही जीवन का सच्चा धन है। अगर हम इस धन को नकार कर

बहुत खेद अनुभव होता है। तो उस स्थिति तक आने से पहले हमें ईश्वर ध्यान की तरफ अपना मन लगाना चाहिए, ताकि हमारे जीवन का असली ध्येय सफल हो सके। इसी के संदर्भ में एक लघु कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार श्रीनिवास नायक नामक एक अत्यंत धनी आभूषण व्यापारी थे। उनके हृदय में दया और करुणा का अभाव था। वे इतने कंजूस थे कि किसी निर्धन को एक मुद्रा देना भी उन्हें भारी लगता था। दूसरी ओर उनकी पत्नी सरस्वती बाई अत्यंत धार्मिक, दयालु व भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। एक दिन भगवान विष्णु ने श्रीनिवास नायक को सही राह दिखाने का निश्चय किया। वह एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उनकी दुकान पर पहुंचे और अपने पुत्र के उपनयन संस्कार के लिए सहायता मांगी। श्रीनिवास ने उन्हें अपमानित कर लौटा दिया। ब्राह्मण जब उनकी पत्नी के पास पहुंचे, तब सरस्वती बाई ने अपनी सोने की नथनी उन्हें दे दी। ब्राह्मण उसी नथनी को लेकर श्रीनिवास की दुकान पर पहुंचे और उसके बदले में श्रीनिवास से कुछ धन देने की याचना की। नथनी को देखते ही श्रीनिवास नथनी को पहचान गए कि ये नथनी तो उनकी पत्नी की है, और ये इस व्यक्ति के पास कहाँ से आई। ये सोचकर श्रीनिवास क्रोधित होकर घर पहुँचे व पत्नी से नथनी मांगी। भयभीत सरस्वती बाई ने भगवान से प्रार्थना की, तभी चमत्कार हुआ, उनके सामने वही नथनी प्रकट हो गई। यह दृश्य देखकर श्रीनिवास नायक स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया कि धन और अहंकार क्षणभंगुर हैं, जबकि ईश्वर की भक्ति ही जीवन का सच्चा धन है। उसी क्षण उन्होंने अपना समस्त वैभव त्याग दिया और आगे चलकर महान संत पुरंदर दास बने। जी हाँ, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि धन और वैभव का अहंकार करना व्यर्थ है। ये चीज़ें तो क्षण भंगुर हैं। हमें तो उस चीज़ का धन कमाना चाहिए जो सदैव हर परिस्थिति में हमारा सहारा बनती है, और वो सहारा है ईश्वर का स्मरण, और वही हमें सच्चा सुख भी देता है। तभी तो संत जन कहते हैं कि भजमन राम चरण सुखदाई।

भजमन राम चरण सुखदाई। जी हाँ, राम ये छोटा सा शब्द है, लेकिन इसकी महिमा बहुत अपरंपार है। संत जन कहते हैं कि हमें ईश्वर से धन संपत्ति या अन्य इच्छाओं की कभी भी मांग नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ मांगना है तो बस यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सारे जहां के मालिक, आपका जब भी कुछ बिखेरने का मन करे तो मेरी चिंताओं को बिखेर देना, कुछ बुझाने का मन करे तो मेरी घृणा बुझा देना, आपका कुछ समेटने का मन करे तो मेरे बिखरे हुए विश्वास को समेट लेना, कुछ बहाने का मन करे तो मेरी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहा देना, आपका कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना, आपका कुछ मारने का मन करे तो मेरी इच्छाओं को मार देना, और हे मेरे प्रभु, आपका कुछ थामने को मन करे तो भटकते हुए मेरे हाथ थाम लेना, क्योंकि मैं शब्द तुम अर्थ, तुम बिन सब व्यर्थ। जी हाँ, यही प्रार्थना हर समय हमारे मन में ईश्वर के प्रति होनी चाहिए, तभी प्रभु हम पर करुणा करेंगे। हमें बस यही मांगना चाहिए कि हे प्रभु, चाहे जीवन का आरंभ हो या अंत हो, मुझे तो केवल और केवल आपका ही सानिध्य चाहिए।

जी हाँ, संत जन कहते हैं कि ईश्वर जगत पिता है, और जब हम करुण पुकार करते हैं ना, तो पिता का मन तो सदैव अपने बच्चों के प्रति ही आकर्षित होता है। बस हमारी प्रार्थना में इतनी ताकत होनी चाहिए कि भगवान स्वयं हमें अपने भक्तों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दें। और ये तभी संभव हो पाता है जब हम निष्काम भक्ति करते हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं। प्रभु को धन संपत्ति और ऐश्वर्य की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सारे जग को ये सब बांटते हैं। तो अगर उनको कुछ प्रिय है तो बस एक निश्चल मन और सच्ची भक्ति।

जी, भगवान के दर्शन करके ही हमें सच्चा सुख प्राप्त होता है। बेशक हम दुनिया में कितना भी धन वैभव इकट्ठा कर लें, लेकिन वो शांति हमें नहीं मिलती जो ईश्वर के दर्शन और उनके मंदिर में जाकर मिलती है। तो हमें सच्ची शांति की ही तलाश करनी चाहिए और अपने मन को ईश्वर भक्ति में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से। इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

श्री रामचरितमानस की रचना का आरंभ करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने न केवल अनेक देवों, सज्जनों तथा दुष्टों की वंदना की है, वरन काव्य सृजन में अपनी अक्षमता तथा हर प्रकार से असमर्थता भी प्रकट की है। उनकी विनम्रता की पराकाष्ठा के दर्शन उनके इस कथन में होते हैं। जो व्यक्ति धन रूपी लोभ, क्रोध और काम के गुलाम है, जो धैर्य की झूठी ध्वजा फहराने की दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोते हैं, उनमें सबसे पहले गिनती मेरी है। वे ना तो कवि होने का दावा करते हैं और ना ही चतुर और ज्ञानी। कहते हैं, मैं तो अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार प्रभु श्री राम का गुणगान करता हूं। कहां तो प्रभु का आपार चरित और कहां सांसारिक मोह माया में लिपटा मैं और मेरी आसक्ति। सुधी पाठकों तथा श्रद्धालुओं से उनका निवेदन है कि उनकी विनती सुनकर राम कथा सुनते हुए कोई उन्हें दोष ना दे।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। इसी के साथ अब आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब हम आपको जानकारी दे देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों तथा उनके प्रसारण समय की। सबसे पहले जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

प्रातः 7:05 पर आप सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर। लोक संसार कार्यक्रम सुनिएगा 7:35 पर। हिमाचल डायरी का आज का अंक हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रातः 8:30 पर। प्रातः 10:05 पर हमारी आज की लघु वार्ता का विषय रहेगा भारत सरकार की 12 वर्षों के कार्यकाल में महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं। पंजाबी फ्लेवर लाइव फोन इन कार्यक्रम सुनिएगा प्रातः 10:15 पर। लोकरंग कार्यक्रम आप सुनते हैं 10:45 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम दिन में 12 बजे तथा 12:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

0: भजन संध्या कार्यक्रम लेकर हम आपके समक्ष हाजिर होंगे शाम 5:10 पर। युव मंच कार्यक्रम सुनिएगा शाम 5:30 पर। सफर सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 6:05 पर, तथा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी का समय रहेगा 6:30। खेल जगत कार्यक्रम रात्रि 10:00 तथा 10:30 पर आप सुनते हैं रोमांटिक फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें। ये थी कार्यक्रम रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों की समय सारिणी इस प्रकार रहेगी। प्रातः 8:35 से लेकर 9:17 तक, 9:30 से लेकर 10:00 तक, दिन में 11:05 से लेकर 12:00 तक, 1:00 से लेकर 2:00 तक, 2:30 से लेकर 3:00 तक, 3:10 से लेकर 4:00 तक, रात्रि 8:00 से लेकर 8:45 तक, तथा 9:15 से लेकर रात्रि 10:00 तक हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होने वाले समाचारों व कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार से है। प्रातः 6:55 पर संस्कृत, 7:00 हिंदी समाचार, 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, प्रातः 10:00 हिंदी समाचार, दिन में 2:00 मिड डे न्यूज, 2:15 पर दोपहर समाचार, 4:00 कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, शाम 5:00 तथा 7:00 हिंदी समाचार, 7:05 पर भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 न्यूज एट 9 तथा रात्रि 11:00 हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। आकाशवाणी शिमला से अनुप्रसारित होने वाले समाचारों का विवरण इस प्रकार से रहेगा। प्रातः 9:20 पर, दिन में 11:00 तथा 3:00 प्रादेशिक समाचार, 3:05 पर जिले की चिट्ठी अथवा सामयिक चर्चा, शाम 6:00 तथा 7:45 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से अनुप्रसारित किए जाएंगे। ये थी कार्यक्रम रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित व अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। प्रातः के 6:55 होने को हैं थोड़ी ही देर में संस्कृत तथा 7:00 हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। पश्चिम एशिया संकट कारणेन वर्धितेषु इंधन मूल्येषु भारतीय विमान सेवानां कृते विमान इंधनस्य अर्थात ATF मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैल विपणन समवायेभ्यः 1,000 कोटि रूप्यकाणां आय व्यय सहायतां प्रदातुं प्रशासनं निर्णयं कृतवत्। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवोचत् यत् एतेन विमानन क्षेत्र संबद्धाः प्रायः 770,000 आजीविकाः सुरक्षिताः भविष्यन्ति। सहायता योजनेयं 36 मासपर्यन्तं प्रवर्तयिष्यते। मंत्रिमण्डलेन दिल्ली निकटवर्ती क्षेत्रे वायु प्रदूषण नियन्त्रणार्थमपि एकस्याः योजनायाः अनुमोदनं कृतम्। द्विवर्षीय योजनायां प्रायः 200,000 ट्रक यानानि 16,000 बस यानानि च प्रतिष्ठापयितुं लक्ष्यं निर्धारितम्। मंत्रिमंडलीय समित्या ओडिशा राज्ये रामेश्वरात् पारादी पर्यन्तं 63,100 किलोमीटर परिमितस्य नूतन तटीय राजमार्ग निर्माणाय अनुमतिः प्रदत्ता। एतदतिरिच्य समित्या बिहार राज्ये राष्ट्रिय राजमार्गयोः 31 तथा 31,200 च इत्येतयोः खगड़िया पूर्णिया खंडस्य चतुर्पथ परियोजनापि अनुमोदिता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां वेनेजुएला देशस्य राष्ट्रपतिना डेल्जी रोड्रिगेज इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। अस्याम् उच्चस्तरीय चर्चायां भारत वेनेजुएला संबंधानां अशेषेषु पक्षेषु मंथनं भविष्यति। सहैव ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार निवेश, स्वास्थ्य सेवा, परिवहनम्, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादिषु क्षेत्रेषु भविष्ये सहयोगस्य नूतन मार्गाणां अन्वेषणं च भविष्यति। रोड्रिगेज वर्यः भारतदेशस्य 5-दिवसीय यात्रायां ह्यः नवदिल्लीं समागच्छत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् कृत्स्ने ही विश्वे योगस्य लोकप्रियता तीव्रगत्या वर्धमाना वर्तते। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन संदेशेन प्रधानमन्त्रिणा संसूचितं यत् अद्य प्रथम वैश्विक योगासन प्रतियोगितायां सह आभासीय माध्यमेन सम्मिलितो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य सायंकाले त्रिपुरा राज्यस्य द्विदिवसीय यात्रायां अगरतला नगरं प्रति एष्यति। यात्रावधौ श्री शाह पुष्पवंत पैलेस इत्यस्य शिलान्यास समारोहे भागं ग्रहीष्यति। लंकामुरा स्थिते सीमा सुरक्षा बलस्य निरीक्षणं च करिष्यति। सहैव राज्य केन्द्रीय सुरक्षा अधिकारिभिः सह एकं उच्चस्तरीय उपवेशनं करिष्यति। गृहमन्त्रिणः यात्रां वीक्ष्य त्रिपुरा प्रशासनेनापि एका उच्चस्तरीया प्राशासनिक सुरक्षा सीमा सभा आयोजिता। राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां मालवीय नगरस्य एकस्मिन् विश्रांति निलये भीषणाग्निकाण्डे 21 जनाः मृत्युमुपगताः, अनेके च जनाः व्रणिताः अभवन्। दक्षिण दिल्ली आरक्षी विभागस्य उपायुक्तः अनंत मित्तलः अवोचत् यत् अग्निशमन विभागस्य 8 वाहनैः सह अग्निः नियन्त्रितः। आरक्षिणाम् अग्निशमनस्य तथा अन्य आपत्कालिक सेवानां संयुक्त प्रयत्नैः 40 जनाः सुरक्षित रूपेण उद्धृताः, चिकित्सोपचारार्थं च चिकित्सालयेषु प्रेषिताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी घटनामुद्दिश्य गहनं दुःखं व्यक्तीकृतवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, गृहमंत्री अमित शाहः तथा दिल्ली राज्यस्य मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपि अस्मिन् दुःखदे घटनाक्रमे शोकं प्रकटितवन्तः। सर्वैः नेतृभिः शोक संतप्त परिवारान् प्रति गहन संवेदना व्यक्तीकृता। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 5 की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर भारत की 2 की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। उनका आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए गए नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के अधिकारी शिवाजी माजी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना में सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन से बदली जाएंगी।
3: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
2: नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही अवैध संपत्तियों, अनाधिकृत गेस्ट हाउसों और अग्नि सुरक्षा नियमों तथा भवन उपनियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ पूरे शहर में विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:05 हुए हैं।
4: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
5: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
6: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
5: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
7: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
8: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: का टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 7:07 और पूरे 34 सेकंड्स हो चुके हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

सुप्रभात। हमीरपुर कार्यक्रम लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ, आपकी रेडियो दोस्त अंजू शर्मा। और आज भी बहुत सारी जानकारियाँ और ढेर सारा मनोरंजन लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। जी श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हर सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं आज के विचार से। तो आज का विचार ये है कि इस संसार में जब जहाँ जो और जैसे छूटना है वो आपसे छूट कर ही रहेगा, चाहे वो धन हो, दोस्ती हो, संबंध हो या सांसें हो, सबका समय पहले से तय है। लेकिन ताजुब की बात है कि प्रकृति इन घटनाओं की जिम्मेदारी स्वयं नहीं लेती, वो किसी व्यक्ति विशेष को मोहरा बनाकर आपसे वो चीज़ें करवा लेती है जो पहले से ही तय होती हैं। हम तो बस किरदार हैं, कहानी तो बहुत पहले लिखी जा चुकी है। इसलिए किसी चीज़ को खोने का शोक ना मनाएं। जाने वाले या जो चीज़ हमसे छूट रही है उसको रास्ता और नए लोग या नए अवसर जो हमारे जीवन में आ रहे हैं ना, उनका स्वागत करो। यही जिंदगी है, क्योंकि अगर हम बीती बातों में जीना शुरू कर देते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी कहीं ना कहीं वहीं पर थम कर रह जाती है। लेकिन विद्वान जन कहते हैं कि चलना ही जिंदगी है, क्योंकि अगर रुक गए तो कहीं ना कहीं जिंदगी का अच्छा वक्त भी वहीं पर थम जाता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि बीती बातों को भुलाकर आगे बढ़ा जाए और जिंदगी के हर पल को खुशहाल बनाने का प्रयत्न किया जाए। इसी में ही हमारी जिंदगी का असली आनंद छुपा हुआ है।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही है। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य स्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: जी, इस विज्ञापन से पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया उसे हमने लिया था फिल्म कस्मे वादे से, और गायक कलाकार थे अमित कुमार, किशोर कुमार और आशा भोंसले। सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में अब वक्त है जानकारियों का सिलसिला

जी हाँ, ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार जून 2 किसी वर्ष में दिन संख्या 153 है और यदि लीप वर्ष है तो दिन संख्या 154 है। जी हाँ, आज 2 जून का दिन सन 2026 में दिन संख्या 153 के अंतर्गत आता है। भारत और विश्व इतिहास में 2 जून का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। जी श्रोताओं, हम आपको जानकारी देंगे ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, साथ ही जानेंगे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्तियों के बारे में और जो महान हस्तियां आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गई थी उनकी बात करेंगे, और साथ ही 2 जून के कुछ महत्वपूर्ण अवसरों की बात भी हम आपके साथ करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं 2 जून के दिन इतिहास में घटी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की।

जी श्रोताओ, इतिहास के पन्नों को अगर खंगाला जाए और बात की जाए सन 1746 की, तो रूस और ऑस्ट्रिया ने 2 जून सन 1746 में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे।

जी, अमेरिका में पहली बार मद्यपान निषेध कानून सन 1851 को लागू किया गया था और अल्फ्रेड डेकिन लगातार तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री सन 1909 में चुने गए थे। लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने सन 1947 को 2 जून के दिन भारत के विभाजन की घोषणा की थी और ब्रिटिश राजगद्दी पर महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की ताजपोशी हुई थी सन 1953 में। अमेरिका ने सन 1966 में अपने पहले ही प्रयास में चांद पर अंतरिक्ष यान उतारा था। दक्षिण एवं उत्तर कोरिया के बीच उच्च स्तरीय वार्ता पर सहमति भी आज ही के दिन सन 1999 में हुई थी और भूटान में टीवी प्रसारण की शुरुआत भी आज ही के दिन हुई थी। सन था सन 1999। ऑस्ट्रेलियाई मॉडल जेनिफर हॉकिंस मिस यूनिवर्स बनी थी सन 2004 को और भारत सरकार ने सन 2011 में शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोंपड़ियों से मुक्ति दिलाने और गरीबों को अपने घर का सपना पूरा कराने में सहायता के लिए राजीव गांधी आवास योजना के पहले चरण को मंजूरी दी थी और सन 2014 में आज ही के दिन तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था।

जी 2 जून के दिन जन्मे चर्चित व्यक्तियों की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर का जन्म 2 जून सन 1930 में हुआ था। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ अनंत गीते का जन्म सन 1951 में हुआ था और भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशकों में से एक मणि रत्नम का जन्म सन

1855 में हुआ था। भारतीय उपक्रमी नौकरशाह नेता और प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के सह संस्थापक सदस्यों में से एक नंदन नीलेकणी का जन्म सन 1955 में हुआ था। तीरंदाज महिला खिलाड़ी डोला बनर्जी का जन्म सन 1980 में हुआ था और बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा का जन्म सन 1987 में हुआ था।

जी, और जो महान हस्तियाँ आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गई थी, उनकी अगर हम बात करें तो पद्म भूषण से सम्मानित भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्राण कृष्ण पारिजा का निधन सन 1978 में हुआ था। भारतीय राजनीतिज्ञ एवं ब्रिटिश भारत उड़ीसा प्रांत के मुख्यमंत्री विश्वनाथ दास का निधन सन 1984 में हुआ था। भारतीय निर्माता निर्देशक अभिनेता राज कपूर का निधन सन 1988 में हुआ था और फैशन गुरु इवेंसा लॉरेन का निधन सन 2008 में हुआ था।

जी श्रोताओं, और आज के दिन के कुछ महत्वपूर्ण अवसरों की अगर हम बात करें तो आज आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। जी, इस जानकारी के बाद कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर में वक्त है आपको एक और गीत सुनवाने का। जी हाँ, गीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन इस छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी।
1: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
6: जी श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं बॉबी फिल्म का ये बहुत ही बेहतरीन गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी श्रोताओ, इस गीत के बाद हम आपसे इस बात के लिए क्षमा मांगना चाहेंगे कि आज का इतिहास जो हमने जो आपको जानकारी दी, ये हमने आपको 4 जून के इतिहास की जानकारी दी थी और 4 जून के हिसाब से ग्रेगोरी कैलेंडर कहता है कि आज 155वां दिन है। तो श्रोताओ, इस क्षमा प्रार्थी हैं इस भूल के लिए हम, और जानकारी हमने आपको 4 जून की ही दी थी। और आज के सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में अब वक्त है आपको कुछ ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी देने का। जी श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जून सन 2026 को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवाएं देने वाले लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार कार्यकाल वाले 64 साल पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगे। एक अन्य खबर के अनुसार CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर 44,000 विद्यार्थियों के आवेदन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया कि 12वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए पिछले कल यानी बुधवार दोपहर तक 44,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया। बोर्ड के अनुसार इनमें 4,924 आवेदन सत्यापन और 39,056 पुनर्मूल्यांकन के लिए हैं। इसके साथ साथ CBSE ने यह भी बताया कि पोर्टल पर भुगतान के लिए SBI, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा इंडियन बैंक के पेमेंट गेटवे उपलब्ध हैं। इन बैंकों में खाता होना ज़रूरी नहीं है। जी श्रोताओं, तो ये तो थी कुछ समाचार पत्रों की ताज़ा तरीन जानकारियाँ जो हमने आप तक पहुँचाई। अब वक्त हो रहा है प्रातः के 7:35 और ये समय है आज के लोक संसार कार्यक्रम का।

लोक संसार कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। जी श्रोताओं, आज के लोक संसार कार्यक्रम में हम आपको हिमाचल से जुड़ी जानकारी भी देंगे और साथ ही ज़िला हमीरपुर की कुछ ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी भी रहेगी और साथ ही कुछ प्यारे प्यारे लोकगीत तो हम आपको सुनवाएंगे ही। जी हाँ, तो सबसे पहले वक्त है कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आप तक पहुंचाने का। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम हिमाचल प्रदेश के पानी के प्राकृतिक स्रोतों जैसे बावड़ियाँ, खातरियाँ, कुएँ और हमारे जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं, इनके बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। जी, हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और भौगोलिक परिवेश में यहाँ के प्राकृतिक जल स्रोत सिर्फ पानी की ज़रूरत पूरी नहीं करते, बल्कि ये यहाँ की जीवन रेखा और आस्था के केंद्र भी हैं। पहाड़ों में पानी के इन प्राकृतिक और पारंपरिक स्रोतों को स्थानीय भाषा में कुएं, बावड़ियाँ, खातरियाँ और प्राकृतिक स्रोत जो पानी के हैं, झरने या फिर खड्डे भी कहा जाता है। इनके बारे में जब हम आपको जानकारी देने की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे बावड़ियों के बारे में। जी, पहाड़ी क्षेत्रों में बावड़ी जल संरक्षण का सबसे सुंदर और वैज्ञानिक उदाहरण है। इसकी बनावट और तकनीक की अगर हम बात करें तो ये केवल एक पानी का गड्ढा नहीं होता, बल्कि पत्थर की दीवारों से तराशा हुआ एक छोटा सा तालाब या कुआं होता है, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी होती हैं। पहाड़ों के भीतर से रिसने वाला शुद्ध पानी यानी नेचुरल सीपेज इसमें धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है और हिमाचल में इन बावड़ियों को बहुत पवित्र माना जाता है। अक्सर बावड़ी के मुहाने पर शेषनाग या गंगा मैया की मूर्ति या चित्र उकेरा जाता है, जहां से पानी बाहर आता है। लोग यहां जूते उतार कर आते हैं और शादियों या त्योहारों के समय बावड़ी पूजन की भी परंपरा है।

जी हाँ, और इसके वैज्ञानिक पहलू की अगर हम बात करें तो पत्थरों पर और जो चट्टानों पर पानी गिरता है ना, वो चट्टानों से छन कर आने के कारण इस पानी का तापमान मौसम के विपरीत रहता है। और अगर बात करें इसके विपरीत तापमान को और विस्तार में समझाने की, तो सर्दियों में ये पानी गुनगुना और गर्मियों में एकदम ठंडा रहता है। ज़िला बिलासपुर, कांगड़ा और हमीरपुर में आज भी कई ऐतिहासिक बावड़ियाँ मौजूद हैं। जी, और हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण की पारंपरिक प्रणालियों में खातरी वास्तुकला और जल प्रबंधन का एक अद्भुत और बेजोड़ उदाहरण है। विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी ज़िलों के पथरीले और शुष्क इलाकों में ये आज भी पीने के पानी का एक बेहद विश्वसनीय स्रोत हैं। खातरी की अनूठी बनावट, कार्य प्रणाली और इसके महत्व की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि खातरी होती क्या है, इसका स्वरूप कैसा है। जी श्रोताओं, खातरी कोई आम कुआं या प्राकृतिक जलधारा नहीं है। ये चट्टानों को काटकर बनाई गई एक मानव निर्मित भूमिगत गुफा या चैम्बर होती है। पहाड़ी इलाकों में जहाँ नदियाँ बहुत गहराई में बहती हैं और पारंपरिक कुएं खोदना भी मुमकिन नहीं हो पाता, वहाँ सदियों पहले स्थानीय लोगों ने बारिश के पानी को सहेजने के लिए इस अनूठी तकनीक का आविष्कार किया था। खातरी की बनावट पूरी तरह से स्वदेशी इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक सोच पर आधारित होती है। इसे ढलानी पहाड़ों की मजबूत अभेद्य चट्टानों को भीतर की तरफ क्षैतिज या थोड़ा नीचे की ओर तिरछा काटकर बनाया जाता है। खातरी का एक छोटा सा प्रवेश द्वार होता है जिससे भीतर जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियां बनी होती हैं। ये देखने में एक छोटी सी गुफा जैसी लगती हैं। ये प्राकृतिक फिल्टर प्रणाली पर आधारित होती हैं। जी हाँ, खातरी के ऊपर पहाड़ी पर जब बारिश होती है तो पानी चट्टानों के बारीक छिद्रों और परतों से छनकर धीरे धीरे नीचे की ओर रिसता है। खातरी की छत और दीवारों से ये पानी बूंद बूंद करके टपकता है और नीचे बने हौद यानी पूल में इकट्ठा हो जाता है। चट्टानों से छनकर आने के कारण ये पानी पूरी तरह शुद्ध और मिनरल से भरपूर होता है। जी, और हम आपको बता दें कि ये खातरियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहली वर्षा जल आधारित, जिनमें केवल बारिश का पानी चट्टानों से रिसकर इकट्ठा होता है और ये मुख्य रूप से पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्राकृतिक स्रोत आधारित जो खातरियाँ हैं, इनका रूप रहता है जो किसी भूमिगत जल के पास खोदी जाती है जिससे उसमें साल भर पानी बना रहता है। जी हाँ, पहाड़ी जनजीवन में खातरी का विशेष महत्व केवल पानी की उपलब्धता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके कई सामाजिक और पर्यावरणीय आयाम हैं। अद्भुत तापमान नियंत्रण की जब बात करते हैं तो खातरी के पानी की सबसे बड़ी विशेषता भी यही है कि ये गर्मियों में बर्फ जैसा ठंडा पानी और कड़कड़ाती सर्दियों में गुनगुना यानी हल्का गर्म पानी से हमें हमारे जीवन को एक पूर्णता देता है। और ऐसी भूमिगत संरचना और चट्टानों के प्राकृतिक इंसुलेशन के कारण ये सब होता है। और संकट काल का सारथी भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि ये सूखे में मददगार भी होती हैं। गर्मियों के महीनों में जब पहाड़ी नाले, खड्ड और बावड़ियाँ सूख जाती हैं, तब भी खातरी में पानी उपलब्ध रहता है।
चट्टानों के भीतर होने के कारण इस पानी का वाष्पीकरण नहीं होता और पानी लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। पुराने समय की अगर हम बात करें तो गांव के संपन्न लोग अपने घरों के पास निजी खातरी बनाते थे, जबकि पूरे गांव के लिए एक सांझी खातरी होती थी। इसके निर्माण में सामूहिक श्रम का उपयोग किया जाता था। इसकी पवित्रता की अगर हम बात करें तो खातरी के पानी को गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है और इसके भीतर भी जूते पहनकर जाना या कपड़े धोना सख्त मना होता है। पानी निकालने के लिए भी एक साफ बर्तन तय होता है जिससे इसकी स्वच्छता बनी रहती है।

स्थानीय कुओं की जब हम बात करते हैं तो मैदानी इलाकों के गहरे कुओं के विपरीत पहाड़ों में कुएं थोड़े अलग होते हैं। ये अक्सर उन जगहों पर बनाए जाते हैं जहां ज़मीन के नीचे पानी का स्तर थोड़ा ऊपर हो या किसी प्राकृतिक झरने के नज़दीक हो। पहाड़ी गांवों में ये कुएं पीने के पानी का मुख्य जरिया हुआ करते थे। इनकी देखरेख पूरा समुदाय मिलकर करता था। मॉनसून के बाद इनकी सफाई करना और चूना डालना एक सामुदायिक उत्सव की तरह होता था। और खड्डों की अगर हम बात करें तो खड्ड हिमाचल के जनजीवन और भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। पहाड़ों के बीच से बहने वाले बड़े नालों या छोटी बरसाती नदियों को स्थानीय भाषा में खड्ड कहा जाता है, जैसे बिलासपुर की अली खड्ड, सीर खड्ड या कांगड़ा की विभिन्न खड्डें। इनमें से कई बारहमासी होती हैं जो ग्लेशियर या बड़े झरनों से निकलती हैं और कुछ बरसाती होती हैं। खड्डों का पानी पहाड़ी खेती के लिए वरदान माना जाता है। खड्डों के पानी को मोड़ने के लिए पत्थरों और मिट्टी से छोटे छोटे कच्चे बांधकर जिन्हें कुल्ह कहा जाता है, इन कुल्हों के जरिए पानी को पहाड़ों की ढलानों से होते हुए नीचे खेतों तक पहुंचाया जाता है और ये सिंचाई की एक प्राचीन और अद्भुत स्वदेशी तकनीक है। जी श्रोताओ, आज के समय की अगर हम बात करें तो आज के समय में जब हर घर में नल और पाइपलाइन से पानी पहुंच रहा है तो थोड़ी सी इन ऐतिहासिक जो प्राकृतिक स्रोत हैं इनकी उपेक्षा होने लगी है। बहुत सारे कुएं, बावड़ियां या खातरियां गाद भरने या पहाड़ी दरकने या देखरेख ना होने के कारण बंद हो रही हैं। हालांकि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में जब गर्मियों में वाटर सप्लाई ठप हो जाती है तब ये पारंपरिक खातरियां आज भी ग्रामीणों की प्यास बुझाती हैं। जल संकट से निपटने के लिए इस प्राचीन और पर्यावरण अनुकूल रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक को सहेजना और पुनर्जीवित करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हम बार बार यही कहते हैं कि जल है तो कल है और हमारी ये खातरियाँ और सभी प्राकृतिक पानी के जो स्रोत हैं ना, ये हमें शुद्ध जल भी देते हैं और हमारे जीवन को सिंचित भी करते हैं। तो इनकी उपेक्षा करने की बजाय इनका संरक्षण हम सबको मिलजुल कर करना चाहिए। जी श्रोताओं, इस जानकारी के बाद अब कार्यक्रम में आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

जी श्रोताओं, इस लोकगीत के बाद अब कार्यक्रम लोक संसार में वक्त है आपको जिला हमीरपुर से जुड़ी कुछ ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी देने का।

जी, पहली खबर की अगर हम बात करें तो विज्ञान समर्पित कॉलेज के निर्माण का रास्ता साफ, 80 कनाल भूमि पर किया जाएगा निर्माण। वन विभाग से मिली मंजूरी, महकमे के पास जमा करवाना होगा 3 करोड़ का फंड। जी हाँ, एजुकेशन हब हमीरपुर में प्रस्तावित विज्ञान समर्पित महाविद्यालय के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। 80 कनाल भूमि पर निर्माण के लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत आवश्यक मंजूरी मिल गई है और मंजूरी मिलने के साथ ही परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। दुकानों का लाइसेंस बनवाने का शुल्क हुआ दोगुना। जी हां, नगर पंचायत भोटा के तहत अब दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस बनवाने के लिए दोगुना शुल्क चुकता करना होगा। ट्रेड लाइसेंस बनवाने के लिए अब दुकानदारों को 100 रुपये देने होंगे। नगर पंचायत के तहत पिछले वर्ष 175 दुकानदारों ने अपना पंजीकरण करवाया था। पिछले वर्ष ये शुल्क 50 रुपये था।

एक अन्य खबर के अनुसार महिलाओं के हाथों से बने उत्पादों को मिला डिजिटल बाजार। ऑनलाइन वेबसाइट से जुड़े जिले भर के स्वयं सहायता समूह अब ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से हो सकेगी बिक्री। जी हां, हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के लगभग 6 ब्लॉकों से स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं अब विभिन्न ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म पर स्वदेशी उत्पाद बेच सकेंगी। महिलाओं को की सुविधा के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण यानी DRDA की तरफ से शुरू किया गया ये अभियान, और पंजीकरण अभियान जो ये शुरू किया गया था ये अब पूर्ण हो चुका है, और इसके तहत 360 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए पंजीकरण करवाया है। अब महिलाएं उत्पादों के फोटो और वीडियो ऑनलाइन अपलोड करके उन्हें बेच सकेंगी। नशे की समस्या पर विद्यार्थियों से संवाद करेंगी उपायुक्त गंधर्व राठौर। जी हां, नशा मुक्त हिमाचल के अभियान के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 12 जून को उपायुक्त कार्यालय परिसर के बचत भवन में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें उपायुक्त गंधर्व राठौर स्कूली बच्चों के साथ सीधा संवाद करेंगी। जी श्रोताओं, तो ये तो थी कुछ ज़िला हमीरपुर से जुड़ी खबरों की जानकारी जो हमने आप तक पहुंचाई। अब कार्यक्रम में वक्त है आपको एक और लोकगीत सुनवाने का। आइए सुनते हैं हंसराज का गाया हुआ ये लोकगीत।

जी श्रोताओ, इस लोकगीत के साथ ही अब आज का लोक संसार कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की हमें दीजिए अनुमति।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रही हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
6: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शाह।
5: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
7: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त और ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक है। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
5: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
9: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिसे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
10: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करके ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष करके रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
9: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2000

0: इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
2: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जाँच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
1: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिन्दुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को

हिमाचल डायरी के आज के अंक में आप सभी का बहुत स्वागत। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में। सबसे पहली खबर की अगर हम बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए हिमाचल की 26 शख्सियतें सम्मानित। जी हाँ, विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए हिमाचल प्रदेश के 26 गणमान्य लोगों को सम्मानित किया। शिक्षा, चिकित्सा, उद्यम, कारोबार, संस्कृति और समाज सेवा से जुड़े क्षेत्रों से जुड़ी इन शख्सियतों को सम्मानित किया गया। और इस अवसर पर हिमाचल के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने इन शख्सियतों को पुरस्कृत किया। एक अन्य खबर के अनुसार पीजीटी के 714, डीपीई के 102 पदों के लिए जल्द होगी एलडीआर भर्ती।

नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की आचार संहिता खत्म होते ही प्रदेश में नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की पदोन्नति और भर्ती प्रक्रिया को गति देने के लिए सरकार जल्द ही 714 पीजीटी और 102 डीपीई पदों पर एलडीआर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में लंबे समय से खाली चल रहे शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों के 230 पदों को भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय स्तर पर रिक्तियों की सूची तैयार होने के बाद मामला अब सरकार के पास पहुंचा है। इन 230 पदों में 80 शिक्षकों के पद और करीब 150 गैर शिक्षक कर्मचारियों के पद शामिल हैं और इसके साथ ही

0: इस जूनियर इंजीनियर जो लोक निर्माण विभाग के हैं, इनको पदोन्नत कर असिस्टेंट इंजीनियर बनाया गया है। इसके साथ ही विभिन्न विभागों में 300 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो सकती है। शिक्षकों के लिए अब फेस रिकॉग्निशन हाजिरी जरूरी। जी हां, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए फेस रिकॉग्निशन बायोमेट्रिक पर हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। चूक पर कार्यवाही की जाएगी। पिछले कल यानी बुधवार को स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। शिक्षकों को अब स्कूल पहुँचते और निकलते समय बायोमेट्रिक से हाजिरी जरूरी कर दी है। सभी स्कूलों में 10वीं 12वीं को छोड़कर दिसंबर में होंगी वार्षिक परीक्षाएं। जी हां, हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में अब 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को छोड़कर सभी कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं दिसंबर में होंगी। अभी ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों में परीक्षाएं मार्च में होती हैं और अप्रैल में यहाँ नया सत्र शुरू होता था। शीतकालीन स्कूलों में पहले से ही दिसंबर में वार्षिक परीक्षाएं होती आ रही हैं। अब नई व्यवस्था के तहत पूरे प्रदेश में नॉन बोर्ड कक्षाओं का फरवरी में नया सत्र शुरू होगा और इसके बारे में पिछले कल यानी बुधवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में ये फैसला किया गया है। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश में 6 जून तक मौसम खराब बना रहेगा। 7 जून से धूप खिली रहने की संभावना है। हिमाचल डायरी के आज के अंक में बस इतना ही। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। प्रातः के 8:35 हुए हैं। अब से लेकर 9:17 तक हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम
1: और यशिका सिक्का की आवाजें थी।
2: पत्थर है वो, मुझे रोक टोक कहते हैं लोग, पर मोम सा है मेरा जान।
1: पुष्पा 2 फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल की आवाज में।

0: श्रेया घोषाल की आवाज में आप सुन रहे थे पुष्पा 2 फिल्म का गीत। रकीब आलम के बोल थे और देवी श्री प्रसाद का संगीत था। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

धुरंधर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं सतेंद्र सतराज और जैस्मिन सैंडल्स की। इस गीत को सतेंद्र सतराज और जैस्मिन सैंडल्स ने मिलकर लिखा और संगीत से संवारा था इस गीत को शाश्वत सचदेव ने। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा इस समय आप सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से अंतराल का।

जुबिन नौटियाल और सुवर्णा तिवारी की आवाजों में आप धड़क टू फिल्म का गीत सुन रहे थे। तनिष्क बागची ने इस गीत को संगीत से संवारा था। आइए अब सुनते हैं बॉर्डर टू फिल्म का ये गाना। आवाजें हैं सोनू निगम और पलक मुछाल की।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

दोस्तों, इस संदेश के पहले जो गीत आपने सुना था उसे हमने बॉर्डर टू फिल्म से लिया था। आवाजें सोनू निगम और पलक मुछाल की थी। जावेद अख्तर और मनोज मुंतशिर ने मिलकर इस गीत को लिखा था और अनु मलिक और मिथुन ने इस गीत की धुन बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से।

विशाल मिश्रा की आवाज में हक फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कौशल किशोर ने इस गीत को लिखा था, विशाल मिश्रा ने इस गीत की धुन बनाई थी। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है कि एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं गदर 2 फिल्म का गाना। अरिजीत सिंह की आवाज में सईद कादरी की बोल है मिथुन का संगीत।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में गदर टू फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों, आज इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन यानी दिवस है, यानी हिंसा और आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। बच्चों की दुनिया सपनों और उम्मीदों से भरी होती है, उनकी सुरक्षा, प्यार, दुलार, शिक्षा उनका अधिकार है। लेकिन जब हिंसा और संघर्ष जीवन में प्रवेश करता है तो सबसे अधिक प्रभावित बचपन होता है। बहुत सारे बच्चे अपने परिवार, घर और शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और मानसिक भावनात्मक आघात का सामना करते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन 1982 में शुरू किए गए इस दिवस का

ये प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम बच्चों को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण कैसे प्रदान करें। बच्चों की सुरक्षा सिर्फ संस्कारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की ही जिम्मेदारी नहीं, बल्कि परिवार, समाज, स्कूल की भी समान भागीदारी ये आवश्यक है। बच्चे प्रेम, विश्वास और संवाद का बच्चों को ये वातावरण मिले, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। उनकी शिक्षा, उनके शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है। उन्हें हिंसा और शोषण से बचाने के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। घर, परिवार, विद्यालय, समाज और समाज सभी की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों का उचित संरक्षण, देखभाल हो, उचित शिक्षा व्यवस्था हो, भयमुक्त, प्रेमपूर्ण वातावरण मिले, ताकि वे अपने सपनों को खुलकर जी सकें। चित्रलोक कार्यक्रम में हम आपको सनम रे फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं।

0: नजगीत की धुन बनाई थी।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
4: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
5: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
6: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
5: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
6: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
7: सखी सहेली।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम में अब समय एक और छोटे से अंतराल का है, फिर से हाजिर होंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 9:20 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी।

0: अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
3: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
2: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से गुजरात के अहमदाबाद में होगी आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे शिरकत। शिमला शहर सहित प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में भीड़ कम करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा, प्राकृतिक खेती उत्पादों के लिए अलग ब्रांड बनाकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए होगी बिक्री। भारत सरकार के खेल मंत्रालय के विकसित जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत 250 स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ। हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के 43 सीमावर्ती गांवों में हो रहा आयोजन। और कांगड़ा जिला में औषधीय फसल ब्रह्मी खेती से महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को एक मंच पर लाने का काम किया है। उन्होंने इसे योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजनकर्ताओं तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। शिमला शहर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों और जिला मुख्यालयों में भीड़ कम करने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक कल शिमला में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी उपस्थित रहे। इस दौरान शिमला शहर में भीड़ कम करने के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई, जिससे भीड़ भाड़ वाले चिन्हित स्थानों की समीक्षा कर संबंधित विभागों को उचित निर्देश दिए गए हैं। समिति ने शहर के भीतर ट्रैफिक में अवरोध और भीड़ का कारण बनने वाली मंडियों को शिमला के बाहर नवनिर्मित 4-लेन सड़क मार्ग पर स्थित उपयुक्त स्थानों पर स्थानांतरित करने पर भी चर्चा की। बैठक में बीबीएन क्षेत्र में एक नई टाउनशिप योजना और चंडीगढ़ शहर की तर्ज पर एक सैटेलाइट टाउन की स्थापना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में भूमि पूलिंग नीति को पंजाब जैसे अन्य राज्यों के अनुरूप करने के निर्णय पर विचार किया गया। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों के चलते 73,000 से अधिक किसान परिवार प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। ये जानकारी देते हुए कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि किसानों ने प्राकृतिक खेती के प्रति उत्साह बढ़ा है और उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य भी मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 732 किसानों ने 6,40,00,000 रुपये मूल्य की गेहूं और मक्की की फसल की खरीद की गई है, जिसमें इस वर्ष 4 गुना से अधिक वृद्धि की उम्मीद बनी है। चंद्र कुमार ने बताया कि सरकार प्राकृतिक खेती से बने उत्पादों के लिए अलग ब्रांड विकसित करने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सहित बड़े विपणन नेटवर्क से जुड़ने की दिशा में काम कर रही है, ताकि प्रदेश के ये उत्पाद देश विदेश के लोगों तक ऑनलाइन माध्यम से पहुँचाए जा सके। ब्रिक्स देशों के सांस्कृतिक कार्य समूह की दूसरी बैठक आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में वरिष्ठ राजनयिक, नीति निर्माता और संस्कृति विशेषज्ञ सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने और आपसी साझेदारी को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। उपमंडल नादौन के बल्ह डूहक गांव की अनु ने सिलाई कढ़ाई के हुनर को आजीविका का साधन बनाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। पुरानी सिलाई मशीनी से शुरू हुआ उनका सफर आज उन्हें प्रतिमाह 10,000 से 12,000 रुपए की आय दिला रहा है। अनु अन्य महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए भी प्रेरित कर रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता।
1: यदि मन में कुछ करने का जज्बा हो तो सीमित संसाधनों से भी आत्मनिर्भरता की राह बनाई जा सकती है। उपमंडल नदौन के बल्डू गांव की अन्नू ने सुई धागे के हुनर से ही इस बात को सच साबित कर दिखाया है कि घर की जिम्मेदारियों के बीच अन्नू ने सिलाई के हुनर को अपनी आजीविका का साधन बनाया और आज इसी काम से हर महीने 10,000 से 12,000 रुपए की आय अर्जित कर रही है। अन्नू ने न केवल खुद आत्मनिर्भरता बनी है, बल्कि गांव के अन्य महिलाओं और लड़कियों को भी सिलाई का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। त्योहारों और शादियों के सीजन में उनके पास काम की इतनी मांग रहती है कि समय निकालना ही मुश्किल हो जाता है। अन्नू की ये पहल न केवल उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही है। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: धर्मगुरु दलाई लामा को संगीत की दुनिया के प्रतिष्ठित और सर्वोच्च सम्मान ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान ने मैक्लोडगंज में प्रदान किया। ये अवार्ड उन्हें ऑडियो बुक मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए मिला है। इस ऑडियो बुक में भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ करुणा, शांति और मानवता की एकता के विचारों को प्रस्तुत किया गया है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNewsShimla_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। युवा मामले व खेल मंत्रालय ने मेरा भारत युवा के माध्यम से विकसित जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2026 के पहले चरण का शुभारंभ किया है। ये एक अग्रणी युवा नेतृत्व वाली पहल है जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर भागीदारी को सुदृढ़ करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और भारत के सीमावर्ती गांवों में सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम दो चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा जिसमें भाग लेने के लिए कुल 500 स्वयंसेवकों का चयन किया गया है। विभिन्न राज्यों से चयनित इन स्वयंसेवकों को लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के चिन्हित सीमावर्ती गांवों में दो चरणों में तैनात किया जा रहा है। प्रथम चरण में 250 स्वयंसेवक 43 गांवों में गहन गतिविधियों के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, जबकि शेष 250 स्वयंसेवक इस महीने के अंत तक 50 गांवों में द्वितीय चरण की गतिविधियों में शामिल होंगे। कांगड़ा के बैजनाथ उपमंडल के घानक गांव की महिलाएं औषधीय फसल ब्राह्मी की खेती के जरिए आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही है। ये पहल अब ग्रामीण महिलाओं के लिए आय और रोजगार का मजबूत माध्यम बन चुकी है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: जिला कांगड़ा के बैजनाथ उपमंडल के धानक गांव की महिलाएं औषधीय फसल ब्रह्मी की खेती के जरिए आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। CSIR IHBT के तकनीकी सहयोग से शुरू हुई ये पहल अब ग्रामीण महिलाओं के लिए आय और रोजगार का मजबूत माध्यम बन चुकी है। तकनीकी मार्गदर्शन मिलने के बाद स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने छोटे स्तर पर इसकी खेती शुरू की। शुरुआती चुनौतियों के बावजूद उन्होंने प्रयास जारी रखे और आज ब्रह्मी गाँव की पहचान बन चुकी है। महिलाएं अब ब्रह्मी की खेती के साथ साथ इसके मूल्य वर्धित उत्पाद भी तैयार कर रही है। ब्रह्मी से कैंडी, शरबत, स्वास्थ्य वर्धक पेय और अन्य उत्पाद बनाए जा रहे हैं जिन्हें बाजार में अच्छी मांग मिल रही है। महिलाओं की इस पहल को बाजार से भी अच्छा समर्थन मिला है। स्थानीय स्तर पर खरीद की व्यवस्था बनने के बाद उत्पादन लगातार बढ़ा है। ताजा ब्रह्मी 200 से 250 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है, जबकि सूखी ब्रह्मी का मूल्य 1,00,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुँच जाता है। आज धानक गाँव की ब्रह्मी हरियाणा समेत कई राज्यों में भेजी जा रही है जहां इसका उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं, शरबत और स्वास्थ्य वर्धक उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। बढ़ती मांग के चलते अधिक महिलाएं इस खेती से जुड़ रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए नगर निगम, नगर परिषद और

0: नगर पंचायत व जिला परिषद चुनावों के सभी उम्मीदवारों को अपने चुनावी खर्च का पूरा ब्यौरा 30 जून तक निर्वाचन आयोग को देना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी उम्मीदवारों के लिए ये ब्यौरा अनिवार्य किया है। ऐसा न करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है, जिसमें आयोग भविष्य के लिए इन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। एचपी शिवा परियोजना के तहत बागवानों को प्लम की खेती से जोड़ने का प्रयास सफल रहा। मंडी जिले के ब्रह्ममुखी और खग्रांगो क्लस्टर में इस वर्ष प्लम का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुआ है, जिससे बागवानों की आय में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बागवानी विभाग द्वारा किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण, सिंचाई सुविधा और बाजार से जोड़ने में सहायता की जा रही है, जिसके तहत महाराष्ट्र की एक एग्री सप्लाई कंपनी के जरिए बल्ह और सुंदरनगर क्षेत्र के बागवानों द्वारा उगाया गया उच्च गुणवत्ता वाला प्लम महाराष्ट्र के बाजारों तक पहुंचाया गया है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, धर्मशाला, मंडी, पालमपुर, सोलन में मेयर पद ओपन। पिछली बार नगर निगम सोलन व धर्मशाला में मेयर पद महिला, मंडी पालमपुर में थे अनारक्षित। दैनिक जागरण लिखता है, चार नगर निगमों में मेयर पद अनारक्षित, 5 वर्ष होगा कार्यकाल। पंजाब केसरी के शब्द है, पंजाब जाने वाले हिमाचल के सभी वाहनों से वसूले 10 से 100 रुपए। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के शपथ समारोह पर दिव्य हिमाचल ने खबर दी है, सोमवार तक होगी जिला परिषद बीडीसी की शपथ, पंचायतों के लिए अभी सीएम के फैसले का इंतजार। दैनिक भास्कर की एक खबर है, हिमाचल हाईकोर्ट को मिलने जा रहे 3 नए जज। हिमाचल दस्तक के अनुसार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 न्यायिक अधिकारियों चिराग भानु सिंह, भूपेश शर्मा व योगेश जायसवाल के नाम किए फाइनल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से गुजरात के अहमदाबाद में होगी आयोजित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे शिरकत। शिमला शहर सहित प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में भीड़ कम करने के लिए मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने लिए महत्वपूर्ण निर्णय। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा, प्राकृतिक खेती उत्पादों के लिए अलग ब्रांड बनाकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए होगी बिक्री। भारत सरकार के खेल मंत्रालय के विकसित जीवंत ग्राम कार्यक्रम के तहत 250 स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ। हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के 43 सीमावर्ती गांवों में हो रहा आयोजन। और कांगड़ा जिला में औषधीय फसल ब्राह्मी की खेती से महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11:00 बजे। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। प्रातः के 9:31 हुए हैं। अब से लेकर 10 बजे तक हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लेट्स स्टार्ट द फन।
0: दोस्तों आज के प्रोग्राम में फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक एस पी बालसुब्रमण्यम।

0: शिवम सुंदरम।
1: 1981 की फिल्म एक दूजे के लिए अपने सुपरहिट गीत और संगीत के लिए भी जानी जाती है। इस फिल्म के गानों में अपनी आवाज देकर एसपी बाल सुब्रमण्यम ने हिंदी फिल्म संगीत प्रेमियों के दिलों में भी अपनी खास जगह बनाई और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए अपना दूसरा नेशनल अवार्ड भी हासिल किया। इसके पहले 1980 में एसपी बाल सुब्रमण्यम को डायरेक्टर के विश्वनाथ निर्देशित तेलुगु फिल्म शंकरा भरणम के लिए भी अपने बेहतरीन गायन के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पहला नेशनल अवार्ड मिल चुका था और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बतौर सिंगर ख्याति पा चुके थे।

4 जून 1946 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के मूलापेटा में जन्मे एसपी बाल सुब्रमण्यम का परिवेश पूरी तरह से संगीतमय था। उनके पिता एक हरी कथा कलाकार थे और उन्होंने कई मंचित नाटकों में भी काम किया था। एसपी बाल सुब्रमण्यम की बचपन से ही संगीत में रुचि थी। यही वजह थी कि उन्होंने छोटी उम्र में ही हारमोनियम और बांसुरी बजाना सीख लिया था। हालांकि इंजीनियर बनने की चाहत में एसपी बाल सुब्रमण्यम ने अनंतपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हासिल कर लिया, लेकिन स्टडी के दौरान बीमारी की वजह से रुकावट भी आई, मगर उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और इसी दौरान 1964 में एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन में भाग लेकर अवार्ड भी जीता।

0: गायन का सिलसिला शुरू हुआ तो तमाम एमेच्योर कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेकर एसपी बाल सुब्रमण्यम प्रोत्साहित होते रहे, आगे बढ़ते रहे और बाद में एक लाइट म्यूजिक ट्रुप के प्रमुख गायक बन गए। उस दौरान गिटार और बाद में बांसुरी पर उनका साथ दिया करते थे संगत के रूप में इलैया राजा, जो बाद में संगीतकार भी बन गए।
1: वो तो बना

दोस्तों एसपी बाल सुब्रमण्यम की फिल्मों में गायन की शुरुआत 15 दिसंबर 1966 में एक तेलुगु फिल्म से हुई। ये फिल्म थी श्री श्री श्री मर्यादा रामन्ना। उसके चंद दिनों बाद 1966 में ही कन्नड़ फिल्मों के लिए और 1969 में तमिल फिल्मों के लिए भी अपने गायन की शुरुआत करके एसपी बाल सुब्रमण्यम चर्चा में आ गए। अपने दौर के दिग्गज कलाकारों जैसे जेमिनी गणेशन, शिवाजी गणेशन और एमजी रामचंद्रन की आवाज बनकर उभरे। एसपी बाल सुब्रमण्यम को जी देवराजन ने मलयालम फिल्मों के लिए भी गायन के लिए इंट्रोड्यूस किया। एसपी बाल सुब्रमण्यम उन दिनों साउथ में अपने गायन के चरम पर थे। व्यस्तता का आलम यह था दोस्तों कि 1981 में 8 फरवरी को 12 घंटे की अवधि में कन्नड़ भाषा में 21 गाने गाकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। बाद में तमिल में एक दिन में 19 और हिंदी में भी 16 गीत एक ही दिन में गाकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया।

उस दौर की साउथ की जानी मानी फीमेल सिंगर्स जैसे पी सुशीला, एस जानकी, वाणी जयराम और एल आर ईश्वरी के साथ भी एस पी बालसुब्रमण्यम की बेहतरीन ट्यूनिंग रही और उन्होंने तमाम युगल गीत गाए। आगे चलकर महान संगीतकार बने इलैया राजा के साथ एस पी बालसुब्रमण्यम का जुड़ाव बहुत पहले से रहा है, जब इलैया राजा उनके ऑर्केस्ट्रा ट्रुप में महज हारमोनियम और गिटार वादन किया करते थे। उनका ये जुड़ाव बाद में बना रहा और कई गीतों को रचकर और भी पक्का हो गया। 1989 में एसपी बालसुब्रमण्यम ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को अपनी आवाज दी। फिल्म थी मैंने प्यार किया। फिल्म के साथ साथ गानों ने भी धूम मचा दी थी। इस फिल्म के दिल दीवाना गाने के लिए एसपी बालसुब्रमण्यम को फिल्म फेयर के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था।

बाद में सलमान खान के लिए ही एसपी बालसुब्रमण्यम ने हम आपके हैं कौन फिल्म के गाने गाए, जो सुपर डुपर गीतों की श्रेणी में शामिल हो गए।

दोस्तों यहाँ काबिले जिक्र है कि एसपी बाल सुब्रमण्यम को कई लोग बतौर गायक ही जानते हैं, जबकि वो एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, वॉइस एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। कमल हसन, रजनीकांत, सलमान खान, के भाग्यराज, मोहन, अनिल कपूर, गिरीश कर्नाड, जेमिनी गणेशन, अर्जुन सरजा, नागेश, कार्तिक, रघुवरन जैसे हिंदी और साउथ के तमाम कलाकारों के लिए साउथ की विभिन्न भाषाओं में वॉइसिंग भी कर चुके हैं एसपी बाल सुब्रमण्यम। विभिन्न भारतीय भाषाओं में 40,000 से ज्यादा गीत गाने वाले एसपी बाल सुब्रमण्यम को अब तक 6 बार बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। एक दिन में अधिकतम गीत गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी वो बना चुके हैं। आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से तेलुगु सिनेमा का नंदी अवार्ड्स लगभग उन्हें 25 बार हासिल हो चुका है। फिल्म फेयर अवार्ड, साउथ फिल्म फेयर अवार्ड्स, तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों के और भी कई अवार्ड्स हासिल कर चुके एसपी बाल सुब्रमण्यम को भारत सरकार द्वारा सन 2001 में पद्मश्री और सन 2011 में पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन एसपी बाल सुब्रमण्यम अपने सबसे बड़े अवार्ड को मानते हैं अपने प्रशंसकों की गुनगुनाहट के जरिए, वो जो उनके गीत गुनगुनाकर खुशियों में डूबे रहते हैं।

दोस्तों, एसपी बाल सुब्रमण्यम एक बेहतरीन गायक होने के साथ साथ बेहतरीन इंसान भी हैं। उनकी पत्नी हैं श्रीमती सावित्री, एक बेटी है पल्लवी और एक बेटा है एसपी बी चरण, जो खुद भी पार्श्व गायक और फिल्म प्रोड्यूसर है। एसपी बाल सुब्रमण्यम ने फिर से एक बार हिंदी की ओर शुरुआत की 2013 में शाहरुख खान अभिनीत फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लिए भी पार्श्व गायन करके। संगीतकार विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में उन्होंने ये गीत गाया।

एस पी बालसुब्रमण्यम दक्षिण भारतीय फिल्म संगीत तथा हिंदी फिल्म संगीत के इस महान पार्श्व गायक का निधन 25 सितंबर 2020 को हुआ। विविध भारती परिवार की ओर से एस पी बालसुब्रमण्यम की यादों को विनम्र नमन। हम तुम

0: था पार्श्व गायक एसपी बाल सुब्रमण्यम पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार।
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है FM बैंड 101.8 MHz पर। प्रातः के 10 बजने को है, थोड़ी ही देर में हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस कल भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वो इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 25 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान रूबियो ने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा हुई। रूबियो ने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
4: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग से 3 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य घायल हुए। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। कई मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें उपचार के लिए अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जाँच जारी है।
5: ICU 14th floor पर है, उसी में आग लगने की बात है शॉर्ट सर्किट से। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है। बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी छुट्टी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जाँच कर रहे हैं।
3: नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का मुकाबला फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से होगा। भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से ये मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर प्रातः के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है हमारी आज की लघु वार्ता, जिसका विषय है भारत सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं।

जी हाँ, पिछले 12 वर्षों के दौरान भारत सरकार ने अंत्योदय यानी समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान और सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ कई व्यापक और ऐतिहासिक कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। इन कल्याणकारी योजनाओं ने देश के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है।

इन महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत विवरण हम आपके समक्ष रख रहे हैं कुछ प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर। बात करते हैं वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा की। जी हाँ, इसके अंतर्गत आती है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन अभियान है जिसके तहत देश के करोड़ों अनबैंक्ड यानी जिनके पास बैंक खाते नहीं थे लोगों के शून्य शेष यानी जीरो बैलेंस वाले खाते खोले गए। ये योजना सरकार के DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मॉडल की रीढ़ बनी जिससे सरकारी मदद जैसे सब्सिडी पेंशन बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचने लगी। इसके साथ साथ अगर बात करें अटल पेंशन योजना और जीवन ज्योति या फिर सुरक्षा बीमा योजना की तो असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए न्यूनतम प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा और 60 वर्ष की आयु के बाद निश्चित मासिक पेंशन की व्यवस्था की गई। स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आयुष्मान भारत योजना, जी हाँ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत आर्थिक

योजनाओं को एकीकृत कर महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर, स्वास्थ्य और शुरुआती बचपन की देखभाल को वैज्ञानिक तरीके से सुदृढ़ किया गया। इसमें गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना भी शामिल है, जो स्वास्थ्य मील के पत्थरों पर वित्तीय सहायता देती है।

बुनियादी सुविधाएं और जीवन सुगमता के लिए बनाई गई योजनाओं की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों आते हैं, सबके लिए पक्का मकान के उद्देश्य से शुरू की गई। इस योजना के तहत करोड़ों परिवारों को बुनियादी सुविधाओं, जिसमें बिजली, शौचालय से युक्त पक्के घर दिए गए। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि घरों का मालिकाना हक मुख्य रूप से घर की महिला के नाम या संयुक्त रूप से दिया गया, जिससे महिला सशक्तिकरण को बल मिला। जल जीवन मिशन की अगर हम बात करें तो इस ऐतिहासिक मिशन का लक्ष्य ग्रामीण भारत के हर घर तक नल से जल पहुंचाना है। शुद्ध पेयजल की उपलब्धता ने पानी से होने वाली बीमारियों को कम किया है और ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में बड़ा सुधार किया है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अगर हम बात करें तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिए गए। इसने ग्रामीण महिलाओं को पारंपरिक चूल्हे के खतरनाक धुएं और सांस की बीमारियों से मुक्ति दिलाई। स्वच्छ भारत मिशन की जब हम बात करते हैं तो देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए करोड़ों शौचालयों का निर्माण किया गया। इसने न केवल स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाया, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को भी सुनिश्चित किया। कृषि और किसान कल्याण क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो पीएम किसान सम्मान निधि, जी हाँ, इसकी बात जरूर करना चाहेंगे। जी हाँ, देश के भूधारक किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए इसके तहत प्रतिवर्ष 6000 की प्रत्यक्ष आय सहायता 3 किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है, ताकि वे खेती की शुरुआती जरूरतों को पूरा कर सकें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जब हम बात करते हैं तो प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसलों को होने वाले नुकसान के लिए किसानों को बेहद कम प्रीमियम पर व्यापक बीमा कवर प्रदान किया गया। युवा कौशल और स्वरोजगार की जब हम बात करते हैं तो स्किल इंडिया मिशन और भारतीय युवाओं को वैश्विक स्तर पर रोजगार योग्य बनाने के लिए विभिन्न आधुनिक तकनीकों जैसे AI, ड्रोन ऑपरेशंस और पारंपरिक क्षेत्रों में कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की अगर हम बात करें तो छोटे और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिना किसी गारंटी के शिशु, किशोर और तरुण श्रेणियों में ऋण उपलब्ध करवाया गया। इसने युवाओं को नौकरी खोजने वाले से नौकरी देने वाला बनाने में मदद की।

जी हाँ, पिछले 12 वर्षों के इस वेलफेयर मॉडल की सबसे बड़ी सफलता डेटा और टेक्नोलॉजी जैसे यूपीआई, आधार और मोबाइल का समन्वय है। इसी तकनीकी एकीकरण

नियंत्रण के कारण कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के संकट काल में भी सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ रुपए से क्षमा कीजिए 80 करोड़ से अधिक लोगों तक निर्बाध मुफ्त राशन पहुंचा सकी।

जी श्रोताओं, तो ये तो थी आज की लघु वार्ता, जिसका विषय था भारत सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर प्रातः के 10:15 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है आज का पंजाबी फ्लेवर लाइव फोन इन कार्यक्रम और हमारा आज का विषय रहेगा हमारे जीवन में योग का समावेश अच्छे स्वास्थ्य की नींव। आपका इस पर क्या कहना है आप ज़रूर हमें फ़ोन के माध्यम से बता सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 2231 22 और हमीरपुर का एरिया कोड है 01972। और आज के इस कार्यक्रम में जिन गायकों को हमने जोड़ा है वो हैं कंठ कलेर, हंसराज हंस, जस्सी गिल, सतिंदर सरताज, फिरोज खान, अमरिंदर गिल, गुरदास मान और सुरजीत बिंद रखिया। इनमें से किसी भी गायक का आप गीत सुनना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कॉल कीजिए। और अब करते हैं आज के पंजाबी फ्लेवर कार्यक्रम की शुरुआत।

0: पंजाबी फ्लेवर लाइव फोन इन कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। जी हाँ श्रोताओं, आज भी बहुत सारे पंजाबी गीतों के माध्यम से आपका मनोरंजन करवाने के लिए हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, और साथ ही गीतों के साथ साथ कुछ बातें भी हम आपके साथ करने वाले हैं। और विषय है हमारा कि हमारे जीवन में योग का समावेश, अच्छे स्वास्थ्य की नींव। इस विषय पर हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों अच्छे स्वास्थ्य की नींव सही आदतों और मानसिक संतुलन पर टिकी होती है, और भागदौड़ भरी आधुनिक जीवन शैली में खुद को निरोगी और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए हमें योग को हमारे जीवन में शामिल करना बेहद ज़रूरी है। आपका इस विषय पर क्या कहना है? एक श्रोता फोन लाइन पर हैं, इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं इस विषय पर इनके विचार। जी स्वागत है आपका आज के पंजाबी फ्लेवर लाइव फोन इन कार्यक्रम में।
1: नमस्कार मैम जी।
0: जी नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं और कहां से?
1: मैं रवि बोल रहा हूं कांगू से।
0: जी रवि जी, क्या कहना चाहेंगे आप आज के विषय में कि योग आज की आधुनिक जीवन शैली के लिए कितना जरूरी है?
1: चलो इस बारे में क्या बता सकते हैं मैम, अभी अभी फिलहाल तो मैं नेपाल से हूँ ना मैम, आप फिर वैसे बहुत दिन बाद ट्राई कर रहा था, फोन लग गया है कुछ भी है मैम।
0: जी बहुत अच्छी बात है, आपने कोशिश की और आपकी कोशिश कामयाब हो गई। लेकिन देखिए आज के समय की अगर हम बात करें तो भागदौड़ भरी जिंदगी है, और आपने देखा होगा कि अक्सर हर तीसरा इंसान किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। तो हम दवाइयां खाते हैं, फिर उसके बाद भी कई बार बीमारी तो चली जाती है लेकिन कुछ समय बाद वो फिर से आ जाती है। तो हमारी जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है उसमें योग का बहुत महत्व है, तो योग को अपने जीवन में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी पैसा नहीं खर्च होता। सिर्फ सुबह या शाम जब भी आपको समय लगता है, थोड़ा सा समय निकाल कर आप योग को अपना कर स्वस्थ रह सकते हैं, है ना? जी तो रवि जी, आपने आज हमारे साथ इस विषय पर अपने ज़्यादा विचार

साझे नहीं किए, पर उम्मीद करते हैं कि अगले किसी कार्यक्रम में आपसे विस्तार से बात होगी। आपने हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किस गायक का गीत आपको सुनवाएं, आप बताइए। जी, आज तो हमने वाहनी जवानी तेरा भी जवाब ने ये रखा हुआ है। जी, आपने हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: जी, स्वागत है आपका आज के पंजाबी फ्लेवर लाइफ ऑन इन कार्यक्रम में।
1: जी,
0: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से?
1: डॉक्टर राजन मल्होत्रा कर रहा हूँ जी, पालमपुर से।
0: जी डॉक्टर राजन मल्होत्रा जी, क्या कहना चाहेंगे? योग का हमारे जीवन में क्या महत्व है?
1: का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये शरीर को मजबूत बनाता है, शरीर
0: जी
1: को ताकतवर बनाता है, शरीर
0: जी हाँ, और जैसे
1: में रक्त का संचार पूर्णतया ठीक रखता है।
0: जी, क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो आप इस बारे में हमारे जो बाकी श्रोता हैं उनको और अच्छे से जागरूक कर सकते हैं। आप हमें बताइए कि आप प्रतिदिन योग करते हैं?
1: नहीं, मैं तो नहीं करता हूँ, मेरी एज बहुत हो गई है, अब नहीं करता।
0: जी, तो इसमें ज़रूरी नहीं कि हम जो आसन है वो या कठिन जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो करें, जैसे प्राणायाम में अनुलोम विलोम या भ्रामरी, इस तरह
1: और
0: का तो हम
1: ठीक
0: बैठे कर
1: है
0: सकते
1: जी,
0: हैं।
1: अब गोटे बैंड नहीं होते तो अब क्या करना।
0: जी ये तो सांस की है ना, अनुलोम विलोम तो हम सांस के द्वारा करते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: जी तो इसको ज़रूर अपनाइए क्योंकि आपने इतने सारे फायदे गिनाए हैं इसके।
1: हाँ
0: तो
1: जी,
0: बेशक उम्र ज़्यादा हो भी जाए तो भी ये छोटे जो आसान से प्राणायाम है इनको हम आसानी से बिस्तर पर बैठकर भी कर सकते हैं, है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: जी तो बताइए राजन मल्होत्रा जी, आपके पसंदीदा गायक कौन हैं जिनका गीत हम आपको
1: सुरजीत
0: सुनवाएं?
1: सिंह बिंदरखिया।
0: जी सुरजीत सिंह बिंदरखिया का गीत हम आपको सुनवाते हैं। आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद जी।

0: जी, स्वागत है आपका आज के पंजाबी फ्लेवर लाइव फोन इन कार्यक्रम में।
1: हेलो मैम, नमस्ते
0: जी नमस्ते, कौन बात कर रही हैं और कहाँ से?
1: मैम। मैं अंजू ठाकुर बोल रही हूँ।
0: जी अंजू ठाकुर जी, कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं लंबा गांव से बात कर
0: लंबा गांव से, क्या हाल चाल हैं आपके?
1: रही हूँ। बस बढ़िया मैम।
0: जी बहुत अच्छी बात है, बढ़िया ही होनी चाहिए। और बताइए कि हमारे जीवन में योग का क्या महत्व है?
1: योग का मैम बहुत महत्व है। अगर योग करेंगे तो लंबी उम्र जी सकते हैं, बीमारियों को दूर भगा सकते हैं।
0: जी हाँ, हम निरोग हो
1: और
0: सकते हैं, है ना
1: हाँ जी, हाँ जी, तो
0: जी।
1: मतलब योग थोड़ा सा टाइम निकाल के सुबह आप जब उठते हैं तो चाहे 5 बजे, आजकल तो जल्दी सुबह हो जाती है,
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल।
1: मतलब आधा घंटा भी आप मतलब कर लो योग, फिर काम करो।
0: जी
1: तो मैम मैं सुबह उठती हूँ तो योग करके फिर और काम जो है वो शुरू करती हूँ,
0: जी बहुत
1: चाहे मैं
0: अच्छी
1: दस
0: बात
1: मिनट
0: है,
1: 15 मिनट ही करूँ तभी करती हूँ वही।
0: बिल्कुल, क्योंकि एक अनुशासन होना चाहिए हमारे जीवन में कि हमने ये अच्छी आदत जो है इसको अपने हर रोज की दिनचर्या में शामिल करना है, क्योंकि इसके हमें ही फायदे होते हैं। तो बाकी सब लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि नियमित अभ्यास जो है ये कितना जरूरी है?
1: मैम सभी को ये करना चाहिए टाइम निकाल के, चाहे आप कितने भी बिजी हो मतलब अपनी लाइफ में, तो
0: जी
1: थोड़ा सा टाइम निकालना। अपने शरीर सबसे पहले अपनी सेहत जरूरी है,
0: जी
1: उसके बाद जो है वो दूसरे काम है। अगर हम तंदुरुस्त हो गए तो सब हमारे लिए अच्छा होगा। या हम
0: जी
1: चल ही नहीं पाएंगे, या हम कोई मतलब हरकत नहीं, जैसे हमारे गांव में कईयों को मतलब पैरालाइज के अटैक हुए, मतलब छोटी छोटी उम्र में बच्चियों को कई बीमारियां
0: जी
1: मतलब
0: हाँ
1: लग रही, आप दे सुनते रहते
0: जी
1: होगे आप।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हाँ
0: बिल्कुल
1: जी, हाँ जी, तो
0: जी
1: ये पहले ये वो हम छोटे छोटे होते तो हमारे दादा या मम्मी मम्मी जो है वो मतलब काम काम करते थे। मेरी शादी हुई तो मतलब जमीन जा मतलब लगाई हुई थी, जैसे मक्की
0: जी
1: वगैरह
0: जी हाँ
1: धान लगाते थे, तो
0: शारीरिक श्रम
1: मतलब
0: की आप बात कर रही हैं।
1: हाँ,
0: जी
1: तो मतलब मेरे जो ससुर जी आर्मी में थे तो मतलब सुबह 4 बजे उठ के उन्होंने मतलब नता निम उठ के सारा काम करना है, तो उनके कपड़े जैसे वो काम करते थे मैम, तो पसीना इतना मतलब पसीना निकालना जो बॉडी में बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि
1: हाँ जी,
0: इसके ज़रिए बहुत सारे शरीर में से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, और
1: हाँ
0: अगर ये
1: जी,
0: शरीर के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि आज की अगर हम जीवन शैली की बात करें तो हम बहुत ही आराम पर

0: हो गए हैं, है ना, मतलब
1: हाँ जी,
0: शारीरिक श्रम
1: हमारे
0: कम हो
1: बच्चे,
0: गया है।
1: हाँ जी, हाँ जी, शोर में हमारे बच्चे जो है, मतलब पिछले जो भी है, मतलब उनकी काफी एज हुई, मतलब उम्र
0: जी
1: हो रही
0: हाँ
1: है
0: जी
1: उन, आज के यंग जो उनकी उम्र क्या है, 40-45 में ही किसी को अटैक पड़ रहा है, किसी
0: जी
1: को
0: हाँ
1: शुगर है, किसी को कुछ भी है, मतलब थोड़ा सा टाइम, मेरा बोलने का मतलब है कि योग करने से कोई भी, मतलब
0: जी
1: आपका काम पीछे नहीं होगा, काम है भी क्या आजकल तो
0: जी
1: सिर्फ
0: हाँ बहुत
1: खाना
0: आसान
1: खाना
0: हो गए हैं काम, है ना,
1: पानी
0: बिल्कुल
1: नहीं, पहले कुएं से पानी ले, अब तो नलके है, जहाँ ऊपर मंजिल है वहां पानी लगा है,
0: जी जी
1: यहाँ
0: जी
1: नीचे आएंगे तो वहां पानी, मतलब काम है ही क्या है,
0: मतलब
1: खाने
0: हर
1: का
0: चीज़
1: काम।
0: हमारे लिए इतनी सहज सुलभ हो गई है, तो उस चक्कर में हमने अपने शरीर को जो आराम प्रस्त बना लिया है उससे बहुत सारी बीमारियां हो रही है। और आपने बहुत ही
1: बीमारी
0: विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताया कि योग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और आप खुद भी योग करती हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी को उपदेश देने से अच्छा ये होता है कि खुद करके दिखाओ। आपको देखकर बहुत सारे लोग अनुसरण करना शुरू कर देते हैं, तो बहुत ही अच्छी बातें आपने हमारे साथ की अंजू ठाकुर जी। अब बताइए कि किस गायक का गीत आप सुनना चाहेंगी?
1: हंसराज हंस का गाना कोई,
0: जी चलिए हंसराज हंस का गीत हम आपको सुनवाते हैं। आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

जी हाँ बिल्कुल, हम सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही हमारे कार्यक्रम का ध्येय रहता है। और योग को जीवन में शामिल करना ये बहुत ही अच्छी आदत है, क्योंकि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि ये शरीर, मन और आत्मा के मिलन का विज्ञान है। प्राचीन भारतीय संस्कृति की ये अनमोल देन आज वैश्विक स्तर पर कल्याण का सबसे बड़ा माध्यम बन चुकी है, क्योंकि इससे शरीर लचीलापन होता है, मजबूती आती है, आंतरिक अंगों की कार्यप्रणाली जैसे योग के विभिन्न आसन पेट, लीवर, किडनी और हृदय जैसे आंतरिक अंगों की मालिश करते हैं, जिससे रक्त संचार सुधरता है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। सबसे बड़ी बात, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में और शरीर की बीमारियों से लड़ने की जो प्राकृतिक क्षमता है उसको ठीक रखने के लिए नियमित योग और प्राणायाम बहुत ज़रूरी हैं।

जी श्रोताओं, अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि आज की व्यस्त दिनचर्या में तनाव को प्रतिबंधित करने के लिए योग एक अचूक औषधि है और एकाग्रता और मानसिक स्पष्टता भी इसके साथ साथ आ जाती है। और रेस्पिरेटरी हेल्थ की अगर हम बात करें तो प्राणायाम का जादू जो है ना, ये हमारे शरीर के कोने कोने तक ऑक्सीजन की भरपूर आपूर्ति सुनिश्चित करता है, जिससे श्वसन संबंधी बहुत सारी बीमारियों से हम बचे रहते हैं। एक छोटा सा सुझाव ज़रूर है कि योग की शुरुआत हमेशा किसी योग्य प्रशिक्षक की देखरेख में और अपने शरीर की क्षमता को समझते हुए ही करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये बातें जो हमारे अच्छे स्वास्थ्य और हमारी पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि योग का हमारे जीवन में इतना महत्व है कि ये हमारे जीवन के हर क्षेत्र को अच्छा ही बनाता है। तो इस योग को अपनाकर हम अपनी जीवन शैली को भी सुधार सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ अब आज का पंजाबी फ्लेवर लाइव फोन इन कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अपनी रेडियो दोस्त अंजू शर्मा को दीजिए अनुमति। रब राखा। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 10:45 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी श्रोतियों, ग्लांदे ना भाई, कुसी ने अगर रिश्ता बनाई करे रखना हो तो मिलना जुलना बड़ा जरूरी होंदा, पर अजकल दे टाइम दी जे अहां गल करिए तां तौंदी लगी हो, थोड़ा जिहा बाहर निकलने ते गुरेज अहां सबनी जो करना चाहिए, क्योंकि तेज़ धुप्प जे हुंदी ना तिसते अहां दे स्वास्थ्य जो नुकसान पहुँची सकदा, क्योंकि अहां दे शरीर दा तापमान जड़ा बढ़ी जांदा तेज़ गर्मियां च, तां तिसते बड़े सारे नुकसान हुंदे। कने मिलना जुलना जे हो बड़ा जरूरी हो तां थोड़ी जी एहतियात रखी के बाहर जाना, थोड़ा अपने आपा जो गर्मियां ते बचाई करी रखना, कने कोशिश करनी भी सीकर दोपहर बाहर घर ते नहीं निकलना, बाहर निकलना जरूरी हो तां थोड़ा जिहा ठंडा होने पर जियां शाम दे टाइम पर बाहर निकलना चाहिए। तां इन्हां गल्लां बातां सौगी एक लोक गीत भी तुहां जो सुनाने दा टाइम है, आवा सुन दे पिंको देवी वरां दा गाया ये लोक गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी बिल्कुल, तौंदिया दा महीना जिहड़ा हुंदा ना, सह अहां जो यही याद करांदा वी अपनी सेहती दा ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी पींदे रहना, कने इकदम मान लो AC या कूलर लगाया हो तो इस कमरे ते बाहर धुप्पा च नहीं चले जाना। कने अज ते पहल के टाइम दी जे गल करिए ना, तां तौंदी जिहड़ी थी तिस जो गुजारने दा इक बड़ा छैल माध्यम हुंदा था वी पेड़ां दी छावां तले मंजा डाह लैना, कने गर्मी दा एहसास ही नहीं हुंदा था कि भी इतनी ठंडी ठंडी हवा अहां दे पेड़ां दी आउंदी ना, तिस ते ना ता कोई तिस दा साइड इफेक्ट हुंदा, कने ना ही अहां जो से गर्मी लगना दिंदी। तां कुछ ए जेही भाव दर्शा दा ए पहाड़ी लोकगीत जिस जो गाया विनोद कुमार होरां, आवा सुनी लैंदे।

जी विनोद कुमार होर दे गाए ओ इस लोकगीता सौगी हुण अजका लोकरंग कार्यक्रम इत्थी संपन्न होआ दा दिया इजाजत राम राम।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को एक मंच पर लाने का काम किया है। उन्होंने इसे योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजनकर्ताओं तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। शिमला शहर, प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों और मुख्यालयों में भीड़ कम करने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक कल शिमला में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी उपस्थित रहे। इस दौरान शिमला शहर में भीड़ कम करने के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें भीड़ भाड़ वाले चिन्हित स्थानों को की समीक्षा कर संबंधित विभागों को उचित निर्देश दिए गए। समिति ने शहर के भीतर ट्रैफिक में अवरोध और भीड़ का कारण बनने वाली मंडियों को शिमला शहर से बाहर नवनिर्मित फोरलेन सड़क मार्ग पर स्थित उपयुक्त स्थानों पर स्थानांतरित करने पर भी चर्चा की। बैठक में BBN क्षेत्र में एक नई टाउनशिप योजना और चंडीगढ़ शहर की तर्ज पर एक सैटेलाइट टाउन की स्थापना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में भूमि पूलिंग नीति को पंजाब जैसे अन्य राज्यों के अनुरूप तैयार करने का भी निर्णय लिया गया। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों के चलते 73,000 से अधिक किसान परिवार प्राकृतिक खेती से जुड़े हैं। ये जानकारी देते हुए कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि किसानों में प्राकृतिक खेती के प्रति उत्साह बढ़ा है और उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य भी मिल रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 732 किसानों से 6,40,00,000 रुपये मूल्य की गेहूं और मक्की की फसल की खरीद की गई थी, जिसमें इस वर्ष 4 गुना तक वृद्धि की उम्मीद है। चंद्र कुमार ने बताया कि सरकार प्राकृतिक खेती से बने उत्पादों के लिए अलग ब्रांड विकसित करने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सहित बड़े विपणन नेटवर्क से जुड़ने की दिशा में काम कर रही है, ताकि प्रदेश के ये उत्पाद देश विदेश के लोगों तक ऑनलाइन माध्यम से पहुंचाए जा सके। युवा मामले व खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से विकसित जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2026 के पहले चरण का शुभारंभ किया है। यह एक अग्रणी युवा नेतृत्व वाली पहल है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर भागीदारी को सुदृढ़ करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और भारत के सीमावर्ती गांवों में सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम 2 चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा, जिसमें भाग लेने के लिए देश भर से कुल 500 स्वयंसेवकों का चयन किया गया है, जिनमें से पहले चरण में 250 स्वयंसेवकों को हिमाचल, लद्दाख और उत्तराखंड के चिन्हित सीमावर्ती गांवों में 2 चरणों में तैनात किया जा रहा है। किन्नौर जिला में 10 दिनों के लिए आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में 100 युवा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जहां आज ITBP परिसर रिकांगपियो में उद्घाटन समारोह आयोजित किया जा रहा है। हमीरपुर जिला के उपमंडल नादौन के बल्ह डूहक गांव में अनु ने सिलाई कढ़ाई के हुनर की आजीविका का साधन बनाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। पुरानी सिलाई मशीन से शुरू हुआ उनका ये सफर आज उन्हें प्रतिमाह 10,000 से 12,000 रुपए की आय दिला रहा है। अनु अन्य महिलाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए भी प्रेरित कर रही है। जिला हमीरपुर से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: यदि मन में कुछ करने का जज्बा हो तो सीमित संसाधनों से भी आत्मनिर्भरता की राह बनाई जा सकती है। उपमंडल नदौन के बल्डू गांव की अन्नू ने सुई धागे के हुनर से ही इस बात को सच साबित कर दिखाया है कि घर की जिम्मेदारियों के बीच अन्नू ने सिलाई के हुनर को अपनी आजीविका का साधन बनाया और आज इसी काम से हर महीने 10,000 से 12,000 रुपए की आय अर्जित कर रही है। अन्नू ने न केवल खुद आत्मनिर्भरता बनी है, बल्कि गांव के अन्य महिलाओं और लड़कियों को भी सिलाई का प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। त्योहारों और शादियों के सीजन में उनके पास काम की इतनी मांग रहती है कि समय निकालना ही मुश्किल हो जाता है। अन्नू की ये पहल न केवल उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही है, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही है। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और जिला परिषद चुनावों के सभी उम्मीदवारों को अपने चुनावी खर्च का पूरा ब्यौरा 30 जून तक निर्वाचन आयोग को देना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी उम्मीदवारों के लिए ये ब्यौरा अनिवार्य किया है। ऐसा न करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है, जिसमें आयोग भविष्य के लिए उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है। एचपी शिवा परियोजना के तहत बागवानों को प्लम की खेती से जोड़ने का प्रयास सफल रहा है। बागवानी विभाग द्वारा किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण, सिंचाई सुविधा और बाजार से जोड़ने में सहायता दी जा रही है, जिसके तहत महाराष्ट्र की एक एग्री सप्लाई कंपनी के जरिए बल्ह और सुंदरनगर क्षेत्र के बागवानों द्वारा उगाया गया उच्च गुणवत्ता वाला प्लम महाराष्ट्र के बाजारों तक पहुँचाया गया है, जहाँ उन्हें इस फसल के बेहतर दाम मिल रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। दिन के 11:06 हुए हैं। अब से लेकर 12 बजे तक हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

रंग तरंग कार्यक्रम में अभी आपने भक्ति सुधा एल्बम से छाया गांगुली के स्वर में मीराबाई की यह पारंपरिक रचना सुनी, जिसे संगीत से संवारा था संगीतकार जयदेव ने। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

तुम न मानो मगर हकीकत है, इश्क इंसान की ज़रूरत है। काबिल अजमेरी का ये कलाम आप सुन रहे थे पंकज उधास की आवाज़ में अ गिफ्ट ऑफ सॉन्ग एल गज़ल एल्बम से। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर रंग तरंग कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं देव कोहली के रचना और आनंद राज आनंद के संगीत की ओर।

0: देव कोहली के बोल थे, आनंद राज आनंद का संगीत, शुभा मुद्गल और समुद्र की आवाजों में आप सुन रहे थे ये मोहब्बत है एल्बम का ये गाना। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

रोशन के संगीत से सजी ये कव्वाली आप सुन रहे थे आशा भोसले और साथियों के स्वरों में। दिल ही तो है फिल्म का नाम था और साहिर लुधियानवी का कलाम। चलिए अब एक नाजुक से गीत की ओर बढ़ते हैं।

है प्रेम एल्बम से ये बड़ा ही नाजुक सा सॉफ्ट सा गाना आपने सुना। श्याम अनुरागी ने इसे लिखा था। आवाज़ और संगीत का जादू मिलिंद इंगले का था। चलिए अब अगले एल्बम में आवाज़ का जादू है मोहित चौहान और कायम त्रिवेदी के साथ अतुल मित्तल का।

0: रियाज़ उर रहमान सागर का ये कलाम आप सुन रहे थे आशा भोसले और अदनान सामी की आवाज़ों में। एल्बम था कभी तो नज़र मिलाओ। बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: बज़्म ख़याल एल्बम से दिलराज कौर की आवाज़ में आपने अहमद वसी का ये कलाम सुना और यही थी आज के रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।
1: रंग

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12 बज चुके हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। जी श्रोताओं, आइए कार्यक्रम में सुनते हैं सबसे पहले गुलाम अली की गाई ये गजल।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी श्रोताओ, सुगम संगीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं ये गजल जिसे गाया है अशोक खोसला ने।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं ये गीत जिसे गाया है अभिजीत सावंत ने।

जगजीत सिंह की गाई इस गज़ल के साथ ही अब आज का सुगम संगीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। जी आज भी हम उपस्थित हुए हैं कुछ फिल्मी गीत लेकर आपके मनोरंजन के लिए, और कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं जिसे गाया है महेंद्र कपूर और साथियों ने। फिल्म है क्रांति।

जी श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं बेताब फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर ने।

जी सैनिक भाइयों, टशन फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का सैनिकों के लिए कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। दीजिए इजाजत सैनिक भाइयों, जय हिंद।

101.8 मेगाहर्ट्ज पर दिन का एक बजा है। अब से लेकर दो बजे तक हमारे केंद्र से आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का स्वागत। तो साथियों, आज का टेक्स्ट, आज की इबारत आप तक पहुंच चुकी है और आप जान भी चुके हैं कि आज के टेक्स्ट में क्या है खास। तो चलिए हम आपको वो टेक्स्ट, वो इबारत पढ़कर सुना देते हैं। आज का टेक्स्ट है, आज भी जब पुराने गीत रेडियो पर गूंजते हैं तब श्वेत श्याम यादें आंखों में रंग भरती हैं। ऐसे में कोई खास सिर्फ याद नहीं आता, वो फिर से जी उठता है। वो भोली सी सूरत, गहरी आंखों वाली छबीली सुजाता ने भावनाओं का एक पूरा मौसम खुद में समेट रखा था। जाने कब वो बंदिनी बनकर छलिया, अनाड़ी, सौदागर, महाराजा सरस्वती चंद्र को छोड़कर सावन के महीने में कन्हैया की बांसुरी के रंग में अपनी चुनरिया रंग बैठी। कहाँ तक सुनाऊं साहब, इस छोटी सी गुड़िया की तो लंबी कहानी है, लेकिन आप खानदान की राधा से पेइंग गेस्ट का वादा तो सुनिए जरा। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। तो ये तो थी आज की इबारत और आप सभी जान चुके हैं कि आज इसमें क्या है खास और आज दिन कौन सा है, इसलिए हमने ये इबारत जो है वो इस तरह से आप तक पहुंचाई है। तो बहरहाल इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं शिफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। साथियों, आज है 4 जून का दिन और आज जन्मदिन है अभिनेत्री नूतन का, तो ये इबारत उन्हीं के लिए है। वैसे आपको बता दें कि नूतन सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी साथियों, बल्कि भारतीय सिनेमा की गरिमा और शालीनता की मिसाल थी। वो उन गीतों की रूह भी थी जो रेडियो से निकलकर दिलों में बस गए। उन पर फिल्माए गीतों को सुनकर यूँ लगता है जैसे पुराने दौर का एक दरवाज़ा फिर से खुल गया है। इनकी फिल्में बीता हुआ वक्त नहीं साथियों, यादों की जीवित धरोहर हैं। अभिनेत्री नूतन जी को लेकर ढेर सारे कमेंट्स हमारे सामने हैं इस समय और बहरहाल हमारे साथी क्या लिख रहे हैं। हाँ, देखिए हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुरीला सफ़र के इस सुनहरे सफ़र में आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ, आज के गाने अवश्य यादगार होंगे। जी हाँ बिल्कुल, और आप सबका साथ इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाएगा। तो वहीं हमारे एक दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि 1 माह 5 दिन हो चुके हैं कार्यक्रम सुरीला सफ़र में, आप आज आई हैं शायद पहली बार। अरे वाह, क्या बात है, इन्होंने दिन महीना सब कुछ याद रखा। बहरहाल आज हम आ गए आपके साथ। और एक कमेंट में हमारे साथी ने लिखा है कि ये है सुरीली सफ़र की सही इबादत, इबारत नूतन जी के जन्मदिन पर उनके ही गानों पर परफेक्ट इबारत। वैसे भी हमेशा से ही आपने सही इबारत दी है और तहे दिल से शुक्रिया किया है, तो शुक्रिया आप सभी का भी हमारे इस कार्यक्रम के साथ दिल से जुड़ने के लिए। तो दूसरे साथी लिख पड़े हैं कि आज गद्यांश को पढ़कर सुखद आश्चर्य हुआ, वाकई में हम जो सोच रहे थे वही यहाँ शब्द निरूपित हुआ, यानी एक अनन्य लाजवाब हुस्न मलिका पूर्णतः अभिजात अभिनेत्री नूतन जी की कहानी को सुंदर तरीके से शब्दों

भी रोया गया है। कई दिन बाद शायद ये प्रयोग हुआ है। इन्होंने ढेर सारा धन्यवाद दिया है और लिखा है कि आज बेहतरीन गीतों की माला सजाई जाएगी। गानों का सिलसिला शुरू हो उससे पहले कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज गुजरे ज़माने की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नूतन जिंग की जन्म जयंती है, लिहाजा छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी है उन्हीं की फिल्मों के गीत हैं। जी हाँ बिल्कुल। आगे लिखा है कि नूतन के सौंदर्य को मिस इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वो इस पुरस्कार को पाने वाली पहली महिला थी, ऐसी जानकारी इन्होंने दी है। तो दूसरे साथी क्या लिखते हैं कि कार्यक्रम में फिर से शामिल होने वाले इस गद्यमयी इबारत में एक छोटी सी गुड़िया के मन की गुदगुदी भरी बड़ी सी कहानी का चित्रण बंदिनी, सुजाता, छलिया, अनाड़ी, महाराजा आदि के माध्यम से भली भांति उकेरा गया है। और इस दृष्टिकोण से गुड़िया की कहानी जो वादे तक आती है तो हर हृदय को स्पर्श करने में पूरी तरह समर्थ है। और फिर तो भाई गीतों का सिलसिला शुरू करना ही पड़ेगा। और साथियों, चूंकि आज के टेक्स्ट में जिक्र है एक छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी का, तो भाई आज के सुरीला सफर की कहानी का आगाज भी इसी गाने के साथ होना चाहिए। क्या कहते हैं आप, इस गाने को सुनकर बताइएगा क्या राय है आपकी।

0: बात सुनी रात सुहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी।
1: तो भाई सीमा फिल्म के इस गाने के साथ कार्यक्रम सुरीला सफ़र का आगाज़ हो गया है, और हमारे साथी ने भी लिखा है कि बहुत ही साफ़ सुथरे गीत से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि फिल्म सीमा का ये गीत मेरी लिस्ट का, यानी उनकी लिस्ट का पहला गीत बच गया। तो आप सब भी अपनी अपनी लिस्ट में गाने टिक करते चलिएगा कि कौन कौन सा गाना हमारी लिस्ट के साथ मेल कर रहा है। वैसे आप गाने लिख कर भेजिए हमें, हो सकता है कि आप वाला गाना बज ही जाए। वैसे एक साथी ने लिखा है कि इस गाने में सरोद का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है, फिल्म सीमा लता जी शंकर जयकिशन का संगीत। जी हाँ। और आगे एक साथी लिखते हैं कि नमस्कार किया है, लिखते हैं अगर आज की इबारत को देखा जाए तो लगता है कि आज तो गाने बहुत ही सुंदर और सुनने को मिलेंगे, आज तो बहुत आनंद आएगा। और दूसरे साथी ने लिख दिया है कि नूतन ने बिना ज़्यादा बोले सिर्फ अपनी आँखों और चेहरे के भावों से भावनाओं को व्यक्त किया, फिल्म सुजाता 1959 और बंदिनी 1963 जैसी फिल्म में उनका संवेदनशील अभिनय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यकीनन साथियों, उनकी सादगी में एक अनोखा आकर्षण था जो बिना किसी दिखावे के सीधे दिल को छू जाता था, और उनकी खूबसूरती केवल चेहरे तक सीमित नहीं थी बल्कि उनके व्यक्तित्व, विनम्रता और संस्कारों में भी झलकती थी। जैसा कि हमारे एक साथी ने उनकी आँखों के लिए लिखा है कि अपनी आँखों और चेहरे के भावों से भावनाएं व्यक्त करती थीं, तो यकीनन उनकी आँखें भावनाओं की ऐसी भाषा बोलती थीं जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। प्रतिभा, सौम्यता और आत्मविश्वास का जो सुंदर संगम अभिनेत्री नूतन में था, वो उन्हें अपने दौर की सबसे विशिष्ट अभिनेत्रियों में शामिल करता है। एक और कमेंट आया है हमारे पास कि ऐ मेरे हमसफ़र रोक अपनी नज़र, ये दिल है बड़ा बेअसर, बचपन के दिन भी क्या दिन थे उड़ते फिरते, ऐसा गाना लिखा है। इन्होंने बहुत सारे गाने लिख भेजे हैं और लिखा है कि युग युग से गीत मिलन के गाते हैं, गाते रहेंगे, यानी इन्होंने नूतन जी के बहुत सारे गानों को यहां तक भेज दिया है। और एक साथी ने लिखा है कि मैं तो यही कहूंगी कि ब्लैक एंड वाइट का जो दौर था वो बहुत ही सुंदर था, एक श्वेत शाम दौर की फिल्मों में जो सादगी, आँखों की भाषा और ठहराव था वो आज के शोर शराबे में कहीं खो सा गया है। उस दौर की भोली सी सूरत और गहरी आंखें बिन कुछ कहे भी सब कुछ कह जाती थीं। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। वैसे आप बताइएगा, आप सब साथी, कि आपको ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में ज़्यादा अच्छा लगता है फिल्में देखना या रंगीन, और नूतन जी की कौन सी फिल्म है जो आपके दिल के बेहद करीब है। एक कमेंट में हमारे साथी ने लिखा है ब्लैक एंड वाइट सिनेमा के स्वर्णिम युग में नूतन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक थीं। उनकी सादगी, प्राकृतिक अभिनय और सशक्त किरदारों ने उन्हें उस दौर के दर्शकों के दिलों की धड़कन बना दिया था। वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थीं बल्कि उन्होंने अपनी आवाज़ और आँखों के भावों से हर किरदार में जान डाल दी। उन्होंने बिना किसी लाउड मेकअप या ड्रामे के केवल अपने संजीदा अभिनय से ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के पर्दे पर अपनी एक अमित छाप छोड़ी। बिल्कुल सही बात है, और उदाहरण है उनकी क्लासिक फिल्मों में उनका क्लास, अभिनय, बंदिनी, सुजाता, तमाम फिल्में हैं साथियों। ढेर सारी कमेंट्स मेरा शामिल करने का इरादा है गीतों के साथ। बहरहाल अगला गीत प्ले हो उससे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ढेर सारे कमेंट्स ले लूँ। उन्होंने मेरे साथी लिखते हैं एक कि इन्होंने लिखा है कि अभिनेत्री नूतन हिंदी सिनेमा की सबसे प्रतिभाशाली और सम्मानित अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। अपनी सहज अभिनय शैली, प्रभावशाली आँखों की अभिव्यक्ति और भावनाओं को जीवंत रूप से पर्दे पर प्रस्तुत करने की उनकी अद्भुत क्षमता के कारण उन्हें दर्शकों के दिलों में विशेष उन्होंने स्थान बनाया। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि मधुर गीत से आगाज हुआ आज के इस कार्यक्रम का। तो एक दूसरे हमारी एक साथी हैं लिख रही हैं कि तब मैं बहुत छोटी थी, नूतन की फिल्म लगी थी तेरे घर के सामने, मेरे पापा नूतन जी के अभिनय वाली कोई भी फिल्म लगी हो तो हम सबको जरूर देखने जाते थे। उन्हीं दिनों में नूतन की सरस्वती चंद्र, खानदान और दुल्हन एक रात की देखी थी। उस समय नूतन के अभिनय में क्या खासियत है ये नहीं पता था, मगर जब थोड़े बड़े हुए तो सुजाता और बंदिनी देखने के बाद जाना कि अभिनेत्री नूतन में क्या खास है। धीर गंभीर चेहरे के पीछे

भावप्रवण अभिनय। मैंने लगभग नूतन के अभिनय की सारी फिल्में देखी हैं और मेरे पापा की तरह वो मेरी भी पसंदीदा अभिनेत्रियों में शुमार हैं। शायद ही कोई होगा ऐसा साथियों जिसे अभिनेत्री नूतन पसंद ना हो और उनका अभिनय पसंद ना हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सहज अभिनय बहुत कम देखने को मिलता है। तो वहीं एक और कमेंट में लिखते हैं साथी कि नूतन जी भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री थीं जिन्होंने शादी और करने और मां बनने के बाद भी बतौर लीड एक्ट्रेस बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्में दी। अपनी सजल आंखों और स्वाभाविक अभिनय के लिए मशहूर नूतन थीं। जिस लड़की को रूप रंग के लिए ताने मिले उसी नूतन ने 1952 में महज 16 साल की उम्र में मिस इंडिया मिस मसूरी का खिताब जीतकर सबको चौंका दिया था। तो चलिए कमेंट बहुत सारे हैं, गाना बजने के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसा कि आप सबने कहा है कि नूतन जी गाती भी थी, हमारे बहुत सारे कमेंट्स में मुझे पढ़ने को मिला है। तो जी हाँ, वो गाती भी थी। तो जब छोटी सी गुड़िया की कहानी का आगाज़ हुआ है तो देखें वो गुड़िया आगे क्या कहती है।

तो ये वही फिल्म थी, वही गाना था जिसका आपको इंतजार था। छबीली फिल्म का गाना था और आवाज अभिनेत्री नूतन की थी। जैसा कि हमने आपसे पूछा था कि आपको अभिनेत्री नूतन की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है, आपके दिल के करीब है, तो हमारी एक साथी लिख रही हैं कि उनकी किसी एक फिल्म को चुनना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिल्म सौदागर में उनका अभिनय मेरे दिल को छू गया। तो वहीं दूसरी सखी ने भी लिखा है कि नूतन की सौदागर मुझे बहुत अच्छी लगी, एक बेबस बेवा की शक्ति रूप का शानदार प्रदर्शन है। सच में साथियों, उनकी हर फिल्म में उनका क्लास अभिनय हम सभी के दिलों में आज भी बसा है। एक साथी ने लिखा है कि नूतन जी मेरे जन्म से पहले की अदाकारा हैं, परंतु उनकी कई पुरानी ब्लैक एंड वाइट फिल्में मैंने दूरदर्शन पर, ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन पर देखी हैं और उनकी नई फिल्में सिनेमा हॉल में भी देखी हैं। वे सदाबहार अदाकारा हैं। एक साथी ने लिखा है कि बिमल रॉय की फिल्म बंदिनी भारतीय सिनेमा की एक मील का पत्थर है और आगे लिखा है कि इस फिल्म में नूतन द्वारा निभाया गया कल्याणी का किरदार हिंदी सिनेमा के इतिहास में अभिनेत्रियों द्वारा दिए गए सर्वश्रेष्ठ और सबसे सशक्त अभिनय में से एक माना जाता है। कल्याणी का चरित्र एक ऐसी शांत महिला का है जिसके भीतर जुनून और वेदना का ज्वालामुखी उबल रहा है। उन्होंने बिना किसी लाउड ड्रामे का अभिनय बहुत ही कोमलता और गरिमा के साथ इस भूमिका को जिया। उनकी संवाद के बजाय अपनी आंखों से उन्होंने सूक्ष्म के भावों से अपनी पीड़ा और असमंजस को पर्दे पर उतारा। वो प्यार, त्याग और अपराध बोध के द्वंद्व को केवल एक नजर से बयां कर देती थी। फिल्म के क्लाइमेक्स में जिस तरह अपने प्यार, अपनी जिंदगी त्याग कर अपने पुराने प्यार की तरफ लौटती हैं, क्या कोई सिने प्रेमी उनके इस किरदार और को अदाकारी को भूल सकता है? कोई नहीं भूल सकता साथियों, कोई भी नहीं। और इतने भावों को अपनी आंखों से बयां करना कोई आसान काम नहीं है। तो एक साथी ने लिखा है कि नूतन की फिल्मों के गानों, विशेष रूप से लता मंगेशकर जी द्वारा गाए में उनका जो लिप सिंक होता है इतना सटीक और स्वाभाविक होता था कि वे गीत सीधे उनके किरदार का हिस्सा लगते थे। तो दूसरे साथी लिखते हैं कि उनकी सारी फिल्में, नूतन जी की सारी फिल्में सुपरहिट रही हैं। सुनील दत्त के साथ उनकी फिल्म खानदान बचपन में दो आना टिकट दर पर देखी थी, पारिवारिक फिल्म सपरिवार देखी थी। नूतन जी की फिल्मों से जुड़ी आपकी कोई याद हो तो जरूर साझा कीजिए साथियों। और हाँ, अपनी लिस्ट के गाने टिक करना मत भूलिएगा और हमें बताना मत भूलिएगा कि आपके कौन कौन से गाने मेल खा रहे हैं। एक कमेंट आया है कि नूतन महज एक अभिनेत्री नहीं थी बल्कि भारतीय सिनेमा के कैनवास पर उकेरी गई एक ऐसी जीवंत कविता थी जो बिना किसी शोर के सीधे दिलों को छू लेती हैं। चेहरे पर सादगी, अभिनय में सहजता और कैमरे के सामने हमेशा ईमानदारी रहने वाली नूतन की अभिनय शैली, संवाद अदायगी और उनकी भाव भंगिमाओं में दर्शक बन जाते हैं। नूतन अपने किरदार में इतनी गहराई से उतर जाती थी कि सिनेमा घर से बाहर निकलने के बहुत बाद भी उनकी हर हरकत, हाव भाव, नज़र और संवाद मन में बसे रहते हैं। उनकी आंखें शब्दों से अधिक कह जाती हैं। नूतन आज भी उस पहली बारिश की महक की तरह हमारे दिलों में महकती हैं जिनकी यादें वक्त के साथ कभी धुंधली नहीं होती। बहुत अच्छी बातें आपने बहुत अच्छे शब्दों को पिरो कर लिखी हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि मैंने भी आज की इबारत से एक पैराग्राफ बनाया है और पुराने रेडियो गीतों की मधुर धुनें जब श्वेत श्याम यादों को फिर से जीवंत कर देती हैं तब मन अनायास ही उन सुनहरे पलों में खो जाता है। कभी सुजाता की मासूमियत दिल को छूती है तो कभी बंदनी की भावनाएं मन को बांध लेती हैं। अनाड़ी, छलिया, सौदागर और सरस्वती चंद्र जैसी फिल्मों के किरदार आज भी यादों में वैसे ही बसे हैं जैसे सावन में कन्हैया की बांसुरी की मीठी तान। वाह, क्या बात है। आगे लिखा है, चुनरिया के रंग, राधा का प्रेम, छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी और एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने जैसे गीत पुराने दौर की मोहब्बत और अपनापन फिर से महसूस करा देते हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने भेजा है कि आज की इबारत में एक नूतन प्रयोग किया गया है जिसमें अभिनेत्री नूतन जी की फिल्मों को जोड़कर इबारत बनाई गई है। आज छैल छबीली अभिनेत्री नूतन जी की फिल्मों और उनके शानदार अभिनय और बढ़िया गीतों से सुरीले सफर को सजाया गया है। अपनी आंखों से अभिनय को जीवंत करने में माहिर नूतन जी ने एक अपनी अलग ही पहचान बनाई थी। श्वेत श्याम फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया और ढलती उम्र में भी माँ की भूमिका में भी अपने बेहतरीन अभिनय से वो स्थान बरकरार रखा जो वो शुरुआती दौर में था। ऐसी महान अभिनेत्री नूतन जी को विनम्र नमन।
एक कमेंट आया है कि नूतन जी हिंदी सिनेमा की सबसे संजीदा और सहज अभिनेत्रियों में जानी जाती हैं। उनकी आंखें ही संवाद बोलती थीं। फिल्म बंदनी में कल्याणी की खामोशी हो या सुजाता में अछूत लड़की की पीड़ा या फिर तुलसी तेरे आंगन की में सौतन की जटिल भावनाएं उनकी आंखें ही बोल देती थीं। सत्यजीत रे जी ने कहा था कि नूतन की आंखों में ही स्क्रिप्ट लिखी होती है। नूतन जी ने अपने हर किरदार को जिया है। उन्होंने आदर्श नायिका की परिभाषा बदली और उनके किरदार कमजोर नहीं बल्कि हालातों से लड़ने वाले ज्यादा रहे। आज उनके जन्मदिन पर उन्हें सादर नमन। और जैसे कि बात बंदनी की चल ही रही है तो जब बात चले बंदनी फिल्म के जिक्र आए तो उस फिल्म का ये गाना ना बजे ऐसा तो हो नहीं सकता।

हाँ तो साथियों, ये गाना ना बजे ऐसा तो हो ही नहीं सकता जब बंदनी फिल्म का जिक्र हो, और आज भी ये गाना सुनो तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए देखें हमारे साथी लोग क्या कहते हैं। वैसे जब बहुत सारे साथियों ने उनकी मुस्कान और आंखों के बारे में लिखा है, तो सच में साथियों, नूतन जी की मुस्कान में मासूमियत थी, उनकी अदाकारी में गहराई थी, सादगी उनका आभूषण थे और प्रतिभा उनकी असली पहचान थी। और वो सिर्फ पर्दे का सितारा नहीं थी, बल्कि वो हैं भारतीय सिनेमा की अमर विरासत। चलिए देखते हैं हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि बंदनी सौदागर, मेरी जंग, कर्मा, मैं तुलसी तेरे आंगन की और सुजाता, मिलन और बहुत सारी फिल्में हैं जो हमारी पसंद की हैं। आगे दूसरे साथी ने लिखा है कि नूतन जी की बंदनी, अनाड़ी और सौदागर तीनों फिल्मों में उनका काम बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन काम लाजवाब है। उनकी मुस्कुराहट दिल को मोह लेती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। तो दूसरे साथी लिख रहे हैं फिल्म सीमा, बंदनी, सुजाता, सौदागर, मैं तुलसी तेरे आंगन की यादगार फिल्म है। वैसे बचपन में दिल्ली का ठग देखने में भी बहुत अच्छी लगती थी, उसके एक गाने के लिए। वो गाना कौन सा है जरा ये तो बता दीजिएगा। और दूसरे साथी लिखते हैं कि मैं नूतन जी के सब फिल्में तो मैंने देखी नहीं है, मुझे नूतन जी अभिनीत बंदनी और सौदागर फिल्म में उनका अभिनय बहुत अच्छा लगा। तो वहीं वैसे दूसरे साथी ने लिखा है कि नूतन जी की 1973 की सौदागर फिल्म बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है, जो नरेंद्र नाथ मित्रा की बंगाली कहानी रस पर आधारित है। ये फिल्म कल्ट क्लासिक साबित हुई। रविंद्र जैन का जादुई संगीत बेहद शानदार, गीत है तेरा मेरा साथ रहे में भी शामिल हो। इंतजार कीजिए ना। एक कमेंट में लिखते हैं कि नूतन जी उन दुर्लभ अभिनेत्रियों में से थी।

जिन्होंने ये साबित किया कि एक महान कलाकार को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चिल्लाने या तेज संवादों की आवश्यकता नहीं होती। सीमा सुजाता और तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों में उन्होंने जो रेंज दिखाई वो आश्चर्यजनक थी। बिल्कुल करेक्ट आपने लिखा है ये बात। और दूसरे साथी लिखते हैं कि नूतन जी बहुत सुंदर अभिनय करती थी। उनकी कुछ फिल्में जो हमें पसंद हैं, सरस्वती चंद्र, बंदिनी, सुजाता, सीमा वगैरह वगैरह। एक कमेंट में सुजाता फिल्म के लिए लिखा है कि ये फिल्म समाज में फैली छुआछूत और जातिवाद जैसी गंभीर रूढ़ियों पर चोट करती है। नूतन ने इसमें एक अछूत लड़की सुजाता की मुख्य भूमिका निभाई थी। विशेषतः नूतन के अभिनय की सादगी और उनके द्वारा झेले गए सामाजिक दर्द को दर्शकों ने बेहद करीब से महसूस किया। समीक्षकों के अनुसार इस फिल्म ने नूतन को एक गंभीर और संजीदा अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। और दूसरे साथी ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर संजीदा अभिनेत्री नूतन जी के जन्मदिन पर उन्हीं को समर्पित है। ये जानकर अच्छा लगा, शोभना समर्थ की बेटी ने अपने अभिनय से माँ का नाम ही नहीं ऊंचा किया, उन्होंने जिन भी फिल्मों में अभिनय किया एक आदर्श पत्नी, बहन, प्रेमिका, माँ के रूप में जो स्थान पाया वो किसी अभिनेत्री को आज तक नहीं मिला। बंदनी फिल्म के लिए लिखा है कि 1963 की बंदनी बिमल रॉय के निर्देशन में बनी इस फिल्म को भारतीय सिनेमा के मील का पत्थर माना जाता है। इसमें उनके सशक्त अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था।

एक साथी ने अंग्रेजी में कमेंट हमें लिख भेजा है, नमस्कार करते हुए, गुड आफ्टरनून करते हुए कि सुरीला सफ़र के लिए कि टुडेज द टेक्स्ट इज़ नाइस एंड इंडिकेट्स मैनी इंटरेस्टिंग सॉन्ग्स दैट विल बी द कंपेनियन ऑफ लिसनर्स इन सुरीला सफ़र फ्रॉम बंदिनी छलिया सुजाता सौदागर अनाड़ी सरस्वती चंद्र खानदान पेइंग गेस्ट टू तेरे घर के सामने ओनली नूतन जी एंड नूतन जी एक्सीलेंट स्पॉन्टेनियस ब्यूटिफुल एक्ट्रेस ऑल द बेस्ट।

0: एक कमेंट में लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर की हम सफर बन रही हैं अपने जमाने की दिग्गज अभिनेत्री और गायिका नूतन, जिनका आज जन्मदिन है, उन्हें मैं पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के सारे गीत उन्हीं की फिल्मों से होंगे और उनके नाम की इबारत में बड़ी खूबसूरती के साथ शामिल किए गए। नूतन हिंदी सिनेमा की एक दिग्गज और बहुमुखी कलाकार थी, जिन्होंने अपनी सादगी, सशक्त अभिनय और अनूठी शैली से दर्शकों का दिल जीता। और लिखा है आगे दूसरे साथी ने कि आज सुरीले सफर में होंगी वो बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत नूतन जी, जितनी हमारे बीच की सामान्य सी लड़की वहीं बेहद स्मार्ट नायिका छलिया अनाड़ी में एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिलेंगे। बहुत ही खास होगा आप सभी के साथ नूतन जी की बातें और खानदान का वो खूबसूरत गीत तुम्हें मेरी मंजिल फूल तुम्हें भेजा है। ढेर सारे गाने इन्होंने लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और अब जो बातें चल रही हैं और इसमें जिक्र आ चुका है फिल्म सुजाता का, जो कि सभी साथियों ने लिखा है, तो फिल्म सुजाता का वो गीत जिसका आप सबको है इंतजार, और मुझे लगता है कि ये गाना निश्चित रूप से आप सभी की लिस्ट में जरूर होगा। बताइएगा जरा कि इस गाने में इनके साथ कौन है।
1: mm-hmm.

सुजाता फिल्म का ये गाना जलते हैं जिसके लिए। इस गाने को जितनी बार चाहो रेडियो पर सुनो या पर्दे पर देखो बहुत कम लगता है। कितना सहज है ये गाना और अभिनेता अभिनेत्री कितनी सहज अभिनय इसमें इन दोनों कर बैठे हैं। जैसा कि हमने पूछा था आपसे कि इस गाने में अभिनेता कौन है, तो हमारे सभी साथियों ने इसका बिल्कुल सटीक आंसर दिया। साथियों ने लिखा है कि सुनील दत्त टेलीफोन पर यह गाना उन पर फिल्माया गया है और इस गाने में नूतन भी टेलीफोन पर ही हैं जो सुनील दत्त के दिल की बातें सुन रही हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि फिल्म खानदान का तुम ही मेरी मंदिर तुम ही मेरी पूजा ये गाना जो है बहुत से संगीत कार्यक्रमों में गाया है मैंने और एक प्रतियोगिता में इस गाने के लिए पुरस्कार भी जीता है। वाह भाई क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। तो आगे एक हमारी सखी लिखती हैं कि बंदिनी सुजाता और सीमा शिव आगे लिखा है कि नूतन जी की किसी एक फिल्म को चुनना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मैंने मेरी सबसे ज़्यादातर तीन फिल्मों का अलग अलग फिल्मों के बारे में जो इन्होंने लिखा है ये फिल्में इन्हें बहुत पसंद है। एक कमेंट है जिन्होंने लिखा है कि मैंने रेडियो थोड़ा देर से चालू किया और जैसे ही चालू किया मोरा गोरा रंग गाना आया, मन खुशी से झूम उठा। मुझे लगा शायद ये गाना बज चुका है। मैं जब छोटी थी दूरदर्शन पर सुजाता पिक्चर देखी, हर पिक्चर देखकर मन रो देता था। हमेशा अपने ऊपर होने वाले अन्याय के लिए चुपचाप सहती रहती नूतन जी। वैसे तो हमारी मम्मी के ज़माने की हीरोइन थी, लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जो सीधी और शांत सहेलियाँ रहती थीं उनको हम सब कहते थे ये नूतन है और बाकी सब तनुजा। तो बताइएगा जरा कि नूतन जी और तनुजा जी में रिश्ता क्या है। एक साथी ने लिखा है कि फिल्म सुजाता का गाना हमने सुना, सुनील दत्त साहब टेलीफोन पर नूतन जी को अपने दिल की बात कह रहे हैं, आवाज तलत महमूद साहब की है। और एक ने लिखा है कि फिल्म सुजाता में सुनील दत्त जी हैं और बहुत अच्छा फिल्म अंकन है ये। दूसरे साथी लिखते हैं कि श्वेत श्याम फिल्मों का दौर भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम अध्याय था, जहां अभिनेत्री नूतन ने अपने स्वाभाविक अभिनय से दर्शकों के दिलों में एक खास स्थान बनाया। इन्हीं स्मृतियों में सुजाता का भोला चेहरा, गहरी आंखें और मासूम अदाएं जीवंत हो उठती हैं। कहीं वो बंदिनी है, कहीं अनाड़ी की नायिका, तो कहीं प्रेम और विरह के गीतों में डूबी एक संवेदनशील स्त्री। उनकी फिल्मों में के अनेक गीतों को के साथ प्रेम, प्रतीक्षा तथा सपनों से भरे इस अमर श्वेत श्याम गीत को आज भी जब रेडियो पर सुनते हैं, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, तब श्वेत श्याम दौर की फिल्में और गाने सुनहरी यादें बनकर मन को छू जाते हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि आज की भारत में शब्द ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उस शख्सियत की फिल्मों से गीत ढूंढना है जिनका नाम नूतन है। आज उनका जन्म स्मृति दिन है, उस छबीली अभिनेत्री को विनम्र नमन करते हैं। उनके द्वारा निभाए गए हर किरदार में नूतनता भरी होती थी, क्योंकि नूतन एक अभिनेत्री ही नहीं भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति थी। हर कोई एक कार्य की सीमा होती है, लेकिन उनके द्वारा निभाए गए किरदारों की कोई सीमा नहीं होती, चाहे वो कन्हैया अनाड़ी या छलिया राज कपूर के साथ हो, या सौदागर अमिताभ बच्चन के साथ हो, या धर्मेंद्र के साथ एक रात की बनकर चुनरिया रंग ली हो, या हैंडीकैप सुनील दत्त की पत्नी राधा बनकर उनकी सेवा करते हुए खानदान का नाम रोशन किया हो, या पेइंग गेस्ट देवानंद को तेरे घर के सामने घर बनाने और दुनिया बसाने की हामी भरती हो, उस छोटी सी गुड़िया की कहानी का सुनने का इंतजार रहेगा। और इन्होंने अपना उनको विनम्र नमन भेजा है। तो चलिए, जब अनाड़ी फिल्म का भी जिक्र आ चुका है राज कपूर जी के साथ, तो अब हम अनाड़ी फिल्म के गाने की ओर बढ़ते हैं। आपको ये बताना है कि ये गाना जैसे ही शुरू होता है तो नायिका कौन सा वाद्य बजा रही हैं।

तेरा जाना, दिल के अरमानों का लुट जाना, अनाड़ी फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ और फिल्म आया गया नूतन जी पर। जैसा कि हमने पूछा था कि इस गाने में जैसे ही शुरुआत होती है तो नायिका कौन सा वाद्य बजा रही हैं, तो हमारे सभी साथी लिखते हैं कि पियानो बजा रही हैं अभिनेत्री, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। और हमने ये भी पूछा था कि नूतन जी और तनुजा जी में आपस में क्या रिश्ता है, तो उसको लेकर भी बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आए हैं। उससे पहले हम नूतन जी की फिल्मों से लेकर एक याद साझा की है हमारे एक साथी ने कि एक घर बनाऊंगा जी, मैं बताना चाहूंगा कि शादी से पहले मैंने होने वाली धर्म अपनी धर्मपत्नी के घर के सामने तो घर नहीं बनाया, लेकिन एक बड़ा घर बनाया उनके घर के सामने वाली सड़क पर और अजमेर की उसी कॉलोनी में फिर ब्याह कर अपनी धर्मपत्नी को उसी घर में स्वागत किया। एक ये प्यारी सी याद इनकी बड़ी ही मीठी सी रही, बहुत अच्छी लगी। और वहीं जहाँ पर हमने पूछा था कि नूतन जी और तनुजा जी का रिश्ता, तो लिखते हैं साथी कि नूतन और तनुजा आपस में सगी बहनें हैं लेकिन दोनों का फेस बिल्कुल नहीं मिलता। तो दूसरे साथी ने लिखा है कि नूतन की छोटी बहन है तनुजा, दोनों शोभना समर्थ जी की बेटियां हैं जो स्वयं अपने दौर में नायिका रही हैं। फिल्म सुजाता के लिए लिखते हैं कि ये सदाबहार गीत जलते हैं जिसके लिए तलत महमूद की मखमली आवाज़ में गाए गए, मजरूह सुल्तानपुरी के सबसे खूबसूरत रोमांटिक गीतों में से एक है। एसडी बर्मन के संगीत और सुनील दत्त के फ़ोन पर अभिनय से मधुर बनाया है इसे। और एक साथी ने कुछ अपनी यादें साझा की हैं कि नूतन बुआ जी की तो सभी फिल्में देखी हैं, पर अब आप लोग कहेंगे कि इसकी बुआ कैसी, तो बताती हूँ। जब हम ठाणे में थे और बाबा पिताजी के दोस्त पर्सनल सेक्रेटरी थे नूतन बुआ जी के, तब वो मुंबरा में रहा करती थी। बाबा को बालू चाचा ने एक बार नूतन बुआ जी के घर में ले गए थे, तो वो बाबा की वो अनमोल याद मिली जो बहुत कम लोगों को मिलती है। तब नूतन जी ने खाना खुद बनाया और इन दोनों को खिलाया, बहुत सिंपल सा। और नूतन बुआ मराठी में बहुत सुंदर बातचीत करते हुए खुद को परोसा गेट तक छोड़ने आई और मराठी में कहा, ये तरहा भाऊ कधी कधी वेल मिलाला तर बालू दादा सोबत। बाबा नतमस्तक हो गए कि इतनी बड़ी हीरोइन खुद खाना बनाती है, परोसती है, ऊपर से गेट तक आती है, भाव कह के ऐसी हीरोइन कहीं नहीं मिलेगी। बहुत यादगार बात है। नूतन जी के लिए कुछ और हमारे पास कमेंट्स हैं। लिखते हैं कि नूतन हिंदी फिल्म जगत की एक नामचीन अदाकारा रही हैं, उनके अभिनय का लोहा हर किसी ने माना है। गूगल ने हिंदी सिनेमा की इस दिग्गज अभिनेत्री को उनके 81वें जन्मदिन पर एक विशेष गूगल डूडल के माध्यम से याद किया था। उनकी बेजोड़ अभिनय क्षमता को श्रद्धांजलि देते हुए डूडल में उनके निभाए गए सबसे प्रतिष्ठित किरदारों के भावों को दर्शाया गया। नूतन की बहुमुखी प्रतिभा को केवल एक चित्र में समेटना मुश्किल था, इसलिए डूडल में उनके चेहरे के चार अलग अलग भावों को चित्रित किया गया था। ये भाव बंदिनी की संघर्षरत कल्याणी, सुजाता की व्यथित और सीमा की एक उपद्रवी अनाथ लड़की के रूप में उनके उत्कृष्ट अभिनय को दर्शाते हैं। नूतन की एक विशिष्ट अभिनय शैली थी जिसमें वे चेहरे की न्यूनतम भाव भंगिमाओं और आवाज़ के मॉड्यूलेशन से गहरा भाव प्रवण अभिनय किया करती थी। बिल्कुल। और इस गाने में भी जो अब आप सुनेंगे उनका जो आँखों का और जो फेशियल एक्सप्रेशन हैं वो कुछ कम तो नहीं है। अब आपको ये बताना है कि इस गाने में उनके नायक कौन है, और हमारे मुझे ऐसा लगता है कि ये गाने का भी इंतज़ार आप सबको है। वैसे आप सब अपनी अपनी लिस्ट के गाने नोट कर रहे हैं ना, हम तक भेजिए ज़रूर कि आपके अब तक कितने गाने टिक हो चुके हैं।

सौदागर फिल्म का ये गाना था और हमारे सभी साथियों ने लिखा कि इस गाने में नायक थे अमिताभ बच्चन। एक साथी लिखते हैं कि रविंद्र जैन जी का जादुई संगीत, तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा कि वह बेहतरीन मधुर और भावपूर्ण गीत। बेचारी का इस गाने के बाद अमिताभ द्वारा तलाक देना दर्शकों को झकझोर गया था। दूसरे साथी ने लिखा है कि विविध भारती के लिए भी हम यही कह रहे हैं कि तेरा मेरा साथ रहे, दिन हो के रात सदा बना रहे ये साथ। तो दूसरे साथी ने लिखा कि भाई मेरा तो पांचवा गीत हीरो अमिताभ बच्चन रहे एक फिल्म नूतन जी के साथ, इनका पांचवा गीत शामिल हुआ। और दूसरे साथी ने लिखा कि फिल्म अनाड़ी नूतन पियानो बजा रही है, मेरा वाला गाना आ गया। और दूसरे साथी ने लिखा है कि वो पियानो बजा रही हैं, वैसे गाने में बांसुरी का भी खूबसूरत प्रयोग किया गया है, अनाड़ी तेरा जाना हाई पिच पर विशेष गायकी। तो दूसरे साथी ने लिखा कि मेरी लिस्ट का तीसरा गीत भी शामिल हो चुका है। और एक साथी लिखते हैं कि गुड आफ्टरनून, आज प्रोग्राम सुनने के लिए बहुत लेट हो गई, मेरी तबीयत कुछ ख़राब है और ये अभी हॉस्पिटल से आई हैं, तो जैसे ही आपकी आवाज़ सुनी प्रोग्राम नूतन जी पर है उनके जन्मदिन पर उन्हें नमन करते हैं और उनके बारे में क्या कहें, उनकी फिल्मों में से कोई एक फिल्म चुननी बहुत मुश्किल है, मुझे तो उनकी सारी फिल्में बहुत पसंद हैं, उनकी बंदनी सीमा ये दोनों फिल्में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और अब वक्त हो चला है कि आज के इस कार्यक्रम का आखिरी मोस्ट अवेटेड सॉन्ग आप सबकी नजर।

0: हमने।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि आज महान अभिनेत्री न्यूतन जी को श्रद्धांजलि स्वरूप सुरीला सफर में सम्मान दिया जा रहा है। बेहद पसंद आया ये आपका जेस्चर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सामने।
1: आप सभी एक दूसरे को बधाई देते हुए हमारे एक साथी लिखते हैं कि अनेक साथियों के कमेंट शामिल हुए, उन सभी को बधाई और इन्हें प्रस्तुति अच्छी लगी। दूसरे साथी ने लिखा, शानदार लाजवाब सफर रहा आपके साथ, गति में और संगीत में कार्यक्रम का धन्यवाद, प्रश्नों ने बांधे रखा। तो अब साथियों वक्त हो चला है कि आपसे ले लें इजाज़त। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, विविध भारती के इस कार्यक्रम सुरीला सफर को सुरीला और खूबसूरत बनाने के लिए। मैं मिलूंगी आपसे कुछ देर बाद, फिलहाल आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है।

0: इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाए।

0: जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
2: आईसीयू 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है। शॉर्ट सर्किट से कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है। बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जाँच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
3: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
4: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 23,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। विविध भारती पर हम लेकर हाजिर हैं गुजरे जमाने के कुछ नायाब, कुछ अनमोल सदाबहार नगमे।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। विविध भारती पर हम लेकर हाजिर हैं गुजरे जमाने के कुछ नायाब, कुछ अनमोल सदाबहार नगमे।

मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया लाट साहब फिल्म का ये गाना था आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की पहली पेशकश। हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार शंकर जयकिशन ने। साथियों, अगले गाने में भी इन्हीं दोनों आवाजों का जादू है, मोहम्मद रफी और आशा भोसले। क्या कहता है ये गाना, आइए सुने।

0: दिल ने फिर याद किया फिल्म का। ये दो गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले के युगल स्वर, जीएल रावल के बोल थे सोनी कोमी का संगीत। रोशन के संगीत से सजा होगा अगला गाना, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: चलिए साथियों, अब सुना जाए रोशन के संगीत से सजा और साहिद लुधियानवी का लिखा गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। क्या कहता है ये गाना, दिल ही तो है।

मिलन फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अब आपको सुनवाते हैं नौशाद की तर्ज पर शकील बदायूनी के बोल, लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम शबाब।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते
0: हैं। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वर दिल्ली का ठग फिल्म के इस गाने में आप सुन रहे थे। SH बिहारी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार रवि ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। साथियों, इन सदाबहार नगमों की सुंदरता, इनका सौंदर्य, इनका हुस्न कल भी तरोताजा था, खूबसूरत था, आज भी है और हमेशा रहेगा। चलिए अब आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश की ओर बढ़ा जाएं। शंकर जयकिशन की तर्ज पर शैलेंद्र की रचना है, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वर। क्या कहता है कन्हैया फिल्म का ये गाना, चलिए सुनते हैं साथ साथ।

0: हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी आप ये सुन सकते हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश में 8 में से सिर्फ 4 नगर निगमों में चुनाव हुए हैं और इन्हें विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल कहना गलत है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि प्रदेश में लगभग 2400 पंचायतों में कांग्रेस समर्थित प्रधान जीते हैं, लेकिन पंचायत की असली ताकत वार्ड मेंबर की होती है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधान, उप प्रधान और सभी वार्ड मेंबर का एकजुट होना जरूरी है। उन्होंने इन चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल मानने से इनकार किया।
2: पहली बात तो ये है कि ये जो पंचायती राज चुनाव जो हुए हैं, ये कोई हमारे पार्टी सिंबल पे नहीं हुए। ये जो है एक ओपन जो है चुनाव थे। ये ठीक है कि कॉर्पोरेशन के चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पे हुए, 4 के चुनाव हुए और उसमें 3 पे इनकी जो है पार्टी के लोग है जीते हैं, 1 में हमारे भी जीते हैं। तो ये तो जो है एक किस्म से ना तो सेमीफाइनल था ना क्वार्टर फाइनल था।
1: पंजाब में हिमाचल की गाड़ियों से खालसा टैक्स वसूलने के सवाल पर राजस्व मंत्री ने कहा कि इस तरह की अवैध वसूली पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे लेकर पंजाब सरकार के साथ बातचीत की है और इस मामले को उचित स्तर पर उठाया जा रहा है।
2: ये एक सोची समझी साजिश के तहत है। ये हर प्रदेश सरकार का अपना एक अधिकार क्षेत्र है कि आप किस किस्म के टैक्स लगाएंगे, वो तो पंजाब सरकार को देखना है। ये बिल्कुल गलत है। इस किस्म की जो है कोई भी अगर कोई काम करता है वो कानूनन बिल्कुल गलत है, तर्कसंगत नहीं है। हम उसका जो आलोचना करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने बात भी की है, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत देश भर से आए करीब 100 युवा एक सप्ताह तक हिमाचल प्रदेश, खासतौर पर किन्नौर की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, विरासत, रणनीतिक महत्व व परंपराओं से रूबरू होंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय के तहत संचालित माई भारत द्वारा किया गया है। किन्नौर के इस भ्रमण के दौरान युवाओं को यहां के अलग अलग गांवों में जाकर स्थानीय लोगों, पंचायतों, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों से मिलने का अवसर भी मिलेगा। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का शुभारंभ रिकांगपियो में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बेस कैंप में हुआ। इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में बिहार, दमन व दीव, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के प्रतिभागी शामिल हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास, स्थानीय संस्कृति के संरक्षण, युवाओं की सहभागिता और राष्ट्र निर्माण में उनकी सक्रिय भूमिका को प्रोत्साहित करना है। शिमला में एक तहबाजारी की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सीटू से संबंधित रेहड़ी फड़ी तहबाजारी यूनियन ने शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर आज इस मुद्दे पर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। यूनियन का आरोप है कि नगर निगम की कार्रवाई व कर्मचारियों द्वारा पैदा किए गए खौफ के कारण इस तहबाजारी की मौत हुई है। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि वर्ष 2014 में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के तहत रेहड़ी फड़ी वालों को देश में कहीं पर भी काम करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि 31 मई को नगर निगम की कार्रवाई

0: दौरान चंदन नामक विक्रेता गंभीर रूप से घायल हो गए और पिछले कल उनकी मौत हो गई।
1: देश के अंदर एक कानून है स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट जो 2014 में बनाया गया। ये कानून की मूल भावना क्या है कि किसी भी तैबजारी को उजाड़ा नहीं जा सकता बल्कि उसको बसाना है। इसके बावजूद आए दिन जो कार्रवाई नगर निगम प्रशासन करता है, जहां गाड़ियां दौड़ाता है, लोगों के पीछे भागते हैं, उनका सामान छीनते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। 31 मई को 3:30 बजे IGMC के पास जो साथी चंदन और दूसरे साथी जो वहां काम करते हैं, बहुत गरीब लोग हैं, वो साथी जो अपना सामान समेट रहे थे और उसी अफड़ा दफड़ी में गिर गए, वो वहां पर घायल हो गए और पिछले कल उनकी मौत हो गई। हम ये कहना चाहते हैं ये गैर इरादतन हत्या है।
0: प्रदेश में कृषि विभाग द्वारा किसानों को उन्नत किस्म का मक्की बीज उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य के कई जिलों में मक्की की बिजाई का दौर शुरू होने वाला है और 15 जून से अधिकांश क्षेत्रों में मक्की की बिजाई की जाएगी। सिरमौर जिले की 40,332 हेक्टेयर भूमि पर मक्की की खेती की जाती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:00 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं मंडी जिले की चिट्ठी। लेखक है मुनीश सूद और वाचक स्वर प्रभा शर्मा का है।
0: मंडी जिले में हाल ही में संपन्न नगर निगम चुनावों ने प्रदेश की राजनीति में विशेष चर्चा बटोरी। नगर निगम की 15 वार्डों वाली परिषद में 14 वार्डों के लिए मतदान हुआ, जबकि बहना वार्ड में स्थानीय बहिष्कार के कारण चुनाव नहीं हो सका। चुनाव में मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और लगभग 69% मतदान दर्ज किया गया। चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार नगर निगम पर अपना कब्जा बरकरार रखते हुए 12 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस को एक सीट में संतोष करना पड़ा, जबकि एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई। चुनाव परिणामों के बाद मंडी शहर में राजनीतिक गतिविधियां तेज रहीं। विजय रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसे विकास और सुशासन की नीतियों पर जनता की मुहर बताया। उन्होंने कहा कि मंडी की जनता ने एक बार फिर भाजपा के पक्ष में अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने मंडी सदर विधायक अनिल शर्मा की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उनके आक्रामक प्रचार ने कई वार्डों में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी क्रम में मंडी जिला परिषद चुनाव के परिणाम भी राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे। जिले की 36 सीटों के लिए हुए चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। कई प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवारों के उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा, जिससे चुनाव परिणामों ने व्यापक राजनीतिक संदेश दिया। कोटली वार्ड और तेहरा वार्ड जैसे क्षेत्रों के परिणाम विशेष रूप से चर्चा में रहे, जहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर की पुत्री चंपा ठाकुर 2,464 वोटों से चुनाव हार गई। वहीं तेहरा वार्ड में पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की बेटी वंदना गुलेरिया को 47 मतों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं सराज क्षेत्र में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने सभी सीटों पर विजय प्राप्त कर अपनी मजबूत संगठनात्मक पकड़ का परिचय दिया। इन परिणामों ने मंडी जिले की राजनीतिक दिशा और जनमत को एक बार फिर स्पष्ट रूप से सामने रखा है। राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ मंडी जिला शिक्षा, अनुसंधान और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहा है। कमांड घाटी स्थित संस्थान परिसर में होने वाले इस 4 दिवसीय सम्मेलन में भारत और विदेशों से 400 से अधिक वैज्ञानिक, शोधकर्ता, शिक्षाविद, विद्यार्थी तथा आध्यात्मिक चिंतक भाग लेंगे। संस्थान परिसर में होने वाले इस सम्मेलन में भारत से अधिक वैज्ञानिक, शोधकर्ता, शिक्षाविद, विद्यार्थी, आध्यात्मिक चिंतक भाग लेंगे। जिले के कमांड स्थित IIT में 6 जून तक तृतीय अंतर्राष्ट्रीय मन मस्तिष्क व चेतना सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जा रहा है। IIT मंडी के निदेशक प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा ने कहा है कि मन मस्तिष्क और चेतना पर आधारित ये बहुविषयक अध्ययन मानव कल्याण के साथ साथ अल्जाइमर, पार्किंसन, डिमेंशिया जैसी बीमारियों के शोध को नई दिशा देने में सहायक सिद्ध हो सकता है। ये सम्मेलन भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान के बीच संवाद को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। उधर मंडी जिला प्रशासन नशे के विरुद्ध अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से जिला स्तरीय नार्को समन्वय केंद्र यानी एनकॉड समिति की बैठक पुलिस लाइन मंडी में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉक्टर मदन कुमार ने की। बैठक में नशे की रोकथाम, मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण तथा जन जागरूकता कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि विद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाए जाएं। युवाओं को खेल, सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़कर नशे से दूर रखने पर विशेष बल दिया गया। बैठक में ये भी बताया गया कि प्रदेश सरकार द्वारा चिट्टे के विरुद्ध अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप मंडी जिला में भी सभी विभागों के समन्वय से अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि नशे के खिलाफ लड़ाई तभी सफल होगी जब समाज के सभी वर्ग इसमें सक्रिय भागीदारी निभाएं। मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन को प्रतिष्ठित फेम इंडिया मैगजीन बेस्ट जिला दंडाधिकारी सर्वेक्षण 2026 में देश के शीर्ष 100 जिला अधिकारियों में स्थान मिला है। मंडी जिला की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
2: मंडी जिला की चिट्ठी आपने सुनी। लेखक थे मुनीश सूद, वाचक स्वर प्रभा शर्मा का था। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं।

0: तो ये गाना हमारी सखियां और सखा सुन रहे थे। और अब आप मोबाइल के स्क्रीन से बाहर लौट आइए, क्योंकि अभी भी तो हम बात कर रहे थे ना मोबाइल के स्क्रीन से बाहर आना, लेकिन अगर आप बाहर आ गई तो
1: हम श्रोताओं
0: श्रोताओं
1: के
0: की
1: कमेंट्स कैसे
0: कैसे
1: पढ़ेंगे?
0: पढ़ेंगे, ये बात तो है। तो ठीक है, मोबाइल के स्क्रीन को साथ में रखिए, लेकिन अभी हम पद्मश्री दुलारी देवी के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें।
1: जी, मधुबनी जिले के रांटी गांव की रहने वाली दुलारी देवी ने कभी स्कूल की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ी। 25 साल पहले उन्हें पद्मश्री अवार्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आज पूरा देश उन्हें पद्मश्री दुलारी देवी के नाम से जानता है। और ममता जी, इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। जिस तरह वे अपने कैनवास को अलग अलग रंगों से रंगीन बनाती है, ठीक उसी तरह उन्होंने अपनी मेहनत से अपने जीवन में सफलता के रंग भरे। दुलारी देवी कहती है कि मैंने जीवन में बहुत गरीबी देखी है, मुझे पेंटिंग बनाना पसंद है, और आज इसी के बदौलत उन्हें इज्जत और सम्मान मिल रहा है।
0: और आज जब हम कहीं किसी

0: एडिटिंग को बढ़ावा दिया और उसमें आगे बढ़ी, पद्मश्री से सम्मानित हुई। दुलारी देवी की जिंदगी की शुरुआत बहुत नीचे तबके से हुई और एक आम लड़की की तरह गरीब परिवार में हुई। उनके परिवार में शिक्षा को लेकर बहुत कम जागरूकता थी और आर्थिक स्थिति कमजोर थी। वो कभी स्कूल नहीं गई इस वजह से। उनका परिवार मजदूरी करके जीवन बिताता था। दुलारी देवी बचपन से ही माँ के साथ काम पर जाती और घर में भाई बहनों की देखभाल करती थी और उनके पिता मछुआरे थे।
1: देखिए,
0: तो वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी तकलीफें हुई उन्हें, इस कारण दुलारी देवी मायके वापस आ गई थी।
1: और मायके वापस आने के बाद उन्होंने मिथिला पेंटिंग की प्रख्यात कलाकार कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करना शुरू कर दिया।
0: जी, कितनी अजीब बात है ना कि कितने छोटे काम करती थी और उसके बाद और कहाँ तक पहुंची।
1: और आगे चलकर यहीं से उन्होंने मधुबनी पेंटिंग बनाना भी सीखा। दुलारी देवी ने तकरीबन 25 साल तक कर्पूरी देवी के घर पर काम किया। दोनों मिथिला आर्ट्स आर्टिस्ट कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी को पेंटिंग बनाते देख दुलारी देवी को भी मैथिली पेंटिंग सीखने की चाहत हुई। और दुलारी देवी को मिथिला पेंटिंग का शौक तो था ही, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे रंग, कागज और कपड़े खरीद पाती। इसी दौरान उनके लगन को देखते हुए कर्पूरी देवी ने उनकी मदद की और पेंटिंग की बारीकियां उन्हें सिखाई। और 1983 में प्रख्यात पेंटर गौरी मिश्रा ने महिलाओं को मिथिला पेंटिंग सिखाने और उनके काम को प्रमोट करने के लिए एक संस्था बनाई और कर्पूरी देवी की मदद से दुलारी देवी को वहां पर सीखने का मौका भी मिला।
0: और उनकी पहली पेंटिंग सिर्फ 5 रुपए में बिकी थी। सोचिए, 5 रुपए, आज के जमाने में उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। उस समय भी इतनी 5 रुपए की बहुत ज्यादा कीमत नहीं थी। इस संस्था से जुड़ने के बाद उनकी कुछ पेंटिंग बिकने लगी। चूंकि बिहार का मधुबनी जिला मिथिला पेंटिंग के लिए पूरे विश्व में मशहूर है, इसलिए कई विदेशी लोग यहाँ के कलाकारों से मिलने और पेंटिंग खरीदने आते रहते हैं। पेंटिंग से जुड़ी अपनी पहली कमाई के बारे में वो बात करते हुए कहती हैं कि जापान से आए कुछ मेहमानों ने उनसे पेंटिंग वाले 7 पोस्टकार्ड्स खरीदे थे और एक कार्ड की कीमत 5 रुपए थी।
1: और जो फॉरेनर होते हैं, विदेशी लोग होते हैं, इन कलाओं को बहुत महत्व देते हैं और स्थानीय लोगों से जब चीजें खरीदते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है और उन्हें पैसा भी मिला होगा उससे। और गौरी मिश्रा की संस्था से जुड़कर उन्होंने 16 साल तक काम किया। वहीं अपने सबसे महंगी पेंटिंग के बारे में बात करते हुए कहती है कि मैंने अपनी एक पेंटिंग 3 लाख रुपए में बेची थी, जिसे बिहार सरकार ने खरीदा था। आज भी वो पेंटिंग पटना के बिहार म्यूजियम में लगी हुई है।
0: क्या बात है।
1: और दुलारी देवी को पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, लेकिन कर्पूरी देवी ने उन्हें मधुबनी पेंटिंग के साथ साथ खुद का नाम लिखना भी सिखाया। कला के प्रति अपनी रुचि और मेहनत के दम पर दुलारी देवी ने आगे चलकर कई सारे अवार्ड जीते। और दुलारी देवी के पेंटिंग को इग्नू के लिए मैथिली में तैयार पाठ्यक्रम के होम पेज के लिए भी चुना गया था। कितनी कितनी गौरव की बात है।
0: बिल्कुल। और आज भी वो सुबह 4 बजे उठकर पेंटिंग बनाने का काम करती हैं और कहती हैं कि ब्राह्म मुहूर्त में किया गया काम हमेशा अच्छा होता है, इसलिए वो जल्दी उठकर पेंटिंग बनाती हैं आज भी। साथ ही वो कोशिश करती हैं कि अपनी कला के माध्यम से लोक कथा और संस्कृति से लोगों को जोड़ सकें।
1: और पिछले 8 सालों से वे मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट में पेंटिंग सिखाने का काम भी कर रही है। इसके अलावा मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए उन्हें राज्य सरकार से भी मिथिला अस्मिता का सम्मान मिल चुका है।
0: और
1: पद्मश्री से नवाजे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने बताया कि जब दाई जी यानी महासुंदरी देवी को पद्मश्री मिला था, तब मैंने पहली बार इस विशेष सम्मान के बारे में सुना था। आज अगर मेरी गुरु जीवित होती तो मुझे इस मिले सम्मान को देखकर बेहद खुश होती। तो सचमुच कितनी खुशी होती है ना ऐसी बात सुनकर।
0: बिल्कुल, और प्रेरणा की स्रोत है। तो अब एक गाना सुन लेते हैं और फिर बातें करते हैं।

0: तो सोनाली जी, ये गाना हमने सखियों और सखाओं को सुनाया, और बात कर रहे थे शुरुआत में स्पर्श की, कि एक जरा से स्पर्श से आपका मन कितना हल्का हो जाता है। कई बार बहुत बड़ा हादसा टल जाता है सिर्फ स्पर्श से। तो पहले जो दादी नानी के आंचल का स्पर्श होता था, वो एक वटवृक्ष की तरह था, कि
1: सचमुच
0: जैसे हम तपती धूप से निकल कर कहीं पेड़ की छाँव में बैठ जाए, इतना सुकून मिलता था माँ और दादी नानी के आंचल तले, है ना। लेकिन अब वो सब खत्म होता जा रहा है, वो जैसे समय ही खत्म हो गया, अब वक्त ही नहीं है। अब परिवार में जितने सदस्य हैं सब लोग वर्किंग होते हैं अमूमन, और फटाफट तैयार होकर बाहर जाने की हड़बड़ी होती है, होड़ होती है, तो कहाँ वक्त रह गया। लेकिन इसी में, इसी भागदौड़ की जिंदगी में थोड़ा सा समय निकालें, एक साथ परिवार के साथ बैठें, थोड़ा टच थेरेपी का इस्तेमाल
1: है
0: करें। और
1: ना।
0: हम लोग है ना, हम लोग भारतीय खासकर हम लोग ना बस हाथ जोड़ते, चरण स्पर्श में भी ना हम लोग ऐसे पैर को छूते नहीं है, बस जमीन में ऐसा झुक गए और जमीन में बस ऐसे ही आप घुटने तक ही कर अब तो
1: दिया।
0: घुटने तक,
1: हाँ,
0: हाँ
1: बस
0: बिल्कुल,
1: इतना करते हैं। पर जब हम किसी को छूते हैं ना तो उसको भी बहुत खुशी मिलती है, और हमें जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद उस स्पर्श मिलता है उसकी कोई तुलना ही नहीं है। जैसे स्नेह का सबसे सुंदर जो है ना, स्नेह सबसे सुंदर और सहज रूप होता है स्नेहिल स्पर्श। ये स्पर्श कभी माँ की उंगली पकड़ कर चलने में महसूस होता है, कभी पिता के कंधे पर हाथ रखकर मिली हिम्मत में मिलता है, कभी दादा दादी के आशीर्वाद में, तो कभी मित्रों के आत्मीय आलिंगन में। ये स्पर्श शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है ममता जी, और इसमें प्रेम की भाषा होती है,
0: बिल्कुल।
1: विश्वास का संदेश होता है और सुरक्षा का आश्वासन होता है।
0: और इन स्पर्श में ऐसी जादुई शक्ति होती है जो मन की व्याकुलता को शांत कर देती है। बच्चा या बड़े शायद उन शब्दों को भूल जाएं जो उन्हें सुनाए गए थे, लेकिन प्रेम से भरा वो स्पर्श जीवन भर उनकी स्मृतियों में अंकित होता है। वो स्पर्श दो दोस्तों का भी होता है, माता पिता का होता है, पति पत्नी का होता है, भाई बहन का होता है, कि आप जब गले लग जाते हैं तो जैसे प्रेम की धारा प्रस्फुटित हो जाती है। हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद ब खुद रोता हुआ शांत हो जाता है। जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति, और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी। और ये प्राचीन भारतीय वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान में भी ये बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है, और वो केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। सोनाली, आप ये देखिए ना कि जब कोई कहीं जब घर छोड़ता है, बाहर जा रहा होता है, तो आप क्या करते, गले लगते हैं, तो उसका क्या मतलब है कि आप प्रेम का इजहार कर रहे हैं, और वो जो अंतिम मुलाकात होती है
1: जी
0: एक दूसरे से बिछड़ने की, वो आपके जहन में बस जाती है, या आप हाथ पकड़ के सिर पर हाथ रख देते हैं। जैसे कोई दुखद घटना घटित हो जाती है तो कहीं जाते हैं और उसके पीठ थपथपा देते हैं, या बच्चे को पीठ थपथपा के कह देते हैं कि देखो तुम तो विजेता होकर लौटोगे। तो ये बातें याद रह जाती है, और इसमें बहुत शक्ति होती है।
1: पर समय के साथ साथ ये सब हम चीजें भूलने भी लग गए। एक हमारे साथी ने लिखा है, ममता जी, बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे जाता है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि स्नेहिल स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है।
0: बिल्कुल सही बात है। जो परिवार कभी एक साथ बैठकर सभी भोजन किया करते थे, अलग-अलग शहरों और देशों में अब बट गया है। दूरी केवल भौगोलिक नहीं होती है, वो भावनात्मक भी होने लगी है। फोन और वीडियो कॉल से बातचीत तो हो जाती है, लेकिन माँ के हाथों की वो जो ममता, पिता के कंधे का वो जो सहारा, और अपनों की निकटता का वो अनुभव कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा। वो थकान थक के लौटे स्कूल कॉलेज से तो माँ के कंधे पे सिर टिका लिया, भाई से भाई के गले लग गए, तो जैसे थकान कहीं दूर हो
1: छूमंतर हो
0: जाती
1: जाती
0: है।
1: थी, है ना।
0: लेकिन अब वो समय कहाँ है? और अब समय एक
1: गीत
0: गाना
1: सुने,
0: सुनवाने का।
1: सुनते हैं गीत।

0: सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। सचमुच प्यार आंचल में बांधा जा सकता है क्या?
1: सचमुच
0: हाँ,
1: उसे,
0: स्पर्श के माध्यम
1: हाँ,
0: से।
1: उसे समेट कर रखा जा सकता है और बहुत दिनों तक सहेज कर भी रखा जा सकता है ममता जी। एक
0: इन
1: हमारे
0: बीबर ने लिखा था ये
1: जी
0: गाना, और आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज से, आनंद आश्रम फिल्म का गीत था।
1: और एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी कि हमारी तीन सासू माए, तीनों देवरानी जेठानी की उम्र 80 के ऊपर है और ये चाहती है कि बहुएं हमारे पास बैठे, बातें करें और अपना समय दें। हम सभी कोशिश तो करते हैं पर उनकी इच्छाएं पूरी तरह से पूरी नहीं कर पाते क्योंकि हमारी अपनी निजी जिम्मेदारियां भी हैं। वो हमारा प्यार, स्नेह, समय और स्पर्श ही चाहती है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो अब हम एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, फिर और सखियों और सखाओं के कमेंट्स शामिल करते हैं।

0: दोस्तों विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली और श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां सोनाली जी यहाँ आ चुकी हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। देखिए एक श्रोता ने लिखा है कि बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे देता है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए क्योंकि स्नेहिल स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है।
1: वैसे एक सखी ने लिखा।

0: कि दुनिया भर में माँ अमृतानंदमयी इसलिए मशहूर है कि वे अपने से मिलने वालों को गले लगाती है। डॉक्टर इसे स्पर्श थेरेपी कहते हैं। बच्चे हो या बुजुर्ग, जरा सा स्नेह स्पर्श उनके मन की जिजीविषा को दोगुना कर एक नई ऊर्जा से भर देता है। मौका खुशी का हो या दुख का, दिल से किया हुआ आपका प्रेमिल स्पर्श किसी चमत्कार से कम न होगा। अगर आपस के कुछ मतभेद होंगे तो वे भी सुधरेंगे और रिश्तों में मजबूती देने का सुखद और सकारात्मक माहौल बनेगा।
1: और एक श्रोता कह रहे हैं कि ये विषय आधुनिक समाज में बुजुर्गों के अकेलेपन, बिखरते संयुक्त परिवारों और मानवीय संवेदनाओं में आ रही कमी को दर्शाता है। स्नेहिल स्पर्श केवल शारीरिक स्पर्श नहीं है, बल्कि ये अपनों का प्यार, सम्मान, परवाह और मानसिक संबल है। समस्या का मूल मानव जीवन में बचपन और जवानी जिस चकाचौंध और सामाजिक सक्रियता में बीतती है, बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते ही वो सब बदलने लगता है।
0: बहुत सही बात इन्होंने कही। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि बढ़ती उम्र के साथ पीछे छूटता स्नेहिल स्पर्श। हाँ, मुझे भी ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि जब हमारे बच्चे छोटे छोटे होते थे तो हम हर पल उन्हें प्यार दुलार देते थे, उनके सुबह उठने से लेकर रात के बुलाने तक। लेकिन बड़े होने पर हम उस तरह से देखभाल नहीं कर सकते क्योंकि वे कुछ काम अपने हाथों से करने लगते हैं, परंतु प्यार तो हम आज भी बचपन जैसा ही करते हैं पर जताते नहीं है।
1: और फिर यही इसी वजह से बच्चे भी सीखते हैं, क्योंकि जब आप बचपन में उन्हें दुलराते थे, गोद में लेके टहलाते थे, या फिर जब बड़े हो गए तो भी आप गले से लगाते थे, अपने छाती से चिपकाते थे, बड़े होने पर वो दूरी आपने मेंटेन कर ली, तो बच्चों को वो बचपन वाली बात तो याद नहीं रहती, वो बड़ी बड़े होने के बाद याद रहती है, तो बच्चे भी वही सीख रहे हैं।
0: वैसे ही
1: तो
0: कर
1: इसलिए जो आपके घर में जो माहौल होता है कि अगर पति पत्नी आपस में एक दूसरे से दूरी मेंटेन रखते हैं, या सास बहू के बीच एक दीवार खड़ी है, ननद भाभी के बीच, भाई बहन के बीच एक दीवार खड़ी है, तो बच्चे भी वही सीखते हैं, फिर बच्चे भी वो नहीं कर पाते हैं जो आप उम्मीद करते हैं जिसकी।
0: और एक साथी ने लिखा है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद ब खुद शांत हो जाता है। जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा। स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी कोई आधुनिक आविष्कार नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय और वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान भी यही बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव जीवन में ऊर्जा प्रभावित होती है। ये केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। स्पर्श थेरेपी का जादू इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति ने हमारे हाथों में ही इलाज की शक्ति दी है। व्यस्त दिनचर्या में अपनों को गले लगाना है, छोटी सी मालिश देना आपके जीवन को सेहतमंद और खुशहाल बना सकता
1: क्या
0: है।
1: बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है। अमूमन क्या होता है कि कुछ व्यस्तता के कारण, कुछ कुछ टकराव के और कुछ ईगो के कारण भी हम छोड़ते हैं। घर में जब कई बार तकरार होती है, जहां पे 10-4 बर्तन होते हैं, तो
0: खटकते हैं
1: खटखट की आवाज होती है,
0: जी।
1: टकराहट होती है, तो ऐसे रिश्तों में भी टकराव होते हैं। तो आजकल क्या होता है कि सबके सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो का रूप ले लेता है, अहम का, तो वहां पे टकराव ज्यादा होते हैं। अहम छोड़कर अगर एक स्पर्श से कह दिया जाए कि हाँ छोड़ो, जाने दो, हो गया, जो बीत गई सो बात गई, तो बस इतने में झगड़ा खत्म हो जाता है। लेकिन 2-3 लोग जब घर में होते हैं तो अपने अपने ईगो को लेके बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि अरे हाथ बढ़ाते हैं, हमने तो अभी फिल्मों में ये सीन भी दिखाया जाता है
0: और
1: कि
0: फिर
1: हाथ
0: पीछे
1: बढ़
0: ले
1: रहे और
0: लेते
1: फिर पीछे ले लिया। तो ऐसे ही घरों में भी होता है कि आपका मन करता है कि हम जाए अपने बच्चे को गले लगाएं, लेकिन अरे उसने तो पलट के जवाब दे दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे।
0: हम नहीं बोलेंगे,
1: तो
0: वो पहले
1: ये
0: शुरुआत करें, हम क्यों
1: बिल्कुल,
0: करें।
1: तो ऐसे में टकराव और बढ़ता है और दूरी और बढ़ती जाती है।
0: एक साथी ने लिखा है ममता जी कि मेरे विचार से माता पिता को अपने बच्चों को स्नेहिल स्पर्श से वंचित नहीं रखना चाहिए। हम अभी भी अपने बेटे बेटियों को उनके किसी भी अचीवमेंट पर स्नेहिल स्पर्श भी करते हैं और प्यार की झप्पी भी देते हैं, चाहे बेटे अभी पढ़ रहे हैं, बेटियां जॉब में हैं। हाँ, मेरे से ज्यादा मेरी धर्म पत्नी इस मामले में 2 कदम आगे
1: क्या बात
0: हैं।
1: है भाई, बहुत
0: महिलाएं
1: बढ़िया।
0: हर क्षेत्र में
1: हाँ जी,
0: आगे।
1: तो वैसे भी ये कहा जाता है महिलाओं के हिस्से में, ये जोड़ दिया जाता है कि सहनशीलता आपके हिस्से में है, सहनशील बनो, तो ये दोनों तरफ होना चाहिए। अब जमाना बदल चुका है कि अब सिर्फ सहनशीलता महिलाओं के हिस्से में नहीं, पुरुषों को भी उतना ही सहनशील होना चाहिए।
0: और
1: और
0: जैसे आपने कहा ईगो की बात है, तो उस ईगो को झाड़ दीजिए। जैसे हम घर में झाड़ू लगाते हैं वैसे ही हमारे ऊपर से झाड़ू फेरा के उस ईगो को फेंक दीजिए, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना उसकी मिठास ही कुछ और होती है और अपने अपने ही होते हैं। बस ये अहंकार को हमें आड़े नहीं आने देना चाहिए।
1: बिल्कुल, और अपने रिश्तों को छोड़कर कई बार बाहर प्यार जब तक तलाशा जन प्यार तलाशा जाने लगता है तो स्थिति और बिगड़ जाती है। तो इसलिए ये जो स्पर्श वाली चिकित्सा है इसको मेंटेन रखें। एक श्रोता ने एक अनुभव साझा किया है, लिखा है कि वैसे स्पर्श बहुत फायदेमंद होता है, खासकर बुजुर्गों की सेवा और बच्चों जानवर वगैरह। एक बार पिताजी की बुरी हालत थी, उनकी निरंतर सेवा कर स्पर्श ध्यान द्वारा भी जल्दी ठीक हो गए थे। और अन्य ध्यान आप करते हैं जिसमें जिससे मन शांत होता है, ये स्पर्श के बहुत अच्छा होता है। स्पर्श से बच्चों का दिमाग और उनका स्पर्श हमेशा फायदेमंद होता है। मतलब ये कहना चाहते हैं बच्चों के साथ अगर आप उन्हें टच करके छू कर बात करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि ये बीच में एक दौर आया था जहां पर एक दूरी मेंटेन कर दी गई थी, वो था कोरोना समय कि छूना नहीं है, कितनी विपरीत और विषम स्थिति थी। तो ये घर में तो ठीक है अपनों को छू कर बात करना अच्छी बात है, लेकिन कई लोगों की आदत इतनी ज्यादा होती है टच करके बात करने की, बाहर अजनबियों से टच करके बात करते हैं तो वहां पे हालत स्थिति बिगड़ भी सकती है। इसका भी ध्यान रखें आप।
0: बस हमें संतुलन बनाए रखना है उस स्पर्श में भी कि कहाँ जरूरी है और कहाँ नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: कहाँ हद से ज्यादा नहीं आगे बढ़ना है और कहाँ हमें गले,
1: खासतौर से अगर कोई लड़की चली जा रही है और कोई लड़का आकर उसे छू कर बात करे कि हाँ एक्सक्यूज मी मुझे कुछ कहना तो निश्चित रूप से थप्पड़ पड़ जाएगा। और इस समय अब गाना सुनवा दें,
0: सुनते हैं गीत।

0: तो सोनाली जी, मुझे लगा कि आम खाने की तैयारी में लग गई हम।
1: आम अभी पढ़ना है ममता जी,
0: आम आम बहुत खास है, कहने को
1: आम खास हो गए।
0: बिल्कुल, क्योंकि आम जब आम की बाहर आती है गर्मी के मौसम में तो वो खास हो जाता है। फिर सबसे पहला सवाल ये होता है कि आम है कि नहीं खाने में। फिर नाश्ते में, खाने में, दोनों टाइम, मतलब लंच डिनर सब जगह आम शामिल हो जाता है। और उसको कभी आम का रस बना के पूड़ी के साथ, और आम का रस पराठे के साथ, मैंगो शेक बना के कभी काट के। तो आप बताइए आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मतलब
1: मुझे तो वैसे ही पसंद है ममता जी, बस मैं काट के खाना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि ना जो आम रस होता है ना वो थोड़ा पचने में भारी होता है, क्योंकि हमने उसे बनाया फिर ऐसा लगा कि अरे ये तो थोड़ा सा फीका लग रहा है, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दी। फिर माँ बोलेगी कि भाई वो थोड़ा गरिष्ठ होता है, उसमें थोड़ा दूध डाल दो, इलायची डाल दो, ऐसे करते करते करते थोड़ी बादाम की कतरन डाल दो, ऐसे करते करते वो थोड़ा भारी हो जाता है। और फिर है ना खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक कटोरी से समाधान नहीं होता, ऐसा लगे और थोड़ा सा ले ले। फिर खाने में दूसरे भी आइटम होते, सब्जी भी है, दाल चावल है, रोटी है, और भी है, सलाद है, पापड़ है, फिर वो बहुत भारी हो जाता है। तो मैंने अभी शुरू कर दिया है कि बस 2-3 फाक खा लो
0: बस।
1: हाँ,
0: मतलब एक आम जैसे तैसे,
1: हाँ,
0: उससे ज्यादा नहीं खाना
1: और
0: है।
1: फिर अगर तो आम जी भर के खाना है तो फिर थोड़ा सा खाने को कम कर दो, कि जैसे रात में थोड़ा सा हल्का सा कुछ लिया, और उसके साथ में फिर अगर मैंगो शेक लिया है या फिर घर में बनी हुई मैंगो की आइसक्रीम ली है, तो फिर हम इस तरह से अगर करें ना तो फिर आम का भी आनंद ले सकते हैं और हमारी सेहत का भी ध्यान।
0: अच्छा, तो मतलब सत्तू के पराठे के साथ और पूरी के साथ आम का रस नहीं खा सकते?
1: खा सकते हैं ना, बिल्कुल खा सकते हैं,
0: लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो इनके शौकीन होंगे, क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है अरे क्या बना है, आम का रस और पूरी, तो ये तो बहुत, और साथ में आलू की भुजिया।
1: हाँ,
0: तो हमारे श्रोता बता सकते हैं कि कौन कौन लोग अभी इन दिनों में कितनी बार आम का रस पूरी खा चुके हैं,
1: और लोग बुलाते भी हैं, चलो हमारे घर आज आम रस पूरी का आयोजन है तो आप आइए खाने के लिए, उसके साथ में सूखी आलू की सब्जी भी रख देते हैं, बहुत बहुत आनंद आता है सब खाने
0: तो
1: में।
0: हमारे कौन से श्रोता हैं जिन्होंने बाग में जाकर आम तोड़ कर खाया है, और कौन कौन से आम? हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमने तो ये देसी आम बहुत सारे खाए हैं, और तोता परी एक ने लिखा है चौसा, लंगड़ा, ये आम हमने खाए हैं, और एक श्रोता ने लिखा है कि हमने तो रत्नागिरी आम खाया है बहुत सारा। इधर महाराष्ट्र में और कोंकण साइड में खास तौर से ये अल्फांजो जो आम होता है, हापुस आम, ये बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन जो लोग लंगड़ा और चौसा खा चुके हैं उन्हें इनमें स्वाद नहीं आता है। उनको तो फिर लंगड़ा आम तो ऐसे है कि कच्चा आम भी आपको मीठा ही लगता
1: है, बहुत अच्छा लगता है वो आम, तो उसमें जो भी बहुत अच्छा लगता है।
0: हाँ, तो उसमें जो शक्कर मिलाने वाली बात है ना, जरूरत नहीं,
1: जरूरत ही नहीं है उसमें। और वो तो हम लोग ना बारिश होती है ना उसके बाद भी खाते हैं, यानी रक्षाबंधन आता तब तक वो आम आता है।
0: अभी लेकिन महाराष्ट्र में मुंबई में खासतौर से केसर आम,
1: हाँ,
0: बहुत मीठा आ रहा
1: है, केसर आम है। फिर उसके बाद में जो बैगन फल्ली आम जो आता है, वो जो साउथ का आम है वो भी खाते हैं। एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी, हमारी तो गर्मियों की छुट्टियां नहीं होती तो क्या हम आम खाने का आनंद ना उठाएं? वैसे तो आम खाने का आनंद उठाएंगे, आम का नाम सुनते ही हरे पीले रसीले आम आंखों के आगे घूमने लगते हैं। मार्केट जाओ तो हर तरफ आम ही आम दिखते हैं, घर घर में आम के चर्चे, किसने कितने बॉक्स आम के मंगवाया। पर मेरा तो कुछ खास ही अनुभव रहता है, घर का बगीचा है, आम का पेड़ है, सच मानिए एक आम का पेड़ ही कितने सारे आम दे देता है कि आपने जान पहचान के लोगों को खिलाने के बाद भी काफी सारा आम रह जाता है, बिल्कुल शुद्ध बिना रसायन वाला आम। आम के अचार बनाए, आम रस बनाए, मिल्क शेक, आम लस्सी, स्मूदी, सब कुछ, और गर्मियों का आनंद आम के साथ ले रही हूँ।
0: बिल्कुल, और यहाँ आम के बगीचे से याद आया कि हमने भी बचपन में आम का बगीचा, बड़े बड़े बाग देखे हैं
1: जी,
0: और वहाँ पेड़ से तोड़कर आम खाए हैं और गिरे हुए आम बटोरे हैं, भले खाए नहीं लेकिन वो अजीब सा शौक होता था। तो वो जो पिता और दादा के लगाए हुए बाग हैं
1: जी,
0: उनको बढ़ाने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने के लिए आपको नए नए आम के पेड़ भी लगाना चाहिए, वो चाहे कलमी आम हो, लंगड़ा, चौसा या रत्नागिरी, जो भी आम लगाया जाता है वो सीख कर आपको आम के पेड़ जरूर लगाने चाहिए। और बड़ा आसान होता है, कई कई कुछ आम तो गुठलियों से ही पनप जाते हैं, उग जाते हैं, जैसे यहाँ विविध भारती के परिसर में भी हमने कुछ गुठलियों से आम लगाए हैं और वो बड़ा पेड़ हो गया, तो हमें देख कर बड़ा अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में आम खाने का आनंद, आहा, बस पूछिए मत। एक दो हो तो कुछ बात भी बने, मगर इतनी वैरायटी के आम की पूछो मत। जहाँ गए वहीं खा लिया, यदि नहीं गए तो अपना लंगड़ा आम तो है ही है, फिर दशहरी का क्या कहना। हापुस, वाह वाह, ये तो इधर मिलता ही नहीं है। जबकि दक्षिण का तोता परी, अरे यही तो दक्षिण भारत से इधर सबसे पहले आता है। मगर हापुस, जी हाँ, सब खाया जाता है और जी भर के खाया जाता है। अब रोग भी लगाए तो कैसे भाई, स्वाद का मामला है। और भी बहुत सारा इन्होंने लिखा है, तो इनकी बात से हमें याद आ गया कि गांव में बाल्टी में आम भिगो दिया जाता था
1: हाँ,
0: और लोग बाल्टी, पूरी की पूरी बाल्टी आम खा
1: और वो
0: लेते थे।
1: छोटे छोटे चूसने वाले आम थे ममता
0: हाँ
1: जी, वो
0: हाँ और
1: आते थे।
0: आप तो कह रही कि एक आम दो फांक
1: अब
0: दो
1: ओ ममता जी, वो जमाने में तो 10 आम भी खा लो तो कुछ नहीं होता था, पर
0: उसमें,
1: अब एक आम भी खाया तो भारीपन लगता है ना।
0: और उसमें केमिकल नहीं होता था कोई
1: हाँ,
0: भी,
1: केमिकल नहीं
0: कोई
1: होते।
0: दवा मिला के नहीं, वो सीधे देसी
1: और
0: आम
1: खेलते
0: मिलता
1: कितने
0: था।
1: थे ममता जी हम उस वक्त, कि आम खाए और फिर खेलने चले गए, दिन भर वो बाल्टी में भिगोए हुए आम, आते जाते 20 भी खा लिए, 25 भी खा लिए तो पता नहीं चलता था। अभी तो एक आम खाते खाते परेशान हो जाते। एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी, कि गर्मियों की चिलचिलाते धूप में जब फ्रिज से निकला हुआ ठंडा ठंडा आम खाने को मिलता है तो मन और तन दोनों तृप्त हो जाते हैं। पारिवारिक जुड़ाव, आम खाने का असली मजा अकेले नहीं बल्कि परिवार के साथ बैठकर हाथ सरो सरो कर आम निकाल कर खाना और रस निकालना, परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। और बहुत सारी किस्में हैं भारत में आम की, जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, हाफुस, केसर, हर किसी को पसंद होते हैं। और इसके व्यंजन भी, जैसे आम रस है, मैंगो शेक है, आइसक्रीम और अचार भी थालियों की शान बढ़ाते हैं।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम गांव जाते थे तो पेड़ से आम टूट के आते थे, तो पहले उसे अनाज की भूसी में रखा जाता था, जब पक जाते थे तो उसे निकाला जाता था और बड़ी बड़ी बाल्टी में मिट्टी के नाद में उसे पानी में डाल दिया जाता था और फिर उसे बाल्टी में ही रख कर खाते थे। तब होड़ लगता था कि किसके सामने गुठलियों की ढेर ज्यादा होती है। इन गर्मियों में आम के चलते हमें बचपन में फोड़े फुंसी आम के रस से चेहरे पर भी कई तरह के दाग निशान हो जाते थे,
1: हाँ, ये होठों के यहाँ पे।
0: और आम का पना भी बनता था।
1: हाँ,
0: और साथ में गांव में तो आम को भून कर आग में उसका रस निकाल कर उससे बाल भी धोए जाते थे।
1: ओहो,
0: तो ये कितने तरह के आम के, कितने तरह के गुण, और आम के अचार की तो बात ही निराली
1: और
0: है।
1: आम की जो रोटी भी बनाते थे, वो आम का
0: हाँ,
1: रस बच गया तो उसको थाली में थोड़ा सा
0: आम
1: घी लगा
0: पापड़।
1: के, आम पापड़ उसमें डाल के, और उसको सूखा दिया, वो साल भर खाते थे।
0: अमावट भी कहा
1: जी
0: जाता है
1: जी
0: जिसे। तो और बोलिए।
1: एक साथी ने लिखा है कि भाई आम जो है सब साथ में बैठकर खाते हैं, और आम बैगन फली खाएं, परिवार के साथ बैठकर खाएं, आम खाने का मजा ना अलग होता है। सब बैठकर आम के छिलकों को चूसने लगते हैं, आम की तारीफें कहना और क्या कहना, तुमने उसको ज्यादा आम दे दिया, मुझे नहीं दिया, इसका तो मजा ही कुछ अलग होता था। आज भी आता है, आज आम का जो स्वाद होता है ना, मैं कहूंगी सारे दिन की थकान मिटाने में सक्षम होता है। इसलिए गर्मी में आम नहीं खाया तो क्या खाया, और वो भी परिवार के साथ कर बैठ कर खाया तो उसका आनंद दुगना हो गया।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की गर्मी की छुट्टियों की बात याद आती है तो सबसे पहले नानी का गांव याद आता है। नानी के गांव के उन देसी आमों की बात ही कुछ और थी। बाजार में मिलने वाले हाइब्रिड या बड़े बड़े आमों में वो स्वाद कहाँ जो उन छोटे रेशेदार आमों में होता था। तो अब क्या इरादा है,
1: आप एक गीत सुन ले।
0: सुनते हैं।

0: वजन कैसे कम करना है इस बारे में हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं सुबह 5 बजे विविध भारती पर जागो, सुबह हो गई सुनते प्राणायाम व्यायाम कर लेता हूँ, फिर हमें राहे प्यार के तक दोपहर तक बाजार बैंक से जुड़े काम निपटा लेता हूँ, सखी सहनी सुनने के बाद आराम कर लेता हूँ, शाम को इवनिंग वॉक करने जाता हूँ जिसके कारण दोपहर का खाना भी आसानी से पच जाता है, और जब आपका पेट साफ सुथरा रहेगा तो कोई बीमारी नहीं आएगी, चलने के कारण आपके हाथ पैर में दर्द भी शिकायत नहीं होगी, ये मेरा निजी अनुभव है। वही एक साथी कहते कि मैं और मेरी श्रीमती सुबह 4 बजे योग, शाम 6 बजे 5 किलोमीटर जाकर वापस घर पैदल आते हैं, रात का भोजन सिर्फ दाल और मूंग की दाल और 2 रोटी लेते हैं, दिन में संतुलित आहार दलिया दूध हरी सब्जी पालक लौकी करेला ग्वार फली 2 रोटी पर्याप्त और 1 कटोरी आम का रस, हर 1 घंटे 1 गिलास पानी। क्या बात है।
1: बिल्कुल, दरअसल होता क्या है कि अगर नियमित रूप से व्यायाम करते रहें और जितनी कैलोरी ले रहे हैं
0: जी
1: उतना आप शारीरिक श्रम करते रहें तो वजन बढ़ेगा नहीं। व्यायाम शरीर की अतिरिक्त कैलोरी जलाने में सहायता करता है, इसलिए रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट तेज चाल से पैदल चलना चाहिए। इसके अलावा योगा,
2: साथ में पानी ज्यादा पीते रहना चाहिए, ये जो गर्मी का मौसम है इसमें तो खास ख्याल रखना चाहिए। और हमें अभी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना सुनवा दें, प्रोग्राम का आखिरी गाना सुन।

0: छोटी बहन फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाज़ें थी। और अब सोनाली जी घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाज़त। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अभी तक आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। 4 बजे हैं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ले करेंगे।
1: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: भारत के वीर सैनिक सीमाओं की रक्षा और देश की सुरक्षा में सदैव अपने कर्तव्य, समर्पण और देश सेवा में निष्ठा से तत्पर रहते ही हैं। साथ ही ग्रीन इनिशिएटिव से लेकर मिशन लाइफ तक जंगल, पहाड़, नदी और आकाश की भी हिफाजत में जुटे हैं। प्रोटेक्टिंग द नेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग नेचर, यानी देश की रक्षा, प्रकृति की रक्षा। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ से कैंटोनमेंट बन रहे हैं जीरो वेस्ट जोन, सोलर पावर से चल रहे हैं कैंप और प्लांटेशन ड्राइव से हर सोल्जर बन रहा है एक इको वॉरियर। ये है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्ड मिशन जिसके लिए हमारी सेना जानी जाती है। और इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को ये इनिशिएटिव और भी सशक्त और भी स्पेशल बन रहा है। भारत की धरती सलाम कर रही है अपने सपूतों को, अपने सैनिकों को। 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने आकाशवाणी रेनबो पर आज का विशेष संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित है, जिसे बड़े दिल से बनाया है टीम रेनबो ने। और आज का ये स्पेशल एपिसोड आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ, और हमारे ओबी टीम मेंबर हैं वैभव श्रीवास्तव। और हमारी रेनबो टीम पहुंची हुई है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी कैंप दिल्ली में। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कमांडेंट गौरांग जैन के संदेश से।
1: तो आज मौजूद है आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में और हम बात करने वाले हैं यहाँ के कमांडेंट कर्नल गौरांग जैन से। सर, वेलकम टू द शो।
2: थैंक यू, और आपका यहाँ कैंप में आने के लिए और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद।
1: सर, जब लोग आर्मी के बारे में सोचते हैं, हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की खासकर, तो हमारे जहन में आता है डिसिप्लिन, ड्रिल्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस और ये सब चीजें। तो सर, बॉर्डर्स को सिक्योर करने से लेकर पर्यावरण को सिक्योर करने तक ये बदलाव की शुरुआत कैसे हुई, प्लीज हमें बताइए।
2: देखिए, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये सिर्फ बॉर्डर की हिफाजत के बारे में नहीं है, इसमें हमारी मिट्टी, जल, वायु सभी इस सुरक्षा के उसमें आते हैं। ये पर्यावरण संरक्षक आज सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक ये हमारे आवश्यकता बन चुकी है, और ये सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। फौज का और पर्यावरण का हमेशा से एक अटूट रिश्ता रहा है। आप जानते हैं कि कैंटोनमेंट हमेशा से ही हरे भरे मिलेंगे आपको, और जो हमारे सैनिक हैं इनमें साफ सफाई रखना, पेड़ पौधे लगाना, ये उनके DNA में है। लेकिन आज सिर्फ साफ सफाई से या पेड़ पौधे लगाने से नहीं होगा, हमें एक पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनानी पड़ेगी और हमें कल्चरली अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमने मिशन ग्रीन के तहत हमारा डीकार्बनाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपक्षित मुक्त सैन्य भारत अभियान, जैसे कि जीरो वेस्ट इकोसिस्टम्स को हम बोलते हैं, वो चलाया जा रहा है, और ताकि हम आने वाली पीढ़ी को इसको सुरक्षित कर सके।
1: सर, क्या जीरो वेस्ट मॉडल एक्चुअल में मुमकिन है? क्या इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमें बता सकते हैं प्लीज?
2: जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है, और इसके लिए बस हमें थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत होती है। जीरो वेस्ट मॉडल के लिए कुछ मापदंड होते हैं, जैसे कि कोई भी वेस्ट हमारा लैंडफिल में ना जाए, वेस्ट को सोर्स पे ही 100% हम सेग्रीगेट करें, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको 100% हम इन हाउस कंपोस्ट कर सकें, कोई भी वेस्ट हम ओपन बर्निंग में ना करें या इंसिनरेशन ना करा जाए इत्यादि। जैसे मैंने बताया कि अगर ये अपनाना है तो हमें सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, वेस्ट को वेस्ट ना समझें बल्कि उसको हम रिसोर्स समझें। जिस दिन हमने वेस्ट को रिसोर्स समझ लिया, हम उसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि रिसोर्स को हम रखते हैं और वेस्ट को हम फेंकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी सामान आप देखेंगे कि उसको हमने रिसोर्स की तरह समझ के रखा है, तो या तो वो खुद ही हम यूज कर सकते हैं या कोई और, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिसाइकल होके कहीं ना कहीं किसी के इस्तेमाल में आ ही जाएगा।
1: सर, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स कैंप किस प्रकार से जीरो वेस्ट में तब्दील किया गया, क्या इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आप हमें समझा सकते हैं प्लीज?
2: जी बिल्कुल, आज जैसा आप जानते हैं पहले जितना भी वेस्ट होता था ये इकट्ठा होकर म्यूनिसिपैलिटी लैंडफिल्स में जाया जाता था, जो फिर कूड़े का पहाड़ बन गया। सो इसके लिए हमने जीरो वेस्ट के लिए सिस्टम तैयार किया। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार वेस्ट को सोर्स पे ही 4 तरीके से हम सेग्रीगेट करते हैं, जैसे ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, स्पेशल केयर वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट। इसके अलावा हमने कोलैबोरेट किया है कई NGO से या संस्थाओं से, जो कि रिसाइकिल हमें इन साइंटिफिक तरीके से इसको कर सके। इसके अलावा कई उपकरण भी लगाए गए हैं। तो सब करने से इसका नतीजा ये हो रहा है कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो अब 100% हम इन हाउस यानी कि कैंप में ही कंपोस्ट कर रहे हैं, या फिर उसको हम बायोगैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका किचन का वेस्ट हो गया या हॉर्टिकल्चर वेस्ट। जो ड्राई वेस्ट है जैसे पेपर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, उनको हम इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद इन संस्थाओं को देते हैं जो वहां पे इनको रिसाइकिल करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स में तब्दील करते हैं, और इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का करते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस के लिए हमने कुछ रैक्स लगाए गए जिसको हम वॉल ऑफ काइंडनेस रेडीनेस कहते हैं, ताकि जो सामान काम का है लेकिन शायद मेरे काम का नहीं है उसको रीयूज करने के लिए लोग अपना वहां पे उसको डोनेट करते हैं, जैसे किताब, बुक्स, शूज, बच्चों के खिलौने, बर्तन, वो डोनेट करते हैं और जिसको जरूरत है वो उसको वहां से ले लेता है। सो इन सब छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जो हमने चीजें शुरू करी है यहाँ पे, इससे पिछले कुछ ही महीने में सिर्फ कैंप ने करीब 50 टन से भी ज्यादा वेस्ट को रिसाइकिल कर दिया गया है और लैंडफिल जाने से बचाया गया है। और इसी तरीके से बाकी कई यूनिट और हमारे स्टेशन अब जीरो वेस्ट में इस तरीके से तब्दील हो रहे हैं।
1: कहना होगा कि इनिशिएटिव्स वाकई कमाल के हैं और आई होप कि आर्मी से इंस्पिरेशन लेके बाकी लोग भी इनिशिएटिव्स करें। सर, क्या ये अभियान कैंप को साफ रखने और कचरे को लैंडफिल में जाने से रोकने के लिए है या इसको और आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या सोचा है या क्या कदम उठाए हैं?
2: देखिए, साफ सफाई रखना और लैंडफिल में कचरा ना जाने के लिए ये एक छोटा सा पार्ट है ओवरऑल जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, तो क्योंकि इसमें और भी कई चीज शामिल हो जाती है, जैसे कि हमारे नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना। आपको पता है नेचुरल रिसोर्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, चाहे हम पानी की बात करें चाहे हम फ्यूल की बात करें, तो उनको कंजर्व करना। इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन करना, वृक्ष लगाना, ये भी सारा हमारे पूरे पर्यावरण की तरफ आता है और इन सब चीजों पर भी हम काफी काम कर रहे हैं। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन पे आऊँ, सबसे पहले फ्यूल कंजर्वेशन, तो उसमें ईवाइजेशन यानी कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंप में ही आज की डेट में 25 से ज्यादा व्हीकल हमारी इलेक्ट्रिक हो रखी हैं, जिसमें हमारे सैनिक यहाँ पे ऑफिस में जा रहे हैं। सोलराइजेशन का काफी काम चल रहा है जिससे कि बिजली की खपत कम हो रही है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमारा थल सेना भवन बन रहा है वो GRE4 कंप्लाइंट है और एक इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाया जा रहा है। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करने के लिए करीब 100 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, सेंसर लाइट्स लगाई जा रही हैं और वाटर कंजर्व करने के लिए वहां पे इंटीग्रेटेड STP प्लांट, अनेकों वाटर रिसाइकलिंग पिट्स लगा रहे हैं और यही पानी इस्तेमाल किया जाएगा वहां के एबोरिकल्चर को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा वहां पे मेगा कंपोस्ट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जो कि करीब 1500 केजी तक का कंपोस्ट एक दिन में वहां पे कर सकते हैं। सो जब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षक की, तो वो सिर्फ एक पहलू वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है बल्कि पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच आती है जो कि एज एन आर्मी और एज अ कैंप हम इसको अपना रहे हैं।
1: आपने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, होलिस्टिक अप्रोच। मैं पूछूंगा कि इन सभी इनिशिएटिव्स का अल्टीमेट गोल क्या है आपके हिसाब से?
2: देखिए, अल्टीमेट गोल तो यही है कि हम पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित कर सके, लेकिन साथ में कैसे हम एक डीप रूटेड कल्चरल चेंज यानी कि सांस्कृतिक बदलाव ला सके। हमारे जो जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, ये देश के हर प्रांत से आते हैं और यहाँ से उसके बाद वो देश के हर जगह यानी कि बॉर्डर एरिया से लेकर बड़े शहर तक तैनात होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक ग्रीन सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं तो ये हमारे एक ग्रीन एम्बेसडर्स का काम करेंगे। यहाँ पे एक जीरो वेस्ट इकोसिस्टम में है, डेली उठ के ये अपने वेस्ट को सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर रहे हैं, प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा ले रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम के जैसे अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। तो जब ये वो यहाँ पे इस चीज को हिस्सा ले रहे हैं तो ये अब एक इनकी जीवन शैली और एक इनकी आदत बन चुकी है। जब यहाँ से ये पोस्टिंग जाएंगे कहीं पे भी तो ये अपना माइंडसेट लेके जाएंगे और वहां पे ये सोसाइटी में इस चीज को रेप्लिकेट करेंगे और एक कल्चरल चेंज डेवलप करेंगे।
1: सर, पूछना चाहूंगा कि वाकई एक अद्भुत विजन है और हमें पूरी उम्मीद है कि पर्यावरण संरक्षण में इसमें काफी मदद मिलेगी। एंड आई होप कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये रंग लाएं और जैसा आपने कहा कि एक माइंडसेट चेंज हो ना सिर्फ फौजियों का, सोल्जर्स का, बल्कि पूरे देश का इसके थ्रू।
2: जी, यही हमारा इसके ऊपर कोशिश है, चाहे वो आर्मी हेडक्वार्टर कैंप है और या फिर पूरे इंडियन आर्मी इसके ऊपर लगी हुई है और मुझे यकीन है कि हमें इसमें और आगे बढ़ावा मिलेगा और सोसाइटी में चेंज आएगा। और मैं चाहूंगा कि आप जो हमने यहाँ पे ये चेंजेस ला रहे हैं, जो जीरो वेस्ट कैंप है, जैसे कि ये इंडियन आर्मी का ये पहला जीरो वेस्ट यूनिट है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जाके देखें और ग्राउंड पे, और हमारे मेजर अजीत मोरे हैं जो इसके प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, तो ये आपको एक बार ग्राउंड पे पूरा इसको दिखाएंगे।
1: साहब, हमसे बात करने के लिए, ग्रीन इनिशिएटिव्स के बारे में बताने के लिए और हमेशा की तरह एक सोल्जर होने के नाते हमें प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू होस्ट यू।
3: जय हिंद। तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश की मिट्टी को देश के सैनिकों का सलाम है दिल से। इस गीत के बाद अब हम आज के हमारे संदेश टू सोल्जर के स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स आर्मी कैंप के प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे से।
1: हम मौजूद हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स MOD आर्मी कैंप के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जोन में और हमारे साथ फिलहाल हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे। सर, स्वागत है शो में। हमें इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बताइए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं।
2: धन्यवाद, मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। तो मैं बहुत ही गर्व के साथ आपको कहना चाहूंगा, ये हमारे पूरे भारतीय सेना का पहला जीरो वेस्ट कैंप है। भारतीय सेना की हर एक यूनिट, हर एक इकाई जहाँ भी मौजूद है वो इसी तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रही है। जब गवर्नमेंट के गाइडलाइंस मिले थे तो उसके अनुसार हम यहाँ पे वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट, इसको हम यहाँ पे सिग्रीगेट करते हैं। मतलब मुद्दा यह है कि वेस्ट को उसके सोर्स पे ही 100% रिसाइकल किया जाए। साथ ही साथ में जब ऑर्गेनिक वेस्ट या वेट वेस्ट की हम बात करते हैं तो इसमें हम एरोबिक्स लगाए हैं, जिसको एरोबिक से हम खाद बनाते हैं और साथ में बायोगैस लगाया गया है। बायोगैस कंपोजिट सिस्टम से हम इसको कुकिंग हाउस में इस्तेमाल करते हैं। ड्राई वेस्ट में प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, ई वेस्ट और टेक्सटाइल वेस्ट लगाया गया है, तो इसके द्वारा भी हम इसको रिसाइकल्स को आगे देते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, वेस्ट इज नॉट अ वेस्ट, इट इंडिफिनिट रिसोर्सेस। इसको मैं एग्जांपल के तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। समझ लो मैंने किसी भी दुकान से आज चिप्स का पैकेट खरीद लिया, चिप्स मैंने खा लिया, रैपर फेंक दिया, तो रैपर मेरे लिए तो वेस्ट है। साथ ही साथ में मैंने केला खरीद लिया, केला खा लिया और उसका छिलका फेंक दिया, दोनों चीजें मेरे लिए वेस्ट है। अगर मेरे जैसे किसी समझदार इंसान ने उसको दोनों को इकट्ठा करके फेंक दिया, वो प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा, वो धरती की हानि पहुंचाएगा। वो केला भी मैंने कहीं और फेंक दिया, कोई उस पे फिसलेगा, गिरेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई समझदार इंसान है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, प्लास्टिक को मैंने प्लास्टिक वेस्ट में डाल दिया और उसको रिसाइकल कर दिया और उसको ब्यूटीफुल इक्विपमेंट्स में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वही केले के छिलकों को हमने खाद के एरोबिक्स में डाल दिया और उससे हमने खाद बनाई जो नेचर को आगे प्रोटेक्ट करती है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, वेस्ट इज द ओनली वेस्ट इफ यू वेस्ट इट।
1: थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।
2: धन्यवाद।
0: हमने सुना कैसे पूरी डिटेल में मेजर अजीत मोरे ने ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ के बारे में बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके जानते हैं पूरे मिशन के बारे में। तो सबसे पहले बात एरोबिन कंपोस्टिंग की, जिसके बारे में बता रहे हैं हवलदार राजकुमार।
1: तो बात चल रही थी आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की। हम यहाँ फिलहाल मौजूद हैं एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के पास और हमारे साथ मौजूद हैं हवलदार राजकुमार जी। सर, हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में प्लीज बताइए।
3: मैं आपको ऑर्गेनिक यानी के बेड बेस्ड के बारे में बताऊंगा। किचन और हॉर्टिकल्चर को मैनेज बेस्ड करने के लिए हमने कुक हाउस में एरोबिन सिस्टम और बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल किया है। एरोबिन के अंदर हम वेजिटेबल बेस्ड, फ्रूट बेस्ड, सूखी पत्तियां और बिना पका हुआ किचन बेस्ड को डालते हैं, जो कि 20 से 30 दिन में रिसाइकल होकर खाद बन जाती है। इस खाद को हम एरोबिन से निकालते हैं, जो कि 2 से 3 दिन सूखने के बाद इसको हम एक अच्छी क्वालिटी में खाद दर्शाई गई है। पूरी तरह से खाद तैयार होने के बाद इस तरह से खाद निकलती है, इसको आप पैकिंग भी कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से पर्यावरण फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें ना ही बिजली और ना ही किसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। कैंप में अब तक सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर इसे हमने 750 kg खाद को तैयार किया है।
1: हवलदार राजकुमार जी, इसकी कैपेसिटी कितनी है और कितने दिन में खाद

0: बन जाती है।
1: इसकी कैपेसिटी 400 केजी की होती है। इसे हर दिन 20 से 25 केजी वेस्ट डाला जाता है, जो कि 20 से 25 दिन के अंदर कंपोस्ट यानी कि खाद तैयार हो जाती है।
0: साहब एक और बात बताएं हमें, ये जो एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम है, इसको इस्तेमाल में लाने के लिए और क्या मिलाया जाता है?
1: इसको ड्राई रखने के लिए इसके अंदर सूखी पत्ती डाली जाती है। इसके अंदर किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं है, ये बायोलॉजिकल काम करता है।
0: सर आपने हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में इतनी जानकारी दी, हमें बताया कि किस तरीके से खाद बनती है और बिना केमिकल्स को यूज किए बनती है। ये ग्रीन इनिशिएटिव है, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव है। साथ ही साथ आप देखिए कि अगर इस तरीके के सिस्टम्स पूरे देश में इंस्टॉल किए जाएं, आर्मी से सीख ली जाए किस तरीके से हम वेट वेस्ट को, जैसा कि हमें प्रोजेक्ट ऑफिसर ने बताया था कि हम किस तरीके से वेस्ट को वेस्ट ना रखकर उसको एक एसेट में तब्दील कर सकते हैं, इसे कहते हैं वाकई वेस्ट से एक एसेट बनाना। थैंक यू सो मच।
2: अभी हमने जाना एरोबिन कंपोस्टिंग के बारे में। श्रोताओं हम आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे हम कि कैसे बायोगैस प्लांट लगा करके हमारी आर्मी कैंप में किचन मेंटेन किया जा रहा है, और इस बारे में डिटेल में बता रहे हैं हमें हवलदार राजकुमार।
0: भारत में नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो दशकों और न जाने कितने वर्षों से होता आया है, लेकिन जिस तरीके से आर्मी इसे इस्तेमाल करती है और जिस तरीके से इसके नए प्रोसेसेस को सबके सामने रखा जाता है, ये वाकई अद्भुत है, अद्वितीय है। अभी फिलहाल हम आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की एक और बात करते हैं, जहां पर हम फिलहाल बायोगैस मशीन और बायोमेथनाइजेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इसके बारे में हमें और बताएंगे हवलदार राजकुमार जी। सर प्लीज।
1: एलपीजी की खपत को कम करने के लिए हमने कुक हाउस में बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल कर रखा है। इसके अंदर हम मेस में बचा हुआ खाना जैसे कि पानी गर्म, दूध उबालना, अंडे उबालना इत्यादि कामों में इस्तेमाल करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, बायोगैस को अपनाना बल्कि आत्मनिर्भरता बनना ही नहीं बल्कि अपनी धरती को हरा भरा रखने में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए वेस्टेज को फेंके ना, उससे ऊर्जा बनाए।
0: तो बायोगैस इनिशिएटिव एक और ग्रीन इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से कचरा यानी वेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस तरीके के इनिशिएटिव से आप क्या कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं या हमारा देश क्या कर सकता है, वो ये है कि हम इस तरीके के इनिशिएटिव से वेस्ट को कम करके उन सभी एसेट्स को अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सभी रिसोर्सेस की बाहरी खपत को कम करके अपने ही आसपास की चीजों को इस्तेमाल करके रिसोर्सफुल बनकर हम वो सभी एसेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रिसोर्सेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। हवलदार राजकुमार जी हमें प्लीज बताइए कि इसमें एक दिन में कितना वेट वेस्ट डाला जाता है और इससे कितनी गैस उत्पन्न होती है?
1: जी हाँ, ये प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे पास जो प्लांट लगे हुए हैं इसमें एक दिन में 20 से 22 केजी वेस्ट डाला जाता है, जो कि 3 से 4 गैस को प्रोड्यूस करके इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं।
0: इसको इस्तेमाल करने से कितने एलपीजी की बचत होती है, कितने सिलेंडर्स की बचत होती है, अगर आप हमें बता पाएं?
1: ये भी प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे कुक हाउस में जो प्लांट लगे हैं इसमें हर एक प्लांट से एक महीने में 4 से 5 एलपीजी सिलेंडर की बचत होती है।
0: और सर इसको कितनी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, अगर आप हमें बताएं?
1: जी, सबसे इसकी खासियत यही है कि प्लांट को मेंटेनेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास प्लांट लगा हुआ है तकरीबन 6 महीने से लगा हुआ, अभी तक इसकी कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ी।
0: बायोगैस प्लांट है इंडियन आर्मी का एक और ग्रीन इनिशिएटिव, जिसमें हम वेस्ट से बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। एलपीजी सिलेंडर्स, 4 से 5 सिलेंडर्स की खपत जितनी होती है उतना हमें प्रोड्यूस यहां से इस मशीन से मिलता है।
2: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश पर जान निछावर करने वाले हमारे जवान सरहद और देश के भीतर ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं यूज्ड कुकिंग ऑयल को कैसे फिर से इस्तेमाल में लाया जा रहा है, और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार।
1: यूज्ड कुकिंग ऑयल के बारे में हम सब जानते हैं, इस ऑयल को अगर बार बार इस्तेमाल किया जाए तो ये सीरियस इंजरी, सीरियस हार्म दे सकता है ह्यूमन बॉडी को। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है किस तरीके से यूज्ड कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल किया जाए, घर घर से इकट्ठा किया जाए। इसके लिए हमारे साथ हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार जी। सर, हमें प्लीज इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में प्लीज बताइए।
2: सर, जैसे कि FSA की गाइडलाइन के अनुसार जो भी हमारा कुकिंग ऑयल है उसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे काफी सेहत के ऊपर भी असर डालता है, इसे कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसी को देखते हुए हमने इसको अलग करके, जो भी हमारा कुकिंग ऑयल जो था इसको यूज्ड है उसको हम अलग करके किसी रिकॉग्नाइज्ड संस्था को देते हैं ताकि उसकी रिसाइकल कर इसका बायोडीजल या सोप बनाया जा सके। इसको कलेक्शन करने के लिए हमने अलग अलग इसके लिए ड्रम्स जो कैंस रखे हुए हैं ताकि उसको सही तरीके से उसको डिस्पोज कर सके और इसको हम आगे डिस्पोज ऑफ कर सके। सर,
1: थैंक यू सर, हमें यूज कुकिंग ऑयल के बारे में बताने के लिए धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: अभी तक हम जान रहे थे वेट वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे गीला कचरा रिसाइकल किया जा रहा है, या अगर यूं कहें कि ये कचरा अपसाइकल किया जा रहा है। अब बहुत अहम और हमारी जिंदगी पर असर डालने वाला प्लास्टिक वेस्ट, इसे कैसे अपसाइकल करके फिर से यूजेबल बनाया जा सके, जबकि प्लास्टिक के बारे में आम धारणा है कि ये कभी खत्म नहीं होता। इसकी जानकारी दे रहे हैं हवलदार अब्बास।
1: इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव को हम आगे ले जा रहे हैं। फिलहाल हमने वेट वेस्ट की बात की, हमने यूज कुकिंग ऑयल की बात की, अब हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट की, अब हम बात करेंगे ड्राई वेस्ट की। हमारे साथ हैं हवलदार अब्बास जी। सर, हमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में प्लीज बताइए, कैसे ये कचरा इकट्ठा किया जाता है, किस किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, कैसे आप इसको यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद क्या होता है, प्लीज।
3: सभी को मेरा जय हिंद। प्लास्टिक आज के गंभीर विषय बन चुका है, हमारी कोशिश यही है कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। फिर भी जो प्लास्टिक जनरेट होकर हमारे पास आता है उसको सही से डिस्पोज कैसे करें, इसके लिए हमारे कैंप की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिसके दौरान हमारे ब्लॉक्स, लिविंग एरियाज, कैंटीन एरियाज में हमने प्लास्टिक कलेक्शन पॉइंट्स को इंस्टॉल किया गया है। वहां से ये प्लास्टिक सेग्रीगेट होके हमारे इस मेन कलेक्शन पॉइंट पे लाया जाता है। इसमें प्लास्टिक के बोटल्स, पैकिंग मटेरियल, दूध की पन्नियां, नमकीन पैकेट्स, यहां से ये सारा मटेरियल, वेस्टेज मटेरियल मान्यता प्राप्त एजेंसीज में भेजा जाता है रिसाइकलिंग के लिए। इससे वहां पे फर्नीचर बनाया जाता है, जैसे टेबल, चेयर, बेंच, कबर्ड, इसमें डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल हम पब्लिक प्लेस पे किया जाता है ताकि लोगों को मोटिवेशन और अवेयरनेस मिले। जैकेट ग्लेशियर्स में डिप्लॉय हमारे सोल्जर्स द्वारा इकट्ठे किए गए हुए प्लास्टिक मटेरियल के वेस्टेज से बनाई गई है, जो दर्शाती है कि आर्मी ना खिलिप रागिस्तानों में बल्कि ग्लेशियर्स में पर्यावरण को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है।
1: हवलदार अब्बास जी, मुझे ये भी बताइए कि रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर नॉर्मल फर्नीचर के मुकाबले कैसा होता है। अगर एक नॉर्मल फर्नीचर की बात की जाए और ये जो रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर है इसकी बात की जाए, दोनों का कंपैरिजन कैसा है, कितना मजबूत है, हम सभी लिसनर्स को बताइए।
3: ये नॉर्मल फर्नीचर से बहुत ज्यादा अच्छा है, ये मजबूत है, धूप बारिश इस पे कोई असर नहीं पड़ता है और ये देखने में भी अट्रैक्टिव है और साथ में कंफर्टेबल भी है।
1: और सर, क्या ये रिसाइकल प्रोडक्ट्स आम लोग भी खरीद सकते हैं, इसके बारे में अगर आप बता पाए।
3: जी हाँ, बिल्कुल, ये आप खरीद भी सकते हो और प्लास्टिक के बदले इसको ले भी सकते हो।
1: और सर, हर आइटम पर कुछ प्लास्टिक नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है अगर आप हमें बता पाए।
3: जी, ये जो मार्क 80 केजी का लिखा है ये दर्शाता है कि 80 केजी प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से इस बेंच को बनाया गया है। ये चीज भी दर्शाती है कि 80 केजी वेस्ट को फैलने से रोका गया है।
1: Absolutely, 80 kgs waste, आप सोचिए 80 किलो वेस्ट कितना ज्यादा होता है। उस वेस्ट को इकट्ठा करना, उसको रिसाइकल करना, उसको प्रोसेस करना और उसके बाद ये मजबूत फर्नीचर, ये मजबूत बेंच, ये सब चीजें बनाना, कितनी अहम चीज है ये, कितना मजबूत इनिशिएटिव है, कितना फ्यूचर ओरिएंटेड है और कितना ज्यादा सस्टेनेबल है। सर, पब्लिक वेस्ट या प्लास्टिक वेस्ट की अगर बात की जाए, किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, कितनी चीजें हैं
3: इसमें? डिफरेंट तकरीबन 28 आइटम्स बनाए जाते हैं, जिसमें आप टेबल, कबर्ड, तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती है।
1: हमें प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
3: थैंक यू सो मच सर।

0: इसी तरह कंधों से कंधे मिलाकर हम अपनी धरती को स्वच्छ और बेहतर बना सकते हैं और प्लास्टिक जैसे खतरनाक वेस्ट को भी अपसाइकल कर रहे हैं। अब बात करते हैं पेपर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में और इस बारे में बता रहे हैं हमें नायब सूबेदार कुलदीप राज।
1: ड्राई वेस्ट में ही हमने पहले प्लास्टिक वेस्ट की बात की, अब हम बात करेंगे पेपर वेस्ट की। किस तरीके से पेपर्स को इकट्ठा किया जाता है, कैसे वेस्ट पेपर्स को यहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद उसको श्रेड किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस के बारे में हमें बताएंगे कुलदीप राज जी। सर प्लीज हमें इस पूरे प्रोसेस के बारे में समझाएं।
2: जय हिंद। पेपर का इस्तेमाल पूरे कैंप में कम से कम किया जाता है, जिससे पेपर और समय दोनों की बचत होती है और एनवायरमेंट में भी फायदा मिलता है, जिससे पेपर का इस्तेमाल कम होता है और पेड़ पौधे कटने से बचते हैं। जो भी पेपर वेस्ट होता है, जैसे कि शटल पेपर, गत्ता, किताबें, रजिस्टर इत्यादि, प्लास्टिक वेस्ट की तरह मान्यता प्राप्त एजेंसी को दिया जाता है और जिससे पेपर, किताबें, डायरी इत्यादि बनाए जाते हैं, जिसे इस्तेमाल में लाया जाता है। रीयूज करने से रिसोर्सेज की कमी और सर्कुलर इकोनॉमी में बढ़ावा मिलता है।
1: किस तरीके से डिजिटल इंडिया का एक्चुअल एग्जीक्यूशन यहां पर चल रहा है, तो जैसा कि आपने देखा इंडियन आर्मी की ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक और है प्लास्टिक वेस्ट और वेट वेस्ट के अलावा पेपर वेस्ट को किस तरीके से रिसाइकल और अपसाइकल किया जाता है, कैसे मान्यता प्राप्त एजेंसीज तक ये सारे पेपर्स पहुंचते हैं, डिजिटल इंडिया की प्रॉपर एग्जीक्यूशन तो आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में की जा रही है। डिजिटलाइजेशन के बाद पेपर वेस्टेज या पेपर यूसेज कहें बहुत कम हो चुका है, डिजिटल चीजों का, डिजिटल माध्यम का उपयोग ज्यादा होता है, लेकिन जितने भी पेपर्स इस्तेमाल होते हैं जो जरूरी होते हैं उनको भी रिसाइकल किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
0: एक और वेस्ट जो हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है और वो है ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिससे हमारे मोबाइल, टैबलेट्स, चार्जर्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और भी कितने ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें शामिल हैं, और ये ई वेस्ट भी हमारी धरती के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। और इस ई वेस्ट को कैसे अपसाइकल किया जा रहा है बता रहे हैं हवलदार अशफाक अहमद।
1: ड्राई वेस्ट की ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करते करते अब हम आ चुके हैं एक स्पेशल कैटेगरी वेस्ट की तरफ, जो की है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट। बेहद जरूरी चीज जो हम सभी के घरों में मिलती है, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े, वायर्स, प्लग्स, आप सभी ने देखा होगा, क्या वो सब चीजें ई वेस्ट का हिस्सा है? आइए जानते हैं हवलदार अशफाक अहमद जी से। सर स्वागत है शो में। जितनी भी चीजें हमारे घरों में मिलती हैं, क्या वो सब ई वेस्ट में आती हैं?
3: जय हिंद। हाँ बिल्कुल, वो सारी ई वेस्ट में आती हैं। ई वेस्ट एक अत्यंत गंभीर समस्या बन चुकी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ई वेस्ट की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसके लिए कैंटोनमेंट, RWS और ऑफिस एरियाज में ई वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स को एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि स्पेशल केयर वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें न सिर्फ ऑफिस एरिया के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बल्कि जवान अपने घरों से भी बैटरी, चार्जर, बल्ब जैसे इत्यादि लाके इसमें डाल सकते हैं। जो आप ई वेस्ट बॉक्स है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ये जवानों ने अपने घरों से लाके इसमें डाला हुआ है। इस ई वेस्ट को मान्यता प्राप्त एजेंसी के सेग्रीगेशन प्लांट्स में भेजा जाता है, जहाँ पर उन्हें साइंटिफिक तरीके से साइकिल करके उनमें से सिल्वर, कॉपर, अल्मीनियम जैसे एलिमेंट को निकाल के दोबारा से उपयोग में लाए।
1: बिल्कुल, मतलब ग्रीन मेटल्स को हार्वेस्ट किया जाता है। इस सभी ई वेस्ट का उपयोग करके हम इन ग्रीन मेटल्स को निकालते हैं, इनको बनाते हैं और उसके बाद इसका दोबारा से इस्तेमाल होता है। ग्रेट इनिशिएटिव, एक्सीलेंट इनिशिएटिव। सोचिए कितना ज्यादा कचरा हम घरों से, बाकी जितनी भी चीजें हैं वहां से इकट्ठा करके यहां पर लाते हैं और उसके बाद इससे कुछ और उपयोगी, कुछ यूजफुल बनाते हैं। एक्सीलेंट इनिशिएटिव आई वुड से।

0: ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी कन्वेंशनल फ्यूल को नहीं बल्कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रही है। इसके बारे में बता रहे हैं हवलदार आशीष जी।
1: जय हिंद, मैं हवलदार आशीष। एनर्जी कंजर्वेशन वेस्ट मैनेजमेंट की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ग्रीन इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने के लिए और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और सोलराइजेशन यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सेना में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऑलरेडी इनमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हमारे पास आर्मी हेडक्वार्टर कैंप में 25 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का एक फ्लीट है जिनका इस्तेमाल डिपार्टमेंटल ट्रांसपोर्ट और इंटरनल मोमेंट्स के लिए किया जा रहा है। एक इलेक्ट्रिक कार्स का एक फ्लीट है, साथ ही हाइड्रोजन बस और इलेक्ट्रिक बसेस का एक फ्लीट नजर आ रहा होगा, साथ एक इलेक्ट्रिक रिक्शा रखा हुआ है। इनके चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं जहां पे इन व्हीकल्स को चार्ज किया जाता है। एक व्हीकल को फुल्ली चार्ज होने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है और एक फुल्ली चार्ज्ड व्हीकल तकरीबन 300 किलोमीटर की एवरेज देता है। ऐसा करने से हम मंथली तकरीबन 4000 लीटर और ईयरली 48000 लीटर तक तेल की बचत कर रहे हैं। इन इनिशिएटिव्स को और इन व्हीकल्स को यूज करके हम न सिर्फ अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा रहे हैं बल्कि अपने एनवायरनमेंट को भी साफ सुथरा रख रहे हैं।
0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के हमारे ग्रीन इनिशिएटिव मिशन लाइफ स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और अब बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में जानते हैं जो इमोशनली भी बहुत रिलेवेंट है और वो है वॉल ऑफ काइंडनेस। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें पुराने कपड़े, किताबें और यूनिफॉर्म शामिल हैं। हमारे फौजी भी अपनी यूनिफॉर्म के साथ भी इमोशनली अटैच्ड होते ही हैं। तो कैसे डिग्निफाइड वे में इन्हें डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, बता रहे हैं हवलदार विनोद कुमार और राइफल मैन दिनेश कुमार।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, आर्मी और ह्यूमैनिटी, ये दोनों शब्द हम सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स इतने हैं जिन्हें गिनवाया जाए तो शायद ये दिन ये रात सब कम पड़ जाए। हम ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करने आए थे लेकिन यहाँ पर इनिशिएटिव्स के साथ साथ जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है उसी के साथ साथ एक ऐसा इनिशिएटिव भी है जो काइंडनेस को और ज्यादा दर्शाता है। कैबिनेट है ये 155 किलो प्लास्टिक को इस्तेमाल करके बना है। सोचिए 155 किलो प्लास्टिक अब सड़कों में या कचरे के डिब्बों के आसपास नहीं बिखरा हुआ है, उसको इस्तेमाल करके ये शेल्फ बनाया गया है। ये अपने आप में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं। और इसके साथ साथ ही दिस इज एक्चुअली अ वॉल ऑफ काइंडनेस व्हिच मींस डोनेट व्हाट यू कैन टेक व्हाट यू नीड, मतलब अपनी मर्जी से आप डोनेट कर सकते हैं और जो भी जरूरत है वो आप यहां से ले जा सकते हैं। अमेजिंग इनिशिएटिव, ऐसा एक काम जो इंडियन आर्मी ही सोच सकती थी, इंडियन आर्मी ही कर सकती थी। आइए इस वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में

0: हम और कुछ जानते हैं, हमारे साथ हैं हवलदार विनोद कुमार जी। सर स्वागत है शो में, प्लीज हमें वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में कुछ बताइए।
1: जय हिंद। आज मैं आपको वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में परिचित करवाऊंगा। वॉल ऑफ काइंडनेस यानी नेकी की दीवार, ये एक सोशल सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट है जो कि रीयूज के कंसेप्ट को प्रमोट करता है। हमारे यहाँ काफी सारे लोग आते हैं जो कि अपने साथ घर में पड़ा एक्स्ट्रा सामान, जो कपड़े, जूते, किताबें, जहाँ यूनिफॉर्म, वो सब इधर डोनेट करते हैं। बुक्स की शेल्फ है और यूनिफॉर्म की, कपड़ों की, जिस अलमीरा में ये डोनेट करके जाते हैं और जहाँ से जरूरतमंद लोग जहाँ से उठा के बिना किसी हिचकिचाहट के ले जाते हैं। और बेसिकली हमारा उद्देश्य है कि चैरिटी नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ जहाँ से सामान ले जा सके। बाकी अभी तक डेटा के अनुसार 10 टन से 12 टन तक कपड़े जहाँ से डोनेट हुए थे और काफी सारा सामान जरूरतमंद लोगों को दिया जा चुका है।
0: सो वॉल ऑफ काइंडनेस के साथ साथ एक और शेल्फ है जिसमें ट्राई सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म्स हैं, क्या इसके बारे में और बता सकते हैं?
1: देखिए, अभी आपने सारे रैक्स देख लिए, अभी ये लास्ट में मैं बताता हूँ यूनिफॉर्म रैक्स। इसमें हम तीनों सेनाओं के यूनिफॉर्म रखते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। देखिए, फौजी आदमी के लिए सबसे बड़ा प्राइड होता है उसकी यूनिफॉर्म, ये हमारे इमोशन को टच करती है, और दूसरा ये हमारा प्राइड है। हम चाहते हैं इसका सही तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसलिए हम इसे रिस्पेक्टफुल तरीके से इनको जहां रखते हैं तीनों सेना की यूनिफॉर्म को।
2: बता रहे हैं राइफल मैन दिनेश कुमार।
1: वॉल ऑफ काइंडनेस में अभी तक कपड़े, यूनिफॉर्म, इसके अलावा जहां पर बुक्स भी हैं। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम खत्म हुए थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जिन लोगों ने अपने एग्जाम खत्म किए उनके बुक्स जहां पर काफी डोनेट की गई हैं, और ये सभी डोनेट सामान जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। और इसके अलावा अब जहां और भी बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे जेई, नीट, सीरियस और SSB, सभी तरह की बुकें आपको देखने को जहां मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहां पर जितने भी फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो अफसर जवान, वो अपने बच्चों के खिलौने, किताबें, ये सब जहां पर डोनेट करते हैं।
2: हमारे फौजी भाई कई बार डिफिकल्ट टेरेन्स में पोस्टेड होते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी इजीली अवेलेबल नहीं होती है। ऐसे में हमारी आर्मी ने सोलर एनर्जी का प्रयोग कर डेवलप किए हैं सोलर हट्स और सोलर सिक्योरिटी चेक पोस्ट, जिसमें सोलर पावर से चलने वाले कई तरह के डिवाइसेस प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए जानते हैं आर्मी के इस इनिशिएटिव के बारे में।
3: जब हम सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो सबको पता है सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम नेचुरल सनलाइट को इस्तेमाल करके सोलर हट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसको हमने बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस में लगाया, जिससे आने वाले कम्प्यूटर्स इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पूरा सोलर पावर्ड है जिसमें 4 फैंस की सुविधा दी गई है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, वायरलेस चार्जिंग पॉइंट, और साथ ही साथ में अगर हम चाहे तो रिकॉर्डिंग, CCTV रिकॉर्डिंग की भी इसमें क्षमता है। सोलर हट तो आपने देख लिया, अभी आपके सामने दर्शाई गई है सोलर संतरी पोस्ट। जैसे कि हम सभी जानते हैं आर्मी देश के विभिन्न विभिन्न भागों में डिप्लॉयड है, जैसे जब भी आर्मी रिमोट एरिया में डिप्लॉयड होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमने इस इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी चेक पोस्ट को बनाया गया है। जैसे इसके अंदर एक फैन की सुविधा दी गई है जो गर्म और ठंडी हवा भी देता है, साथ ही साथ में इसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और एक इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट की भी सुविधा दी गई है। ये एक मोबाइल संतरी पोस्ट है जिसको यहां से लेकर हम किसी भी जगह पे डिप्लॉय कर सकते हैं।
0: इंडियन आर्मी देश की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी कर रही है। आज हमने ग्रीन इनिशिएटिव्स देखे जो इंडियन आर्मी ले रही है, किस तरीके से ई वेस्ट, वेट वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, हर तरीके से कैसे इंडियन आर्मी हमारे पर्यावरण को बचा रही है, फ्यूचर को बचा रही है। यहाँ पर हेडक्वार्टर कैंप आर्मी में आके हमने सब जाना किस तरीके से आर्मी ये बेहतरीन इनिशिएटिव्स कर रही है और लगातार हमारे फ्यूचर को सेफगार्ड करके सस्टेनेबल तरीके से बेहतर बना रही है। हम इस वक्त प्रोजेक्ट इंचार्ज मेजर अजीत मोरे के साथ हैं। सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आप क्या कहेंगे, ये ग्रीन इनिशिएटिव्स कितने जरूरी हैं, किस तरीके से आर्मी पूरे देश के सामने इस प्रेरणा को रख रही है?
3: थैंक यू वैभव, मैं आपको एक कहना चाहूंगा, जो हमारी सोच है वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ तक ही सीमित नहीं है बल्कि पर्यावरण सुरक्षा में है, हम इसको कल्चरल चेंजेस लाना चाहते हैं। जिस प्रोडक्ट पे हम अभी बैठे हैं, ये अपसाइकल प्रोडक्ट, हमने एक चौथा पहलू भी इसमें जोड़ दिया है। साथ में आपको कहना चाहूंगा, जब वेस्ट मैनेजमेंट या पर्यावरण संरक्षण की बातें आती है तो इसमें तीन बेसिक ह्यूमन टच पॉइंट्स, एक है इंडिविजुअल, एक है कम्युनिटी और तीसरा है अथॉरिटी, जिसमें आप लोकल बॉडीज होगी, आपके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जब तक ये इंडिविजुअल के अंदर से नहीं आएगा, तब तक हमारा एरिया या हमारा पर्यावरण साफ नहीं होगा। ये आपको मैं जोर देकर कहना चाहूंगा, हमारे देश का हर एक सिटीजन, हर एक बंदा एक पर्यावरण योद्धा है, और जब तक उसके अंदर से ये आएगा तभी हम हमारे देश के या हमारे गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत अभियान को पूरा कर पाएंगे। तो कल हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं, तो ये हमारे गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है स्वच्छ भारत अभियान, मिशन लाइफ अभियान, इसको सफल बनाने के लिए हम सब देशवासी मिलकर इसको योगदान दें। जय हिंद।
2: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

देश की रक्षा और प्रकृति की रक्षा दोनों एक साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर सेना का संदेश है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आज का संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित था, जिसमें जीरो वेस्ट जोन से लेकर सोलराइजेशन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से ई वेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही ऑर्गेनिक वेस्ट का साइंटिफिक मैनेजमेंट और बायोगैस के अलावा हमने जाना कि एरोबिन कंपोस्टिंग क्या है और कैसे इससे खाद बनाई जाती है, और ये भी कि वॉल ऑफ काइंडनेस के माध्यम से पुराने कपड़े, जूते, किताबें, बच्चों के खिलौने डोनेट करके रीयूज कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जा रहा है। हम आशा करेंगे कि इंडियन आर्मी के अपनी धरती और प्रकृति के प्रति इस जज्बे से हम भी प्रेरणा लेकर अपना योगदान अवश्य देंगे और इसे बेहतर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आज के संदेश टू सोल्जर्स के इस स्पेशल शो की प्रस्तुतकर्ता थी राजलक्ष्मी और मेरे सहयोगी थे ओबी पर वैभव श्रीवास्तव, और आप सुन रहे हैं मेरी आवाज। मेरा नाम है शाहिद। जय हिंद।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेंबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 5 बजे हैं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
5: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
4: दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रॉड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा से भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 घंटों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। इस प्रणाली के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय जिस उम्मीदवार की फोटो अपलोड की गई थी, वही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा देने आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार दोगुना करने को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में ये 2 गुने से भी अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि इससे फील्ड कमांडरों की परिचालन दक्षता और मजबूत होगी। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सरकारी भवनों के छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पर बताया कि अब तक निर्धारित लक्ष्य का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश भर में 53,000 से अधिक सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों लगाई जा चुकी हैं। इनकी कुल स्थापित क्षमता 855 मेगावाट है। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा, जहां 5 बार की विजेता भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की पुष्टि की है। मानसून 3 दिन देर से आया है। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा, उनका प्रसारण समय। शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा के बाद आप सुनेंगे पहाड़ी बोली में भजन संध्या कार्यक्रम। यू मंच कार्यक्रम सुनेगा 5:30 पर। 6 बजे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सफ़र सुहाने, गाने नए पुराने। 6:30 पर कार्यक्रम होगा किसान वाणी। हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे 7:30। 7:05 पर आज आप सुनेंगे देश गान। सात बजकर 10 मिनट पर आज आप सुनेंगे भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष कार्यक्रम, विषय स्वास्थ्य सेवा। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ले करेंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से लेके जाएंगे 7:45 पर। और 8 बजे आज आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से एक कार्यक्रम वनों का महत्व विषय पर, डॉक्टर संजय सूद वन प्रमुख वन विभाग हिमाचल प्रदेश से भेंट वार्ता। वार्ताकार हैं श्रीमती सपना ठाकुर और कार्यक्रम रहेगा रात्रि 8 बजे। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। 8:20 पर आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। 8:45 पर आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे समाचार संध्या का अंक और रात्रि 9 बजे News@9। 9:15 पर पुनः आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। आज वीरवार है, रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल जगत। चांदनी रात कार्यक्रम होगा 10:30 पर। हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से लेके जाएंगे रात्रि 11 बजे। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा, उनका प्रसारण समय। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम पहाड़ी बोली में भजन संध्या। इससे पहले एक अंतराल।
6: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं। ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध

0: तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पेट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
1: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
2: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार, सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अंतराल के बाद और सुन दिन कार्यक्रम दी पहली भेंट।

0: ਪਹਾੜੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹਮੀਰਪੁਰ 'ਤੇ। ਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੰਤਰਾਲ।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
1: सो गर्ल्स क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
1: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
3: आरबीआई कहता है अपना पिन ओटीपी सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए।

धीरे शर्मा होरें दी आवाज़ तुसें एह् भजन सुनेआ, तां सुनदे न एह् कार्यक्रम दी अंतिम प्रस्तुति। इस भजन जो गा करदे संजीव दीक्षित कन्नै साथी।

इसी कन्नै अज्ज दा एह् कार्यक्रम इत्थूं संपन्न होंदा। अभी आप सुन रहे थे पहाड़ी बोली में बहन संध्या कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 5:30 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम यू मंच।

0: की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: यो दोस्तों, संजय शर्मा का आपको नमस्कार। जी हाँ, कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले जिंदगी पर बात करते हैं, और जिंदगी का मकसद केवल जीवित रहना ही नहीं दोस्तों, बल्कि इसका उद्देश्य है सीखना, खोजना, आगे बढ़ना।

करना और अपनी सीमाओं को लगातार चुनौती देना। कहते हैं संसार रहस्यों से भरा है, जिन्हें जानने की यात्रा ही जीवन है। जीवन का वास्तविक अर्थ सुरक्षित सीमाओं में कैद रहना नहीं, बल्कि साहस के साथ आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति भय, असफलता और कठिनाइयों के बावजूद सीखने, प्रेम करने, सपने देखने और अपनी सीमाओं को चुनौती देने का साहस करता है, वही अंधकार में प्रकाश और मौन में संगीत और संघर्षों के बीच अनंत संभावनाओं का अनुभव करता है। इसीलिए कहते हैं, जीवन में जितनी भी चुनौतियां आती हैं, उनका हमें साहस के साथ सामना करना चाहिए। देखिए, जीवन में कई तरह के पड़ाव आते हैं। कभी हमें मायूसी के दौर पर गुजरना पड़ता है, कभी हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन जो लोग लक्ष्य के लिए तत्पर रहते हैं, सतत प्रयास करते रहते हैं, वो अंततः जीवन में सफल हो ही जाते हैं। तो चलिए, वाणी को विराम देते हैं, अब करते हैं आपका मनोरंजन।

0: अतरंगी रे, अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना और आवाज़ ही अरिजीत सिंह की। यो दोस्तों, लेते हैं एक अंतराल।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: यो दोस्तों, यो मंच कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से।

0: का टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: अंतराल के बाद आपका कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। युवा साथियों, अब आपको जानकारी देते हैं नशा मुक्त भारत अभियान। जी हां, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं, महिलाओं और समुदायों को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना। कहते हैं संगति का रंगती चढ़ ही जाती है, इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना है। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज को नशा मुक्त बनाना है। इस अभियान की प्रमुख विशेषताएं हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। नशीले पदार्थों से सेवन करने से होने वाले नुकसान है, जैसे शारीरिक नुकसान है, मानसिक सामाजिक नुकसान के बारे में लोगों को शिक्षित करना है। समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना, आम जनता को इस मुहिम में जोड़ा जा रहा है ताकि इसे एक जन आंदोलन बनाया जा सके। आपको पता ही है कि नशाखोरी समाज की एक बहुत बड़ा कलंक बन चुका है। उपचार और पुनर्वास के बारे में आपको बताते हैं। नशा पीड़ितों के इलाज और उनकी काउंसलिंग के लिए मुफ्त केंद्र स्थापित करना और उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाना। कार्यप्रणाली और रणनीतियाँ के तहत अभियान तीन प्रमुख रणनीतियों पर काम करता है। मांग में कमी, शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, स्कूलों पर विशेष ध्यान देकर युवाओं में नशे की मांग और लत को कम करना, चिकित्सा उपचार अस्पतालों और पुनर्वास केंद्रों के माध्यम से जरूरतमंदों को परामर्श और इलाज की सुविधा प्रदान करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। नशीली दवाओं और अवैध पदार्थों की आपूर्ति पर रोक लगाने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। शुरुआत में इसे लागू किया गया, तब लगा था कि अभियान कब तक रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन अब इसे पूरे देश में विस्तारित कर दिया गया है। जन जागरूकता के तहत इसके माध्यम से करोड़ों युवाओं और महिलाओं सहित अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा चुका है। लाखों लोगों को नशा मुक्ति केंद्रों के जरिए उपचार के लिए लाया जा रहा है। हजारों स्वयंसेवकों को मास्टर स्वयंसेवकों के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में हम आपसे इतना ही साझा करना चाहेंगे कि किसी की सहायता के लिए आप नशा मुक्त भारत अभियान की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप नशा मुक्त भारत अभियान उद्देश्य, घटक, विशेषताएं और लाभ के माध्यम से परीक्षा संबंधी या विस्तृत जानकारी भी आप जान सकते हैं। तो ये था नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में। अब लेते हैं एक अंतराल, उसके बाद करते हैं आपका मनोरंजन।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: युवा साथियों, अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म थी आदिपुरुष, आवाज़ें थी सोनू निगम और श्रेया घोषाल की। यू मंच कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। चलिए, आज है 4 जून और हर साल 4 जून को मनाया जाता है आक्रमता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण व हिंसा के शिकार हुए बच्चों के दर्द को समझना, उनके अधिकारों की रक्षा करना। आइए जानते हैं इस विशेष दिन के बारे में, जानने योग्य मुख्य बिंदु। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 अगस्त 1982 को की गई थी। लेबनान युद्ध के दौरान फिलिस्तीनी और लेबनानी बच्चों पर हुए हमलों की भारी क्षति और दुर्दशा को देखते हुए इसे मनाने का संकल्प लिया गया था। हालांकि शुरुआत में यह युद्ध के हालातों का शिकार हुए बच्चों के लिए लग रहा था, लेकिन अब इसमें समाज, घर और स्कूलों में होने वाले किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या शारीरिक या मानसिक हिंसा से पीड़ित बच्चों को शामिल किया गया है। जागरूकता और प्रतिबद्धता पर बात करें, यह दिन हमें याद दिलाता है कि किसी भी युद्ध या संघर्ष में सबसे अधिक नुकसान मासूम बच्चों का ही होता है। यह बच्चों को हर तरह के आक्रामक व्यवहार और हिंसा से बचाने की सामूहिक जिम्मेदारी का एहसास करवाता है। इस विषय पर हम आपसे बात कर रहे हैं। देखिए, ये दिवस बहुत खास है क्योंकि इस दिवस के तहत हम बच्चों को लेकर जागरूक रहते हैं और विश्व भर में युद्धों से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे प्रतिदिन अकल्पनीय भयावहता का सामना कर रहे हैं। वे अपने घरों में सोने और बाहर खेलने, स्कूल में पढ़ने या अस्पतालों में चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए भी सुरक्षित नहीं रहते। हत्या या अंग भंग, अपहरण या यौन शिक्षा से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर हमला और उन्हें अत्यंत आवश्यक मानवीय सहायता के से वंचित किए जाने के कारण बच्चे युद्धरत पक्षों के निशाने पर भयावह रूप से आ रहे हैं। तो इसीलिए इस दिन को मनाने का आज हम संकल्प लिए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि सशस्त्र संघर्ष में बच्चों के खिलाफ हिंसा अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई थी सन 2024 में, और पिछले वर्ष की तुलना में गंभीर उल्लंघनों में 25% की वृद्धि हुई है। हजारों बच्चों को सशस्त्र बलों और सशस्त्र समूहों द्वारा भर्ती किया गया और उनका इस्तेमाल किया गया। अक्सर युद्ध या सहायक भूमिकाओं में भर्ती, अपहरण या अन्य संबंधित अपराधों से जुड़े मामलों में तीव्र वृद्धि संघर्षरत क्षेत्रों में बच्चों को सामने बढ़ते जोखिमों को उनको उजागर करती है। तो मानवीय सहायता पहुंचाने से इनकार हम नहीं कर सकते। मानवीय सहायता सेवाओं तक पहुंच से वंचित करने का जो जिम्मा है वो हम उसे पूरी तरह निभाते हैं ताकि कोई भी बच्चा मानव सेवाओं से वंचित न रह जाए। जैसे मानवीय सहायता कर्मियों पर हमले किए, आवागमन पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, कई बार राहत कार्य में बाधा डाली जाती है, प्रशासनिक बाधाएं खड़ी कर दी जाती हैं जिससे बच्चों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सुरक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं में पहुंच से वंचित रहना पड़े। लेकिन प्रयास यही रहता है कि बच्चे मन के सच्चे और इनकी रक्षा करना, इनको सहायता पहुँचाना हमारा परम कर्तव्य है। तो ये था इस विषय पर जानकारी और अब आपको लिए चलते हैं फिर से संगीत की ओर, लेते हैं एक अंतराल।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

यो दोस्तों, अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म थी सत्य प्रेम कथा, आवाज़ें थी पायल देव और विशाल मिश्रा की। तो कार्यक्रम के अंत में आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि ज़िंदगी का मकसद केवल जीवित रहना ही नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है सीखना, खोजना, आगे बढ़ना, अपनी सीमाओं को लगातार चुनौती देना। संसार जो है रहस्यों से भरा है, जिन्हें जानने की यात्रा ही जीवन है। इसके अलावा जीवन का वास्तविक अर्थ सुरक्षित सीमाओं में कैद रहना नहीं, बल्कि साहस के साथ आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति भय, असफलता और कठिनाइयों के बावजूद सीखने, प्रेम करने, सपने देखने और अपनी सीमा को चुनौती देने का साहस करता है, वही अंधकार में प्रकाश और संघर्ष के बीच अनंत संभावनाओं का अनुभव करता है। तो इसी के साथ अब संजय शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यो मंच। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर।

हम आपको याद दिला दें, आज रात्रि 7:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। विषय रहेगा स्वास्थ्य सेवा। और रात्रि 8:00 आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे वनों का महत्व विषय पर डॉक्टर संजय सूद, वन प्रमुख वन विभाग हिमाचल प्रदेश से भेंट वार्ता। वार्ताकार रहेंगी श्रीमती सपना ठाकुर।

और प्रादेशिक समाचारों के बाद 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 6 बजने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अब 99% एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग ऑनलाइन हो रही है और 96% से अधिक सिलेंडरों की डिलीवरी ओटीपी के माध्यम से की जा रही है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की हालिया स्थिति पर अंतर मंत्रालय प्रेसवार्ता में सुजाता शर्मा ने कहा कि कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए निगरानी और कार्रवाई लगातार जारी है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए गए निर्णयों में से 99% निर्णय पूरी तरह कार्यान्वित किए जा चुके हैं। शिमला में आज मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने की। बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी भी मौजूद रहे। नेगी ने बताया कि 13 फरवरी 2023 से 25 जून 2025 तक मंत्रिमंडल की बैठकों में 1160 निर्णय लिए गए, जिनमें से 99% निर्णय कार्यान्वित किए जा चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों को शेष निर्णयों को समयबद्ध संचालित करने के निर्देश दिए। एक अन्य मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में लघु व सीमांत किसानों के लिए भूमि नीति पर चर्चा की गई। जगत सिंह नेगी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों पर लघु व सीमांत किसानों के भूमि कब्जों को नियमित करने के लिए नीति तैयार कर ली गई है और इस पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा हो जाएगी। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इसे भारत सरकार को भेजा जाएगा। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने दावा किया है कि प्रदेश के 12 में से 9 जिलों में भाजपा समर्थित जिला परिषद बनने जा रही है। उन्होंने आज नाहन में कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले हमीरपुर में जिला परिषद की 19 सीटों में से कांग्रेस पार्टी मात्र एक सीट ही जीत पाई है, जबकि भाजपा ने 15 सीटों पर जीत हासिल की है। बिंदल ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया है।
1: माननीय मुख्यमंत्री जी हमीरपुर जिला से आते हैं और हमीरपुर जिला में केवल एक सीट कांग्रेस जीत पाई है 19 सीटों में से। 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 3 सीटें इंडिपेंडेंट्स के पास। इस बुरी तरह से जनता ने कांग्रेस को रिजेक्ट किया है। एंटी कांग्रेस प्रो बीजेपी एक लहर चली है। जनता ने 3.5 साल तक कांग्रेस पार्टी के झूठ को, भ्रष्टाचार को झेला और वोट की चोट से उसका जवाब।
0: चंबा नगर परिषद में भुवनेश्वरी गुलाटी को अध्यक्ष और जितेंद्र सूर्या को उपाध्यक्ष चुना गया है। ये दोनों कांग्रेस समर्थित पार्षद हैं और इन्हें 7-7 मत प्राप्त हुए हैं। भुवनेश्वरी गुलाटी ने कहा कि चंबा शहर को स्वच्छ बनाना और सड़कों का सुधार करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि चंबा में वर्षों पुराने कूड़ा संयंत्र निर्माण की मांग को भी जल्द पूरा किया जाएगा।
2: सबसे पहले तो मैं अपनी चंबा की समस्त जनता का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे मौका मिला जनता की सेवा करने का, और स्वच्छ, सुंदर और विकसित चंबा बनाना मेरा सपना है। और चंबा को एक हम जितने 10 सालों में कार्य नहीं हुए, मैं चाहूंगी कि हम 1.5-2 साल में वो कार्य करके दिखाएंगे। पारदर्शिता सबसे जरूरी है, वो हम रखेंगे।
0: प्रदेश में हरित पंचायतों की आय का 25% हिस्सा अनाथों और विधवाओं के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि हरित पंचायत पहल अब राज्य भर के अनाथों व विधवाओं का कल्याण करेगी। उन्होंने कहा कि इस पहल के सामाजिक कल्याण पक्ष को और सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने राजस्व वितरण मॉडल में संशोधन करने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम के तहत प्रदेश की 100 ग्राम पंचायतों को 500 किलोवाट क्षमता की भूमि आधारित सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं से प्राप्त आय का 20% राज्य सरकार को दिया जाएगा, जबकि 25% हिस्सा सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने आज वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बताया कि ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को कुल 17 पुरस्कार दिए जाएंगे। इनमें 10 स्वर्ण पुरस्कार, 6 रजत और 1 जूरी पुरस्कार शामिल है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने।

0: गंगा की लहरें, अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। आवाज़ थी आशा भोसले की। और कार्यक्रम सफ़र सुहाने, गाने नए पुराने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। मिलते हैं आपसे एक अंतराल के बाद।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: अंतराल के बाद कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, सफर जिंदगी का हसीन तभी होता है जब हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं और अच्छे लोगों की संगति रखते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी यादें होती हैं, हम उनके साथ जुड़ जाते हैं। जब तक हम अपनी पुरानी असफलताओं या उन परिस्थितियों को नहीं छोड़ेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए उनको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब बातचीत को यहीं विराम देते हैं, सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत।

दिल ने फिर याद किया। अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। कार्यक्रम सफ़र सुहाने, गाने नए पुराने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। देखिए, ज़िंदगी के सफ़र में आपको कई तरह के पड़ाव आते हैं। जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी नुक्ताचीनी करेंगे, बात बात पे आपकी कमियां निकालेंगे, लेकिन हमें ऐसी कमियों निकालने वाले लोगों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आगे बढ़ना चाहिए। और अगर हम पलट कर देखें तो उनके आभामंडल में भी वो चीज़ें, बहुत सारी उनकी अंदर कमी खलती है, लेकिन उनको अपना आभास नहीं होता है। चलिए, उनको करने दीजिए बातें, आप अपना लक्ष्य तय करते हुए आगे बढ़ते रहिए और बोलने वालों को बोलने दीजिए, क्योंकि यही ज़िंदगी का सफ़र है।

0: की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सफर सुहाने गाने नए पुराने। और इससे पहले जो गीत आपने सुना वो फिल्म थी फर्स्ट लव लेटर और आवाज़ें थी लता मंगेशकर और SP वाला सुब्रमण्यम की। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। फिल्म है बेमिसाल और आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने ही संपन्न होता है। संजय शर्मा को दीजिए अनुमति, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: रमा अंजी चली पता हूँ करो, जो चली पाओ
7: चली पोना है ना ताई इन्नी चे कहो आओ परो कने मिंजी सिर अट्टे चका तूता दे
6: रुक त मैं चुकवान दी थी जो लह हाँ। चुक चुक
7: और रुका तो सही बनना था दिया पहले
6: और बाढ़ बूढ़ करी रखी
7: करी रखिया ताई सारा ही काम कार हो गई है ये है ना कने बाकी उन मौसम पर ये है निर्भर क्या क्या उन्दा गा आज दिखा दी ही हूं तो ज्यादा तो ज्यादा तापमान रहा 35 डिग्री सेल्सियस कने काटते काट रहा 27 डिग्री सेल्सियस
6: पर न्याल पिए पी हूं सारे आखी उम्र हाई बत्तर दी से भरी आओ कने छलियां देन से बाय देन
7: आहो कने एक गल और दसू ना ताई अजकल एक गल और चली पी अभियान चले एक भारत सरकार द्वारा शुरू की है ना ये
6: अच्छा
7: खेत बचाओ अभियान बोला दे ना इस जो
6: अच्छा अच्छा
7: इस जो जी आस है आहां दे है जे केंद्रीय कृषि कने किसान कल्याण मंत्री आन शिवराज सिंह चौहान तिने इस जो शुरू किते ये आ ए 1 जून ते 30 जून तक जे ऐसे चलने आला एक अभियान आ। इस अभियान दा मुख्य उद्देश्य यही है कि मिट्टी दी सेहत जो सुधारना, रसायनिक खादां दा संतुलित उपयोग करना कने किसाना जो आधुनिक कने वैज्ञानिक खेती ताई जैसे जागरूक करना
6: कने वास्तविक भी खेत बचाना अभियान दे अस चलाओ ते बोले कने मिट्टी दे स्वास्थ्य जो सुधारना कने खेती दी लागत जो दे अस भी तियां दे मतलब दिखना भी कुछ खेतर च कमी हो कोई ना तो इस खेतर च तियां जैविक खादा पाए सकदे भी है कैंचुओ खाद इस ते ज्यादा हां जो मतलब पुआजा होए भी
7: हां यानी कि प्राकृतिक खेती अपनाने ताई जे अस हां जो प्रोत्साहित कीते ज्यादा ही आ कने अंधाधुंध केमिकल या फिर है जे हां खाद दी पांदे हन तिना दा इस्तेमाल काट करना ही है इस तीजे से आ दिया मिट्टी दी से जी उर्वरता क्षमता है ना ती यहाँ जो नुकसान हो वादा ये आ ता आहां इना रसायना दा इस्तेमाल जैसे काटते काट जैसे करना ही है जल संरक्षण कने मौसम आधारित कृषि तकनीकां दा बारे च जैसे जानकारी देना भी इस अभियान दा एक मुख्य उद्देश्य ये आ।
6: उद्देश्य तो एक और गल दसूँ भी ज़्यादा तो ज़्यादा रसायनिक उर्वरक का घट इस्तेमाल करना कने इस बीच जैविक खाद हरी खाद कने नैनो यूरिया का उपयोग दे अस ताई प्रेरित दे अस कीते जाता भी आ कने मिट्टी की सुरक्षा ताई तियां दी मिट्टी का परीक्षण किया जाता खेतों के पोषक तत्व दे अस पाए जाते भी है कने मिट्टी तक की गुणवत्ता दे अस नष्ट नहीं होए कने इस बीच नाइट्रोजन या नत्रोजन की मात्रा दे अस बढ़ूई रहे ताकि आनियां फसलां दे आन से ठीक वृद्धि करना।
7: बिल्कुल यानी कि हाँ मृदा स्वास्थ्य कने मिट्टी की जांच जैसे जरूर करवानी है। इसके अलावा जे अस नकली कृषि उत्पादों की पहचान करना भी अहां किसानां जे अस ध्यान रखना ही है। किसानां जो नकली उर्वरकां बीजां कीटनाशकां की पहचान करना सिखाना भी इसा ही अभियान का एक मुख्य उद्देश्य है या कने इसका सरकारी योजनाओं से सोगी जुड़ी करने जे अस है तिना दिखा सरकार द्वारा चलाई गई योजना PM किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड एड़ी जी योजना का सीधा लाभ किसानां जो वो है सह भी इसा इस अभियान के तहत जे अस है आदा ही है क्योंकि सरकार चाह दी कि अहां दे ज्यादा ते ज्यादा किसान जेस है इस अभियान ने जुड़न कने इसका फायदा जैसे लैन
6: कने किसान ने जो क्या क्या लाभ दे से मिलने भी है तियां दे लागत भी च कमी हो दी ना तो तिहा कमी जो सही मात्रा विच खाद दा उपयोग करना किसानों दे खेती करने आले होने आली लागत जितियां कमी आदि तिहा सुधारना सही सलाह कने जागरूक करना विज्ञानिक ने कृषि अधिकारी गांव गांव च जाने किसानों जो मौसम कने अनुकूल फसल उगाने ताई फसल चक्र अपनाने दी जानकारी दे दिया दे भी
7: बिल्कुल इसा योजना दे ही तहत जैसे सरकार प्राकृतिक कने जैविक कृषि जो प्रोत्साहित करने ताई जैसे आर्थिक सहायता भी प्रदान कर दी है। इसका मुख्य लक्ष्य मिट्टी च मौजूद सूक्ष्म जीवां जो बचाना कने ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਜੋ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਆ
6: ਕਿ ਸਥਾਨੀ ਸਤਰ ਉੱਪਰ ਕਾਰਿਆ ਦੇ ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਜੋ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗ ਦਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਅਸਰ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਦੀਆਂ ਅਸਰ ਕੀਤੂ ਦੀਆਂ ਅਭਿਆਨ
7: ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਹੋਈ ਗਏ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਈ ਗਏ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੋਈ ਗਏ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ
6: ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਉਰਵਰਕਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਉਪਯੋਗ ਜੋ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤ ਬਚਾਓ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਇਸ ਕੀਤੀ ਦੀ ਵੀ
7: ਜੀ ਦਿਖਾ ਅਸਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਆ ਸੈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਸਾਂ ਦੇ ਗਾਵਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਜੋ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਇਸੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬੜੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਇਸ ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਇਸ ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਆ ਸੈ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨੇ ਜੁੜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਦਿ ਆਈ ਤਾਂ ਸਹਿ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਈ ਕਰਨੇ ਜੇ ਆਸ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਲਗਾਈ ਕਰਨੇ ਜੇ ਆਸ ਹੈ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਗਾਉਣ
6: ਸਿੱਖਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਖੇਤ ਬਚਾਓ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਓ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸਕਿੱਤੂ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਉਰਵਰਕਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਆ
7: ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਦਿੱਖ ਹੁਣ ਤਾਈ ਇਸ ਰੇਟ ਕੂਆ ਦੇ ਚਕਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਚਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਘਰ ਆ ਖਾਜੋ।

0: ताई दिखा भाई लोक गीता सुनी ले ना, कने पानी पीते ठंडड़ा ठंडड़ा घड़े दा ना, भी मजा आई गई है हैं। कने एक गल में और पूछनी ही, भी तू हाँ हलदर कने कचालू बाई ते कि हल्ले नहीं बाई?
1: दिखना रमा कुछ बाई तुए कने कुछ हलना रखुए भी
0: हाँ है कचो रखुए था।
1: ताली खरी बरखोनी ताली एक खेतर और बाणा भी हाँ
0: हाँ दिखा भाई, ये जे आंदा हिमाचल प्रदेश दे निचले पहाड़ी क्षेत्र है ना, दे
1: जी
0: इना
1: जी
0: बीच ये जे कंद वाली फसलां न, इना च जे अस एक बोली सकदे भाई कृषि दा महत्वपूर्ण घटक जैसे मन्ने जांदे हन, क्योंकि इत्थी जे इस जलवायु दी परिस्थितियां दे हिसाबा कन्ने जे अस ये जे कंद वाली फसलां न तिना ताई ये बड़ी ही अच्छी जलवायु जैसे मन्नी जांदी है। कने सारे ते बड़ी गल ये ना बताई भाई, ये जे हाँ दे आवारा पशु कोई बंदर हाँ दी फसलों जो नुकसान करी आंदे, कोई तरह दे कोई और पक्षी हाँ दी फसलों जो नुकसान करी आंदे हैं, तो ये जे कंद वाली फसलां होंदियां ना, तो इन्हों थोड़े कितने जे ऐसे कोई भी जानवर जे ऐसे नुकसान घट पहुंचाता ही है।
1: तो इस बीच धीए दे आलू होई गया, शकरकंदी होएगी, अरबी होएगी, फिर जिमीकंद होई गया, अलदर होएगी भी, अदरक होई है भाई। तो ये सीमांत किसाना ताई दे आज दे प्रमुख स्रोत दे से मन्ने आंदे भी कने कंद फसलां दी होंदियां से कार्बोहाइड्रेट विच भरपूर होंदियां भी हैं।
0: जी इस बीच जैसे जरूरी मात्रा बिच विटामिन खनिज कने आहारी रेशे जैसे प्रदान होंगे हैं, तिस्ती जैसे पोषण सुरक्षा भी सुनिश्चित होंगी है। कने हाँ दे सीमांत मिट्टिया वास्ते या वर्षा आधारित परिस्थितियां या ढलान वाली जमीन जी तीह की वृद्धि करने ताई भी जे इसे बड़ी ही सक्षम मनी जाती है। कने इसते जे अस हाँ दी कंद वाली फसलों जो हैं सह इसका विविधीकरण करी कने जे अस हाँ आजीविका दे सुरक्षा कने सतत कृषि जो बढ़ावा देने च एक बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका जे अस अदा करती है ये कंद वाली फसलों।
1: तो भाई ये हाई दे आंसर लगाए सकते भी कि जेडे आंदे निचले पहाड़ी क्षेत्र तिने विच कंद वाली फसलां दे आंसर एक खाद्य सुरक्षा योगदान विच रहंदियां मैन। इन्हां विच तियां दे कार्बोहाइड्रेट, आहारी रेशा, आवश्यक विटामिन कने विटामिन ए दे आ या सी दे असे लोक कने कैल्शियम दे खनिज दे से बिल्कुल हुंदे भी ए
0: जी
1: कने तियां दे असे ही लगाए सकते भी कने ते फायदा दे असे ले सकते भी ए।
0: बिल्कुल ठीक ला दे, कंद वाली फसलां जे हन सह दुबले मौसम दे दौरान भी द्वितीयक मुख्य आहार जैसे मन्ने जांदा ही है। इसते ऊर्जा दी आवश्यकता भी दी भी पूर्ति हो जांदी है। कने जोखिमपूर्ण एकल फसल प्रणाली पर भी एक घाटा जे ऐसे निर्भर करदी है।
1: जी
0: अनुसंधान दे सोगी सिद्ध किए गए है कि छलियां या फिर कणक आधारित पारंपरिक फसल प्रणालियों की बजाय जे ऐसे आहां कंद वाली फसलां जो शामिल कर लईए तां कुल उत्पादकता कने सकल आय च जे ऐसे दो गुणा या फिर यहाँ इससे भी ज्यादा वृद्धि जैसे कर सकते। कने इससे जे ऐसे कंद वाली फसलों ते हाँ जो आर्थिक लाभ जैसे ज्यादा मिलता ही है।
1: कने जेड़े हंदे पहाड़ी निचले पहाड़ी क्षेत्र के छोटे कने खंडित वाले जेड़े जोत किसान है कंद वाली फसलों का लाभ दे असर ले सकते भी है। इस ताई दे हाँ जो सह समय पर खुदाई करना पौंदी भी कने निरंतर भोजन आपूर्ति ताई एक आय का अवसर दे असर भी प्राप्त हुंदा भी है।
0: बिल्कुल, कने आर्थिक कने पोषणीय महत्व की गल करिए तां तिना विच दिखा आलू, आलू जे ऐसे हां दे हिमाचल बिच जे ऐसे बड़ी ही एक महत्वपूर्ण फसल जे इसे मन्नी जांदी है।
1: जी
0: आर्थिक दृष्टि ते भी आलू एक उच्च मूल्य वाली किस्म जे इसे मन्नी जांदी है। आलू जे ऐसे एक बड़े ही आर्थिक रूप मजबूत मन्ने जाने वाली फसल मन्नी जांदी है। कने इस दी बाजार च मांग दे इसे हां दिखदे हैं कि निरंतर ही जे इसे बनी रहंदी है। इसते छोटे या सीमांत किसान जे ऐसे नियमित नगद आय जे इसे प्राप्त कर सकदे हैं। इस सोगी मक्का आलू या सब्जी आधारित फसल चक्रां च भी आसानी च जे असे आहां शामिलित करी सकदे हन। कने भूमि दा उपयोग दक्षता च भी सुधार हुंदा ही है। पोषण
1: जी
0: दी दृष्टि ते आलू कार्बोहाइड्रेट दा एक उत्कृष्ट स्रोत जैसे मन्ने जांदा ही है। कने इस विच जे असे विटामिन बी, पोटाशियम, विटामिन B6, B6 या फिर आहारी रेशा प्रचुर मात्रा च जे असे पाया जांदा। कने इस जो जे असे संतुलित आहार दे रूप च भी मन्ने जांदा। कने ये आसानी ने पचने वाला एक बड़ा ही अच्छा फसल जैसे मन्नी जाती है।
1: कने हुण गल करिए ना रमा, तो शक्करकंदी भी एक महत्वपूर्ण जलवायु बीच सहनशील कंद वाली फसल ही ये निचले पहाड़ी क्षेत्रों में आर्थिक महत्व दे असर लगातार बढ़ा दे भी है। कने इसका निवेश दे असर उगा दे भी सीमांत मृदाओं में नमी या तनाव जो सहन कर दी भी तिसते उत्पादन दी लागत इसे घट हुंदी भी कने प्रतिफल प्राप्त दे असर हुंदा भी आ। फसल विशेष रूप छोटे किसान दे आत्मनिर्भर या अतिरिक्त नगद आय हेतु दे असर उगाई जाती भी कने पोषण की दृष्टि ने दिखन तो शक्करकंद दे असे कार्बोहाइड्रेट ने भरपूर होंगी भी कने विशेष रूप च नारंगी गुद्दे आली किस्म दे इस होंदी कने बीटा कैरोटीन दे अस प्रचुर मात्रा च दे अस विच पाए जांदी कने विटामिन ए बी दे अस भी उंदी भी
0: जी
1: कने विटामिन सी दे अस आरेशा या एंटीऑक्सीडेंट्स जे दे अस पाए जांदे भी कने शक्करकंदी दे उंदी से कुपोषण कने विटामिन ए दी कमी जो दूर करदी भी विशेष रूप च बच्चियां महिलाओं जो दे अस दित्ती जांदी भी कने पशु आहार कच्चे माल दे रूप च भी इहदा प्रयोग दे अस कीता जांदा भी आ
0: बिल्कुल कने आर्थिक रूप ते भी ही ए ज्यादा बढ़ावा जैसे दिंदी है। अरबी या फिर तरह की अगर हाँ गल करिए अरबी एक पारंपरिक कंद फसल जैसे हाँ हिमाचल की मनी जाती है। ये आर्द्र या फिर अर्ध छायादार परिस्थितियों बीज ऐसे अच्छी तरह उगी आती है। ये न्यूनतम प्रबंधन सुनिश्चित उपज प्रदान करती है कने छोटे भूखंडा ते भी ये उपयुक्त मनी जाती है। इसके कंद कने पत्तियां दोनों ही विपणन योग्य जैसे मने जाते हैं। प्रत्येक इकाई क्षेत्र ऐसे हाँ जो यहाँ लाभ जैसे मिलता ही है। अरबी जो जी ऐसे अहाँ रसोई बागाना या फिर मिश्रित फसल प्रणालियों सोगी भी उगा सकते हैं। इसते घरेलू आय या फिर खाद्य सुरक्षा जो भी बल मिलता ही है। इस सोगी ही पोषण दृष्टि से अगर अहाँ इसा जो देखिए तो ये कंद सुपाच्य कार्बोहाइड्रेट या फिर आहारीय रेशे से भरपूर होंगे। पत्तियां जो अन्न से लौह कैल्शियम विटामिन ए कने विटामिन सी का जो ऐसे एक बड़ा ही अच्छा स्रोत जैसे मने जाते हैं।
1: कने हुण गल करिए जिमीकंद ते जो सूरन दे रूप च भी दे असे बोलदे भी है कने ए एक आर्थिक रूप च महत्वपूर्ण कंद फसल है। इस दी उपज दी क्षमता दे से अधिक कने बाजारां च मूल्य दे असे खरा मिलदा भी है कने ए वर्षा आधारित पर आशंकिक छायादार परिस्थितियां विच सफलतापूर्वक दे असे उगाई जांदी भी कने दिस दे निचले कने पहाड़ी क्षेत्रां विच दे असे उपयुक्त बनी जांदे भी है। इस फसल विच घट निवेश कने आवश्यकता दे इस उंदी भी बड़े आकार दे कंद हुंदे कने बढ़ती शहरी मांग के कारण उच्च लाभ भी मिलता है। नहीं पोषण की दृष्टि ने दिखन तो सूरन कार्बोहाइड्रेट आहारीय रेशे कने पोटाशियम कैल्शियम कने लोह कने खनिज समृद्ध हुंदा भी है। इसके औषधीय गुण आए जैव सक्रिय यौगिक भी पाए जाते भी सारे पाचन क्रिया या चाय पच स्वास्थ्य भी सहायक होंगे भी। पारंपरिक आहार के रूप में सूरन दे एक महत्वपूर्ण स्थान रखता भी आ
0: जी। तो गलाने का मतलब यही है कि ताई पे हाँ जे हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्र हैं इन्हों महत्वपूर्ण कंद फसल जो हैं इन्होंने जो अस अहां काफी हद तक मुनाफा जैसे कमाई सकते हैं।
1: कहने भाई मुनाफा तो लेना ना हूँ दिखी कि मिठड़ा दे लोक गीत सुनी लैनियां भी हैं फिर कर दी गल्लां बातां
0: आला।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7 बजने को हैं, बस थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। हम आपको याद दिलाते हैं, 7:10 पर आप सुनेंगे भारत सरकार के 12 वर्ष पूरा होने पर विशेष कार्यक्रम। विषय है स्वास्थ्य सेवा। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से लेकर आएंगे 7:10 पर। 7 बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए नए अवसरों पर विचार किया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज ने कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्तीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत किया और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। साथ ही वह लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ स्थानीय संस्कृति को भी बढ़ावा दे रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार को दोगुना करने को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में यह दोगुने से भी अधिक है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत केवल एक नए वाहन की शुरुआत नहीं है, बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण यह है कि देश के नागरिकों ने यह समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आज विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योगासन का खेलों में बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता योग को खेल की दुनिया में नई पहचान दिलाने का काम करेगी। श्री मोदी ने कहा कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी चैंपियन हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:05 हुए हैं।
3: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
4: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लीजिए सुनिए देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:10 होने को हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम, भारत सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम। विषय है स्वास्थ्य सेवा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल, नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants are Dr. V.K. Paul, former member, Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, President, AIIMS Bilaspur. Moderator is Priyanka Arora.
3: स्वस्थ नागरिक किसी भी सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम के मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत ने पिछले 12 वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन की एक नई गाथा लिखी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, गरीबों के लिए उपचार की बेहतर व्यवस्था, आधुनिक अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों का विकास तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता दायरा, इन सभी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा और नई गति दी है। यही परिवर्तन आज करोड़ों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति विषय पर आज हम स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
4: तो
3: जी, कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर पॉल, आपसे जानना चाहती हूँ कि पिछले 12 वर्ष में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में आए सबसे बड़े संरचनात्मक बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं?
4: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विजनरी लीडरशिप में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनप्रेसिडेंटेड जो कभी नहीं हुए वो रिफॉर्म्स हुए और वो बदलाव आया है। इसके बहुत सारे डायमेंशन हैं, लेकिन मैं सर्वोपरि अगर उन डायमेंशंस को देखूं तो जो एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ी है
3: जी,
4: और जो हेल्थ केयर की वजह से जो बोझ पड़ता था नागरिक पे, खासकर जो गरीब परिवार है, इन दोनों में सुधार लाने के लिए, एक्सेस को बढ़ाने के लिए और जो आर्थिक बोझ स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पड़ता था, उनमें जो कमी आई है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। इसको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की नज़र से भी देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और जब स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं तो व्यक्ति की और सिटीजन जेब के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ये जो हुआ है वो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसी के साथ साथ उसी बजट स्पीच में 2018 के बजट के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब उनको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं
3: जी,
4: जो हमारी प्राइमरी केयर की व्यवस्था बनी और जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर में हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाने के लिए जो एक मैकेनिज्म बना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, मैं समझता हूँ कि इन दोनों को जोड़ के देखूँ तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जो सुधार और जो जन जन तक इसका फायदा हुआ है उसको मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ।
3: जी हाँ, यह भूतपूर्व पहल रही है और आज भी विश्व में सबसे बड़ी योजना के रूप में मानी जाती है। डॉक्टर अरोड़ा, अगर आपसे जानना चाहें तो जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछले 12 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं?
5: जैसे कि प्रोफेसर पॉल ने कहा कि एक आम व्यक्ति के जेब से आज से 12 वर्ष पहले अगर वो 100 रुपए डॉक्टर की इलाज पे या अपनी किसी बीमारी के इलाज पे खर्च करता था तो उस समय 60 रुपए उसकी जेब से जाते थे, आज ये घट करके 35-40 रुपए के बीच में आ गया है। ये एक आमूल परिवर्तन है। और दूसरी चीज जो डॉक्टर पॉल कह रहे थे, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनको इस स्ट्रैटेजिक तरीके से रणनीतिक तौर पर इनको बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इस देश में 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं होती। यानी कि 2 किलोमीटर का जो दायरा है, रेडियस है,

0: जो 228 करोड़ टीके दिए गए वो पूरे के पूरे भारत में निर्मित थे, और उसकी वजह से जो देश में बचाव हुआ उसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। एक और चीज करी गई है और जो मेड इन इंडिया की तरफ बहुत बड़ा कदम रहा है कि अनुसंधान में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे कि हमारी इलाज करने की तरीके, इलाज करने के लिए दवाइयाँ, इलाज करने के लिए वैक्सीन और किसी भी बीमारी के लिए अब भारत में सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसमें आशातीत वृद्धि हुई है। आज से 12 साल पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब किसी भी इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आए।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा। और हम जब आयुष्मान भारत की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना मानी जाती है, तो ये किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हुई है डॉक्टर पॉल?
2: हमारे देश में सुविधाओं की कमी रही कई सालों तक, उसके साथ साथ में सिटीजन को अपने आप को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए जो खर्चा होता था उसका समाधान का तरीका निकाला गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 60 करोड़ हमारे जो नागरिक हैं, 60 करोड़,
1: जी
2: उनको 5 लाख का कवरेज, हर साल उनके परिवार के अंदर 5 लाख का कवरेज जो है वो सेकेंडरी टर्शरी केयर के लिए दाखिला जब होता है अस्पताल में तो वो सरकार कवर करती है।
1: जी
2: और इसके साथ साथ बहुत सारे राज्यों ने और भी अपने अपने नागरिकों को एक्स्ट्रा भी जोड़ लिया है। अब ये जो सेवाएं दी जा रही हैं ये लगभग 1900 से ज़्यादा पैकेजेस की तरह से है कि आपको डेंगू का बीमारी हुई तो एक पैकेज डेंगू का है, आपको घुटने के रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है एक पैकेज है। आप सोच सकते हैं कि हमारे सबसे ज़्यादा जो मार्जिनलाइज्ड हमारे नागरिक भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनको टर्शरी केयर में हार्ट की सर्जरी,
1: जी
2: आप नी रिप्लेसमेंट और इवन किडनी ट्रांसप्लांट और बुखार की बीमारी, एनकेफेलाइटिस, स्ट्रोक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ब्लड की बीमारियां, कैंसर, इन सब बीमारियों को उनको कैशलेस, उनको सामने पैसा नहीं देना है और उनको सेवाएं मिल रही हैं 30,000 से ज़्यादा अस्पतालों में, जिनमें कम से कम 12,000 प्राइवेट हॉस्पिटल भी जुड़े हुए हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ दिया गया
1: जी
2: एक आम नागरिक के लिए, ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। आयुष्मान भारत पीएमजे के अंतर्गत हर रोज 85 से 90 हज़ार व्यक्ति अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं और उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, रोज 80 से 90 हज़ार। अभी तक 10 करोड़ से ज़्यादा ऐसे दाखिले हो गए हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा। देखिए कितने लोगों को
1: जी
2: ये फ़ायदा कैशलेस कवरेज का जो हुआ है, अगर हम देखें कि इससे कितनी बचत हुई है समाज को, देश के नागरिकों को, तो ये आंकड़ा आता है 1,52,000 करोड़ का फायदा
1: जी
2: जो है वो यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें कि इससे मेरे को रीच कैसे बढ़ी, तो जब शुरू हुआ था तो जो बेनिफिशरीज है, लाभार्थी हैं, उनमें लगभग एक 0.7%, less than 1% ही बेनिफिशरीज का फायदा ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम मैच्योर हुआ, आपको जान के खुशी होगी कि आप 2 से 2.5% लोग, मतलब कि 2.5 से 3 गुना बेनिफिशरीज को एक्सेस अब मिल रहे हैं। तो लोग बैठे रहते थे, अब इसको अपनी सेवाओं का को लेके जाते हैं। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जो है, एक स्टडी हमें दिखाती है कि जिनको पीएमजे का कवरेज नहीं है वो टाइम पे पहुंचते हैं 30% लोग सिर्फ, और आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं वो 90% लोग टाइम पे पहुंच पा रहे हैं सेवा, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास ताकत है इलाज
1: जी
2: लेने के लिए। बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि 2024 से इस कार्यक्रम के साथ में 70 और 70 से ज़्यादा उम्र के सभी नागरिकों जोड़ दिया गया है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, अमीर गरीब सब के लिए। तो ये 6 करोड़ नागरिक हैं जिनको कि एक्स्ट्रा एक आयुष्मान भारत में जगह मिली है। ये लगभग 4.5 करोड़ फैमिलीज परिवारों को बिलोंग करते हैं, और मुझे खुशी है बताते हुए कि 1 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम के अंतर्गत वयो योजना जो है पीएमजे की, उसके साथ जोड़ के वयोवंदन योजना में ये समावेश हुआ है। तो जो सबसे नीडी लोग हैं उनको, क्योंकि उस उम्र पे ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं, तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं, तो उस समाज को प्रोटेक्ट करना और स्कीम के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी बात है और उपलब्धि है। ये

0: इतने बड़े स्केल के ऊपर रोज दाखिले हो रहे हैं और उन सब का इलाज हो रहा है और इससे गरीब की जेब पे बोझ कम हुआ है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि उनको एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर मिलना शुरू हो गया है।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर अरोड़ा, अगर मैं आपसे बात करूं, आप लंबे समय से टीकाकरण कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं। मिशन इंद्रधनुष और कोविड टीकाकरण अभियान ने भारत के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है?
2: ये जब आप टीकाकरण की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में इस चीज को सराहा गया है। 2014 में कुल 63% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण होता था और आज ये बढ़कर के 93-94% हो गया है। अभी NFHS का डेटा 2 दिन पहले आया है 2024-25 का, एक्चुअली उसमें डेटा 22-23 का है।
1: जी, जी.
2: और उसके हिसाब से 88.7% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण उपलब्ध हो रहा। और इसका कारण, और आपने मिशन इंद्रधनुष का जो उदाहरण दिया कि जो बच्चा रह जाए जिसको टीका नहीं मिला हो उसको देने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं जिनको टिटनेस का टीका नहीं मिला उनको भी देने का। लेकिन ये टीका खाली कहने पर से नहीं है, इस कार्यक्रम में जो नवाचार किया गया कि इस देश का हर बच्चा जो टीकाकरण के लिए उसका अधिकार था उसको मैप आउट किया गया, उसकी पहचान की गई और उस तक पहुंचने का प्रयास किया गया। और यह जो प्रयास था जिसको हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, ये हम सीखे खास तौर पे जब हम पोलियो उन्मूलन कर रहे थे। पूरे के पूरे टीकाकरण में हमारा अब हर बच्चा, हर महिला जो है हमारे एक तरीके से हाथ पे लिखा रहता है। और अब इसको आगे ले जा करके यूएन आईटी प्लेटफॉर्म है जिससे कि हर एक एक हमारी रजिस्ट्री बन गई है जिसमें बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है। लेकिन इसका मुख्य लाभ जो हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ता आई है, क्योंकि जब मैं बच्चों के तक पहुंचता हूं, गर्भवती महिलाओं तक पहुंचता हूं, तो खाली टीकाकरण नहीं है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बाकी जो समस्याएं हैं उनको भी वहां तक लेके जाने का प्रयास किया जा रहा। साथ ही साथ जो ये माइक्रो प्लान वाला सिस्टम है इसका प्रभाव हमारी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये खास तौर पे 2 बड़ी बीमारियां हैं
1: जी।
2: ये भी अपने आसपास के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चारों तरफ लगभग 5,000 की पॉपुलेशन होती है वहां तक पहुंचाने में भी इसी उपक्रम का प्रयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो भी नवाचार किया जा रहा है टीकाकरण में उसका प्रभाव खाली बच्चों की और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं पर सुदृढ़ नहीं हुआ है लेकिन बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो भारत का टीकाकरण कार्यक्रम है वो हमारी सारी की सारी सरकारी जो भी हमारे कार्यक्रम हैं, अभियान हैं, उसमें सबसे ज्यादा कवरेज या पहुंच जो है टीकाकरण कार्यक्रम की है। इस देश के लगभग 97% जो टीकाकरण के अधिकारी हैं उन तक कम से कम एक टीका लग चुका है। तो यही एक रास्ता है जिससे कि बाकी जो सेवाएं हैं उनको भी पहुंचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अभी डॉक्टर अरोड़ा ने आयुष आरोग्य मंदिरों की बात की और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिहाज से, और अभी देश में 1,70,000 से अधिक हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य केंद्र हैं। तो अगर बात करें आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका विस्तार किया जा रहा है ताकि जो आयुर्वेद है और आयुष उपचारों को उसमें शामिल किया जा सके, तो सरकार कैसे आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा को एक साथ लेकर चल रही है?
0: आपके सवाल में 2 हिस्से हैं। पहले मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो बात कही है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा। किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं में जो प्राइमरी केयर होती है, प्राथमिक सेवाएं जो होती हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में प्राथमिक सेवाओं में जो सुदृढ़ता आई है, हमारे सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सालों से काम निभा रहे थे बिल्कुल लिमिटेड तरीके से, जितना भी कर पा रहे थे लिमिटेड था। 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिनको आज हम आयुष्मान आरोग्य मंत्र कहते हैं, उनकी संरचना, उनकी सोच लेके आए, जो एक लिमिटेड प्राथमिक सेवाएं होती थी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ या संक्रमित बीमारियों के, इन्फेक्शियस बीमारियों, कम्युनिकेबल डिजीज की, वो तो करना ही है, उसमें भी और डेप्थ और इंटेंसिटी लेके आए। लेकिन जो नहीं हो रहा था, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी इतनी प्रोमिनेंट है, कैंसर, अब ये सेवाएं प्राथमिक सेवाओं में आयुष्मान आरोग्य केंद्र में निहित हो गई कि हम इनको एक सीमित तरीके से, सीमित इन द सेंस कि पीरियोडिक, इतने साल के बाद हर व्यक्ति का एक चेकअप होगा, हर साल ब्लड प्रेशर चेक होगा, हर साल शुगर चेक होगी डायबिटीज के लिए, और कैंसर तीन साल में, पाँच साल जैसा प्रोटोकॉल है, इस पर तीन कैंसर, मुंह का कैंसर, कैंसर सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर लेडीज में, और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, इसकी सबकी स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को साथ में जोड़ा गया, आई आँख का इलाज, ENT कान का इलाज, नाक का इलाज, डेंटल हेल्थ, फिर एल्डरली केयर को भी जोड़ा गया इसमें। तो 12 पैकेजेस बने, शुरू के 5 पैकेजेस, 4 पैकेजेस के बजाय उसका आयाम बढ़ गया। अब और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 170,000 ये बने, उसमें दो तरह के हैं, एक सब सेंटर लेवल का होता है 6,000 पॉपुलेशन के लिए, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है, लगभग 30,000 का उसका दायरा होता है। कुल मिला के ये यूनिट बन जाता है, एक PHC वाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 5 या 6 या 4 या 5 सब सेंटर वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन जाता। अब बिल्कुल आश्चर्य भी होगा आपको, 120,000 नए मिड लेवल प्रोवाइडर्स, इनको करने के लिए टीम को बढ़ाया गया। हमारी पुरानी टीम थी आशा वर्कर थे एक गांव में लगभग 1,000 की पॉपुलेशन पे, फिर हमारे पास ANM थे, कहीं कहीं मेल हेल्थ वर्कर होता था, लेकिन 120,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को लगाया गया है। ये इतनी रेवोल्यूशनरी बात है कि इतने संख्या में एक ह्यूमन रिसोर्स को प्राइमरी केयर के पीछे लगाया गया, और ये टिपिकली BSc पास हमारी नर्सेस होती हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और सब जगह पे टेलीमेडिसिन का प्रावधान हुआ
1: जी।
0: सब जगह पे 100 से ज़्यादा दवाइयाँ, सब सेंटर वाले में 105 दवाई और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 170 फ्री मेडिसिन, सब सेंटर वाले में 14 डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्री, और PHC वाले में 42 से ज़्यादा फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रावधान किया गया है। तो सारे समाज को, सारे जितनी पॉपुलेशन है उसको एक सूत्र में बांध के कमिटमेंट है कि हम इनका चेकअप करेंगे, कमिटमेंट है कि हम उनको याद दिलाएंगे कि दवाई आपको फ्री मिल रही है, दवाई जब ख़त्म होती है तो अगली दवाई आप लीजिए, ज़रूरत होगी तो टेलीमेडिसिन के द्वारा जोड़ा जाएगा, और जो बाकी सेवाएँ शुरू से हैं, इम्यूनाइजेशन है, मदर चाइल्ड हेल्थ है, TB कंट्रोल है, लेप्रसी, ये जो प्रोग्राम वो तो चल रही है, उनमें भी ताकत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्लैनेट पर सबसे बड़ा जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो एक रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो आज हमारे देश में हो रहा है, और ये बहुत दूर तक हमें लेके जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि क्रॉनिक बीमारियों को बचाने का तरीका सिर्फ यही होता है कि या तो वैसे ही हम अपने आप को, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, नहीं तो हम डिटेक्ट करें, और प्राइमरी हेल्थ के द्वारा डिटेक्शन भी हो, प्रिवेंशन भी हो, हेल्थ प्रमोशन भी हो, और ज़रूरत पड़े तो फिर ट्रीटमेंट भी हो, जिसमें फिर PM से जुड़ जाता है।
1: बिल्कुल, देखा जाए इतनी बड़ी आबादी है हमारे जैसे देश की, तो घर घर जाकर इस चीज़ की जांच करना और उनको बताना, रोकथाम के लिए उपाय बताना, तो बहुत बड़ी बात है।
0: दूसरी बात आपने कही कि हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ा गया, बहुत बड़ी बात है
1: जी।
0: ये हिस्टोरिक जब देखा जाएगा तो हिस्ट्री में ये माना जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में जो भारत का अपना सिस्टम थे, आयुर्वेद था हमारा, सिद्ध है हमारे पास, यूनानी है, ये सब हमारे भारत में पनपे हुए सिस्टम है, ये इन सब के जो योग है वो भी स्वास्थ्य के लिए भी और स्वास्थ्य से भी ऊपर का है, वो उन सब को एक मेन स्ट्रीम में लाना, उनको ये बजट प्रदान करना, उनके सिस्टम को स्ट्रेंथन करना और उनको एक इंटीग्रेटिव अप्रोच में जोड़ना, और को जो बढ़ोतरी मिली है वो बहुत बड़ी बात है कि दोनों का समावेश हो, आधुनिक कार्यक्रम, आधुनिक पद्धति का भी हो और ट्रेडिशनल का भी हो, ताकि दोनों मिलके एक व्यक्ति को, एक नागरिक को वो दे पाए जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा, स्वास्थ्य रहे, बीमारियां नहीं हो, मन भी अच्छा हो, तन भी अच्छा हो और आत्मा भी अच्छा हो, इन सब का जो जोड़ इंटीग्रेटिव अप्रोच में लेके आए हैं, ये भारत का मॉडल जो है ये दुनिया देखेगी। और आयुर्वेद का जो प्रचलन है वो बड़ा है, आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं, और बिल्कुल ये मेन स्ट्रीम में दोनों को ले जाने का जो माहौल बना है और जो ताकत आई है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है।
1: बिल्कुल, एक साथ ले जाना तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अरोड़ा, हम जैसे बात कर रहे थे टीकाकरण की भी, तो इन दिनों सरकार जो कैंसर है उसकी डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन पर, स्क्रीनिंग पर बहुत ध्यान दे रही है, और खासकर जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
2: वो HPV वाला टीकाकरण है, और इसके अलावा डॉक्टर पॉल ने 3 कैंसर्स के बारे में बताया, एक

0: महिलाओं के बच्चेदानी के मुंह वाला कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर है,
1: जी
0: उसी के लिए वैक्सीन है ये।
1: जी
0: उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और मुंह का कैंसर और एक तीसरे कैंसर के लिए वैक्सीन ऑलरेडी दी जा रही है जो हेपेटाइटिस बी है, उसकी वजह से लिवर का कैंसर हो जाता है। तो कैंसर की तरफ जो है, क्योंकि जैसे कि हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय में हम सब लोगों का ध्यान बहुत अधिक आकर्षित हुआ है कैंसर की बीमारी की तरफ, उसकी स्क्रीनिंग के लिए, जल्दी पहचान के लिए, फिर इलाज के लिए, और इस दिशा में बहुत सारा काम किया गया है। तो एक तो स्क्रीनिंग के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और हुई है हमारे देश में इस पिछले 12-13 साल में एम्स का संख्या एक से बढ़कर के इस समय 23 एम्स हो गए,
1: जी
0: जो अपने आप में एक गजब की चीज है। कि और ये एम्स बड़े शहरों में नहीं करे गए, फॉर एग्जाम्पल झारखंड में देवघर करके एक जगह है, कई लोगों को मालूम भी नहीं होता, मतलब
1: जी
0: ऐसी जगह किया है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन या पिछड़े इलाकों में किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में है, इसी तरीके से JNK में दो हैं, और बाकी पूरे कंट्री में इस तरीके से करे गए हैं, और खास तौर पे ऐसे क्षेत्रों में किया गया है एम्स को स्टैब्लिश, जहां से ज्यादा लोगों के पास टर्शरी केयर, जो सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा
1: जी
0: उपलब्ध हो, और इनमें कैंसर के इलाज के लिए बिल्कुल आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध हैं इन सारे में। ये सब नए इंस्टीट्यूशन है, उसके बावजूद कैंसर की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ अनुसंधान इस तरीके से किया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याएं हैं, और उसमें हमारे कुछ कैंसर स्थानीय तौर पे बहुत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो लेरिंजियल कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है, और सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज्यादा है। तो उन क्षेत्रों में उन पे विशेष तौर पर ध्यान देकर के उसकी स्क्रीनिंग है, उसके बचाव के लिए क्या तरीका किया जाए, उसके इलाज के लिए क्या किया जाए। और अब ये जो HPV वैक्सीन के बारे में आपने कहा, ये हमारी बच्चियों के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए है, और ये वैक्सीन इतनी सुरक्षित है, और वैक्सीन मिलने के बाद कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या महिलाओं के बच्चेदानी का मुंह का कैंसर प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। इनफैक्ट WHO की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है कि ये वैक्सीन के साथ साथ अगर हम स्क्रीनिंग और इलाज करते हैं तो अगले 15-20 साल में इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कैंसर की तरफ जो है बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। कुछ बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बाकी सरकार जिनको सहायता कर रही है, जैसे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है, इनके चारों तरफ पूरे देश में शाखाएं बनाई जा रही हैं, और कुल मिलाकर हर एक प्रदेश में कैंसर का एक रीजनल सेंटर बनाया गया है,
1: जी
0: जिससे कि लोगों को दूर दराज चल करके जाने की जरूरत ना पड़े और घर के पास ही ये सुविधाएं उपलब्ध हो।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर हम आज देखें, आज भारत डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है और जो स्वास्थ्य ID जैसी पहल है, वो आम नागरिक के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से सरल और प्रभावी बना रही है?
2: भारत का जो डिजिटल हेल्थ की तरक्की हुई है वो दुनिया में बिल्कुल अलग और शायद सबसे आगे की तरक्की की तरह मानना चाहिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया और उसके जो डिफरेंट स्वरूप हैं उसमें, एक है कि हमारे पास हर नागरिक का इवेंचुअली एक डिजिटल आइडेंटिटी होगा, उसको हम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कहते हैं, आभा। तो आपको हैरानी होगी, 87 करोड़ व्यक्तियों का, नागरिकों का आभा आइडेंटिटी आज हमारे पास अवेलेबल है। 87 करोड़, 145 करोड़ में से। इसका क्या फायदा है कि इस सिस्टम के द्वारा, इस आइडेंटिटी के द्वारा जो मेरे हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं वो उसके ऊपर लोड हो सकते हैं, वो पुराने नए अगले सब जुड़ सकते हैं, और जब किसी ने इसको देखना है और प्रस्तुत करना है और रिकॉर्ड की तरह भी है तो वो डॉक्टर साहब उसको देख के फैसला कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हमारे और से और लोड होते जाएंगे, ये एक इनोवेशन का भी जरिया बनेगा, और इसमें बहुत सेवा की ईज जो है, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ एक्सेसिंग हेल्थ, वो अचीव होगी। इसमें फिर जो टेली मेडिसिन में जो तरक्की हुई है, जैसे मैंने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टेली मेडिसिन हो गया है, हमारे पास ई संजीवनी एक टेली मेडिसिन है, रोज हजारों कंसल्टेशन उसके ऊपर होती हैं, हजारों, और उसमें इतने डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। उसके अलावा प्राइवेट स्पेस में टेली मेडिसिन हो रही है, इंस्टीट्यूशंस में एक रेवोल्यूशन आ गई है टेली मेडिसिन। उसके और डायमेंशंस भी हैं कि हॉस्पिटल की रजिस्ट्री बनेगी, हेल्थ प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्री बनेगी, वो सब काम हो रहा है। लेकिन जो डिजिटल हेल्थ है वो एक हिस्सा बन चुका है हमारे देश में, हेल्थ सिस्टम का, हम डिजिटल हेल्थ को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम्स को लागू करते हैं, हम बेनिफिशरीज को चिन्हित करते हैं, हम बेनिफिशरीज को फायदे के साथ जोड़ते हैं, उनको ट्रैक करते हैं. सो डिजिटल हेल्थ में जो इतना बदलाव आया है और जो उसकी वजह से हेल्थ की एक्सेस बढ़ी है, एक्यूरेसी बढ़ी है और जो इसका फ्यूचर पोटेंशियल है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है. और इसके आगे चलते हुए जब इस टेक्नोलॉजी को हम एआई के साथ लिंक करेंगे, इस टेक्नोलॉजी के और सॉल्यूशंस होंगे, तो मुझे लगता है कि भारत बिल्कुल अग्रणी देशों में होगा इस काम में.
1: डॉक्टर अरोड़ा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इशू. व्हाट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 इयर्स?
0: We have just seen last 2 days some of the recent data. One of the key issues which has been bothering all of us was stunting in children. And stunting has been traditionally recognized as the quality of health services. And during last, between NFHS 5 and 6, I think the stunting has decreased by 12 or 14 percent points. Now, this is remarkable because this is, jisko kehte hain, bilkul phasi hui cheez thi, jisko ठीक करने में बहुत ही मेहनत लग रहा था. और ये देश भर में पोषण कार्यक्रम शुरू हुआ, महिलाओं का एम्पावरमेंट, उनके पोषण पे विशेष ध्यान देना, उस दिशा में जो काम हुआ है. तो अब हमने देखा है कि बच्चों में जो स्टंटिंग, हमारे यहाँ लगभग 50% बच्चे अपनी पूरी ऊंचाई को प्राप्त और लंबाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो अब आ गए हैं 29% पे लगभग. लेकिन अभी काम करने की जरूरत है, वो है अनीमिया, खून की कमी है. अब वो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी किशोरी बिटिया लोग हैं और बाकी बच्चों में ये अनीमिया की समस्या ऐसी है. इसकी तरफ जो है अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम आरंभ किया गया है और उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन वो विकास में और मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि देश के डिफरेंट हिस्सों में अनीमिया के कारण अलग अलग हो सकते हैं और खाने में खासतौर पे उस चीजों का विशेष ध्यान रखना है. तो कुल मिलाकर के, और एक तीसरी चीज जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे रहा है कि एक समय था जब हमारे यहाँ केवल 27% महिलाएं अपना प्रसव जो है एक संस्था में करती, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, आज वो पढ़ करके लगभग 95% हो गया है. ये भी एक अभूतपूर्व उपलब्धि है और इसकी वजह से नवजात शिशुओं की मृत्यु, असमय मृत्यु से उसको कम किया गया है. और साथ ही साथ जो हमारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, मैटरनल मोर्टैलिटी, वो एकदम नीचे आ गई है. तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि जो हमारी माताएं हैं और बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य में जो प्रोत्तर विकास हुआ है, उस विकास में एक तेजी आई है, मृत्यु दर में कमी हुई है, चाहे वो माँ हो चाहे नवजात शिशु हो. और इसमें भी हम लोग पूरी कोशिश की जा रही है कि 2030 तक, उससे पहले ही जो हमारे SDG गोल्स हैं उनको हम प्राप्त कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन चीजों की उपलब्धि प्राप्त कर सके जिसमें ज्यादातर देश प्राप्त नहीं कर पाए हमारी तरफ.
1: बिल्कुल. अगर डॉक्टर पॉल आपसे बात करूं, कोरोना के टाइम की जब कभी याद आती है तो अब भी जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस समय जो भारत की रणनीति थी उसको पूरे विश्व में सराहा गया, दो इट वाज अ मेजर चैलेंज फॉर अस. सो व्हाट मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस द COVID-19 पेंडेमिक?
2: उसके बाद में हमने अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया. एक वन हेल्थ मिशन देश में लॉन्च किया गया. उसका तात्पर्य यह है कि जो महामारियां हम अभी देख रहे हैं पिछले दशकों में, और कोविड की महामारी को भी देखा और आगे देखते हैं, तो ये लगता है कि महामारी का जो ओरिजिन है, जो वायरस है, वो एनिमल किंगडम से आता है, बैट से, चमगादड़ से आता है, या बर्ड से आता है, चिकन से आता है. अब इन सब चीजों को समझते हुए क्लियर हो गया है कि हम एनिमल किंगडम से अलग नहीं है, हम वाइल्ड लाइफ के सिस्टम से अलग नहीं है, हम जो हमारा लाइफ स्टॉक है, घरेलू जानवर है, उनसे अलग नहीं है, हम एनवायरनमेंट, जंगल, इन सब से सभी जुड़े हुए. तो वन हेल्थ के अप्रोच के द्वारा इन सब सेक्टर्स को और इन सब डायमेंशंस को जोड़ के एक जो मिशन बनाया गया है उनके अंतर्गत जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है कि कहाँ पे क्या बीमारी हो रही है, पशु में भी क्या हो रही है, ह्यूमन में भी क्या हो रही है, उसको जीनोमिक लेवल तक जाके समझना और उसके बारे में देखना कि वो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसको कंटेन कैसे करना है। तो ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट का एक सिस्टम वन हेल्थ के

0: अंतर्गत बनाया गया है, हमारे सर्वेलेंस की पद्धतियों को स्ट्रॉन्ग किया गया है, हमारे जो इंडस्ट्री है और साइंस एकेडमिया का सिस्टम है उनको अलर्ट करके उनकी अप्रोच करा गया है कि जो वायरसेस महामारी का रूप दे सकते हैं या उनसे मिलते जुलते हैं उनके लिए अपनी रिसर्च को बढ़ाओ, उनके लिए तैयार रहो कि पहले से ही वैक्सीन की रिसर्च हमारी बहुत आगे तक हो ताकि अगर मुसीबत आती है तो हम जल्दी से जल्दी 100 दिन के भीतर वैक्सीन को पैदा करने की ताकत रखें। इसके अलावा जो रिस्पांस है ग्राउंड से, जो रिस्पांस है हमारा जो एक IDSP का सिस्टम है, 2 लाख से भी ज्यादा जगह से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, उसको सशक्त किया गया है। सिंड्रोमिक अप्रोच ICMR ने डिटेक्ट करने का सिस्टम को सशक्त किया गया है। वेस्ट वाटर सर्विलेंस भी करा जाए कि सुएज में क्या वायरसेस आ रहे हैं। काफी बड़े तौर पे इन सारे को पिछले लेसन्स को लेकर और आज की साइंस को जोड़ते हुए हमने अपनी व्यवस्थाओं को बहुत स्ट्रांग किया है और ये जो फ्यूचर के लिए हमारी बायो सिक्योरिटी है, फ्यूचर के लिए हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी है उसके लिए स्टेप जो है पूरे तरीके से लिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर बात करें आम आदमी को क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा, आवास मिल जाए और अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो और किफायती दाम पर जब आपको दवाएं मिलती हैं तो उससे बड़ी बहुत ही सुखद एहसास नहीं हो सकता एक आम आदमी के लिए। तो जन औषधि केंद्र ऐसे में कितने महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं?
0: जन औषधि केंद्रों के द्वारा हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन जो गुणवत्ता में पूरी उतरती है उनको उपलब्ध किया जाता है। देश में 19,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों का जाल बिछा हुआ है और बहुत तेजी से इसको 25,000 तक लगाने की प्लान है। इसमें हर रोज 10 लाख से ज्यादा व्यक्ति अपनी दवाइयां खरीदते हैं
1: जी।
0: किफायती दाम पे मिलती हैं। मार्केट में जो रेट होता है उससे आधी और कई दवाइयां तो सिर्फ 10% तक भी नीचे उनको उसका प्राइस से मिलता है, बहुत फायदा होता है। अगर हम देखें जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बचत भारत के नागरिक समाज को इस कार्यक्रम की वजह से उपलब्ध हुई है। और ये कार्यक्रम के द्वारा जो जन औषधि केंद्र हैं ये सब जगह सब प्रदेशों में सब जिलों में इसका डायमेंशन दिखाई देती है, इनकी प्रेजेंस दिखाई देती है। और दवाइयों के अलावा जो मेंस्ट्रुएशन के लिए पैड्स की भी उपलब्धि की गई है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, और जब से ये वाला कार्यक्रम शुरू हुआ है 105 करोड़ से ज्यादा सुविधा नैपकिन्स जो है मेंस्ट्रुअल नैपकिन दिए गए जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया है। तो ये दो काम कर रहा है, एक तो गुणवत्ता की दवाइयां मिल रही हैं, दूसरा व्यक्ति को बचत हो रही है और तीसरा इसकी वजह से एक्सेस बढ़ती है, व्यक्ति सेवाएं ले पाता है, इस्तेमाल करता है तो बीमारी रुकती है और उसका जो जो जायजा है वो हम रुपयों में नहीं ले सकते। इतना बड़े भले का ये कार्यक्रम है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, नए भारत की जो स्वास्थ्य क्रांति की यात्रा है केवल नीतियों और आंकड़ों की कहानी नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन की गवाही भी है। डॉक्टर पॉल और डॉक्टर अरोड़ा, आप दोनों का धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।
2: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और यूट्यूब चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants were Dr. V.K. Paul, former member Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, president, Ames Bilaspur. Moderator was Priyanka Arora. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.

अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर, विषय था स्वास्थ्य सेवा। 7:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
1: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
4: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
3: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस व भाजपा में जीत के दावों का दौर जारी। कांग्रेस ने इन चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल मानने से किया इनकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का दावा, जनाधार खो चुकी है राज्य सरकार, प्रदेश भर में कांग्रेस को मिली करारी हार। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर राज्य सरकार ने लघु व सीमांत किसानों के भूमि कब्जों को नियमित करने के लिए तैयार की नीति, मंत्रिमंडल की बैठक में होगी चर्चा। प्रदेश में हरित पंचायतों की आय का 25% हिस्सा अनाथ व विधवाओं के कल्याण पर खर्च करेगी सरकार। और बेनतीजा रही नगर निगम शिमला की वार्षिक आम बैठक, चर्चा के बाद आगामी रणनीति तय करेंगे सहब सोसाइटी के कर्मचारी। अब समाचार विस्तार से। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश में 8 में से सिर्फ 4 नगर निगमों में चुनाव हुए हैं और इन्हें विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल कहना गलत है। उन्होंने आज शिमला में कहा कि प्रदेश में लगभग 2400 पंचायतों में कांग्रेस समर्थित प्रधान जीते हैं, लेकिन पंचायत की असली ताकत वार्ड मेंबर की होती है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधान, उप प्रधान और सभी वार्ड मेंबर का एकजुट होना जरूरी है। उन्होंने इन चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल मानने से इनकार किया।
6: पहली बात तो यह है कि ये जो पंचायती राज चुनाव जो हुए हैं, ये कोई हमारे पार्टी सिंबल पे नहीं हुए, ये जो है एक ओपन जो है चुनाव थे। ये ठीक है कि कॉर्पोरेशन के चुनाव पार्टी चुनाव चिन्ह पे हुए, 4 के चुनाव हुए और उसमें 3 पे इनकी जो है पार्टी के लोग है जीते हैं, 1 में हमारे भी जीते हैं। तो ये तो जो है किस्म से ना तो सेमीफाइनल था ना क्वार्टर फाइनल था।
5: पंजाब में हिमाचल की गाड़ियों से खालसा टैक्स वसूलने के सवाल पर राजस्व मंत्री ने कहा कि इस तरह की अवैध वसूली पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसे लेकर पंजाब सरकार के साथ बातचीत की है और इस मामले को उचित स्तर पर उठाया जा रहा है।
6: ये एक सोची समझी साजिश के तहत है। ये हर प्रदेश सरकार का अपना एक अधिकार क्षेत्र है कि आप किस किस्म के टैक्स लगाएंगे, वो तो पंजाब सरकार को देखना कि ये बिल्कुल गलत है। इस किस्म की मुझे वो है, कोई भी अगर कोई काम करता है वो कानूनन बिल्कुल गलत है, तर्कसंगत नहीं है, हम उसका जो आलोचना करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री ने बात भी की है, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी।
5: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावी नतीजों से ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस सरकार अपना जनाधार खो चुकी है और सरकार की नीतियों से लोग तंग आ गए हैं। उन्होंने आज कुल्लू में प्रदेश

0: ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
1: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, 8 बजे हैं। अब आप सुनेंगे वनों के महत्व पर विषय पर डॉक्टर संजय सूद, वन प्रमुख वन विभाग हिमाचल प्रदेश से भेंट वार्ता। इसे हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से लेकर
3: स्वागत है। समूचा हिमालय क्षेत्र देश को ऑक्सीजन देने और पर्यावरण संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए कहा भी जाता है कि वनों से वायु और वायु से आयु का सीधा संबंध है। वन यानी जंगल हमारे जीवन के आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सरोकारों का हिस्सा है। आज हम बात करेंगे वनों के महत्व पर। हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर संजय सूद जी। आप वन प्रमुख वन विभाग हिमाचल प्रदेश हैं। डॉक्टर संजय सूद, आकाशवाणी स्टूडियो में आपका स्वागत है।
4: धन्यवाद
3: डॉक्टर संजय सूद। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि हिमाचल के संदर्भ में वनों का क्या महत्व है और इसके संरक्षण और प्रबंधन में वन विभाग द्वारा क्या गतिविधियां की जा रही हैं।
4: सप्ता जी, सर्वप्रथम आप सभी को और श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात की है कि हिमाचल के वनों का क्या महत्व है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हिमाचल के वनों का एक असीम महत्व है, पूरे प्रदेश की दृष्टि से देखा जाए या पूरे देश की दृष्टि से देखा जाए। भौगोलिक तौर पे अगर आप देखें तो जितना हमारा भौगोलिक क्षेत्र है हिमाचल का, वो लगभग 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है। उसमें से कानूनी तौर पर करीब 2/3 से अधिक, लगभग 68% जो हमारी भूमि है वो वन भूमि के अधीन आती है। लेकिन अगर आप हरित आवरण की बात करें जिसमें वहाँ के वृक्ष, अच्छे वृक्ष हैं, तो वो करीब करीब 28% जो हमारा क्षेत्र जो है वो वनों से आच्छादित है। और अगर इसमें एक ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट होता है उसको भी जोड़ दिया जाए तो ये जो आंकड़ा है ये लगभग 29.5% का बन जाता है। तो वनों से हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे प्रत्यक्ष उससे लाभ हमारे को मिलते हैं। हम हिमाचल के लगभग 90% लोग जो हैं वो वनों पर निर्भर है, उनकी निर्भरता रहती है। उसमें उनको चारा मिलता है, पशुओं के लिए जो है, और फिर इमारती लकड़ी उसमें से आती है, हमारा बालन उसके अंदर से आता है, जड़ी बूटियां हमें वनों से प्राप्त होती है। ये सब तो प्रत्यक्ष है, लेकिन अगर आप इसके अप्रत्यक्ष लाभ जिसकी आपने बात की हुई, वायु की आपने बात की, तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ये जो है। एक वृक्ष, मैं आपको कहना चाहूंगा कि एक वर्ष में लगभग 2,73,000 किलो ऑक्सीजन देता है, 50 वर्ष का कोई वृक्ष होता है। और ये आंकड़ा इतना है कि इससे 2 लोगों को जीवन वायु प्रदान होती है।
3: जी बिल्कुल,
4: जितना व्यक्ति एक अपनी सांस लेने में काम आता है उसको लगभग 1,30,000 किलो चाहिए, तो एक वृक्ष 50 वर्ष का 2,73,000 किलो ऑक्सीजन प्रति वर्ष देता है। इसी तरह से जो हमारा जल चक्र है उसको संतुलित करने में वनों का बहुत बड़ा महत्व है। तो देखिए, हमारा जब मत्स्य पुराण की हम बात करते हैं उसमें लिखा हुआ है, दशा कूपो समा वापी, दशा वापी समा हृदा, दशा हृदा समो पुत्र, दशा पुत्रो समाद्रुमा। मतलब आप 10 जो कुएं बनाने की जगह एक बौड़ी बनाइए, 10 बौड़ियां बनाने की जगह एक तालाब बनाइए, और 10 तालाब भी जितना आपको अपना पानी इकट्ठा करके नहीं दे सकते, उतना अकेला एक वृक्ष वो अपने जमीन से उसको सोख कर अपने जल चक्र में प्रभावित करता है। तो एक बहुत बड़ा योगदान उसमें रहता है। प्रदूषण नियंत्रण जो है वो वनों से होता है, तभी जो अच्छे वन है वहाँ प्रदूषण कम होगा। इसी तरह से आप देख लो तो जो हमारे पशु पक्षियों की प्रजातियां बहुत सारी, वो सब वनों पर निर्भर करती हैं। एक वृक्ष के ऊपर कम से कम 250 प्रजातियां पशु पक्षियों की, कीट पतंगों की वो निर्भर रहती हैं। तो बहुत बड़ा योगदान है। इस सब का मूल्यांकन किया जाए तो करीब वर्ष 2000 में इसमें एक साइंटिफिक शोध हुआ और ये पता लगाया गया कि एक वृक्ष की कीमत लगभग 1,25,00,000 रुपये बनती है। अब तो ये आंकड़ा लगभग दुगना हो चुका होगा इस बारे में। तो एक इतना बड़ा महत्व वनों का है, और हिमाचल की वनों की जहाँ की आप बात करें, ये सब तो हमें देते ही देते हैं, पर मैं समझता हूँ कि हिमाचल के वन ना केवल हिमाचल के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो पूरे हमारा जो मैदानी क्षेत्र है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है
3: जी।
4: क्योंकि जितने भी हमारी मुख्य नदियाँ हैं हिमाचल की, रावी,

0: है, ब्यास है, सतलुज है, ये सब हिमाचल के वनों से होकर निकलती हैं। और इससे अगर ये वन नहीं होंगे हमारे तो बहुत सारा भूमि कटाव होगा, जिससे हमारा मैदानी क्षेत्रों में जो हमारे अन्न का उत्पादन है वो बहुत अधिक तरह से प्रभावित होगा। तो इसलिए बहुत आवश्यकता है हिमाचल के वनों की।
1: डॉक्टर संजय सूद, जैसे कि आपने कहा कि वन हमें प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से हमारी सहायता करते हैं, पर्यावरण संतुलन में वनों का विशेष महत्व है और वृक्षों का भी विशेष महत्व है, तो स्वच्छ पर्यावरण के लिए हमें वृक्षों को किस तरह बढ़ाना है, किस तरह से उन्हें लगाते जाना है? कहते हैं एक अगर पेड़ आप लगाते हैं तो पर्यावरण और शुद्ध होता जाता है।
0: बिल्कुल ठीक कहा कि ये तभी संभव है। पर्यावरण को शुद्ध रखना ये अकेला एक विभाग का दायित्व नहीं है, पूरे समाज का दायित्व है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो इसमें तभी हम आगे बढ़ पाएंगे अगर हमारे समाज के लोग आकर जुड़े। बहुत सारी योजनाएं इस बारे में हमारी जो सरकार चला रही है इसमें, जिसमें कि लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित किया गया है
1: जी।
0: और उन योजनाओं के माध्यम से हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमारे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं उसके अंदर जो है। तो सभी लोग अगर वृक्ष लगाएं, कम से कम 5 वृक्ष लगाएं, उनका जो है संरक्षण करें, तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा योगदान समाज के प्रति।
1: बिल्कुल, जैसे कि आपने संरक्षण की बात की तो वनों के संरक्षण में जो स्थानीय लोग हैं उनकी अहम भूमिका रहती है, तो इस उद्देश्य से जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए वन विभाग द्वारा क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं? राजीव गांधी संवर्धन योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
0: देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि लगभग जो हमारा जो वन आच्छादित क्षेत्र है, जो हरित जो हमारा क्षेत्र है, वो लगभग इस समय 28% का है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो इसको हमारा जो लक्ष्य है, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी बजट स्पीच में कहा कि हमारा मिशन 32, वो इसको जो है बढ़ाकर 32% करना चाह रहे हैं हम लोग, और ये आने वाले 4 या 5 वर्षों में हमने ये पूरा करना है,
1: यानी 2030
0: से 2031 तक। तो ये कठिन कार्य है, लेकिन लोगों की सहभागिता से निश्चय ही हम ये पूरा कर सकते हैं।
1: जी,
0: तो आपने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की बात की, बहुत अनूठी और बहुत बढ़िया योजना हमारी सरकार ने इस बार में चलाई हुई है। पिछले साल इसको शुरू किया गया, पूरे प्रदेश में लगभग 1100 हेक्टेयर पे हमने बहुत सारे महिला मंडल, 300 महिला मंडल से अधिक, इसी तरह से युवक मंडल और अन्य स्वयं सहायता समूह जो है उनके माध्यम से प्लांटिंग करी। पर प्रति हेक्टेयर जो है प्लांटिंग का खर्चा लगभग 1,20,000 रुपये आया, तो लोगों द्वारा ही सब कार्य किया गया। और इसमें ये सबसे अनूठी बात यह है कि अगर जीवित प्रतिशतता अगर आने वाले समय में अच्छी रहती है तो लोगों को इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे, और 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के लिए बहुत बड़ी बात है लोगों को वनों से जोड़ने के लिए। ऐसी योजनाएं हम चला रहे हैं तो इससे बड़ा फायदा हो रहा है। इसी तरह से एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, एक है मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना, वो भी हमारे प्रदेश में चल रही है। तो जो हमारे सूखे क्षेत्र हैं, पथरीले क्षेत्र हैं और ऐसे जिसमें सॉइल इरोजन ज्यादा है, उन क्षेत्रों को हम पकड़ रहे हैं। उनमें काम करना थोड़ा कठिन है, लेकिन इंटेंसिव इनपुट्स के साथ में हमारे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। पिछले साल हमने करीब 100 हेक्टेयर एरिया पकड़ा था, हमारे को अच्छे रिजल्ट्स उसमें मिले हैं। तो अगर ऐसी भूमि को हम वृक्षों से आच्छादित करने में सक्षम हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ हम भी लक्ष्य पूरा कर पाएंगे,
1: यानी चारों तरफ हरियाली ही।
0: जी, ये होना तो यही चाहिए। बिल्कुल
1: सूजी, जैसे आपने कहा कि हमारे प्रदेश में 28% हिस्सा वनों से घिरा हुआ है, तो इसके आवरण को बचाने और इसको बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
0: इसके बचाने के लिए तो हमारे पास लगभग पूरे स्टेट में 2,059 फॉरेस्ट बीट्स हैं, तो उसमें हमारे फॉरेस्ट गार्ड रहते हैं। हमें यहाँ पर वन मित्रों को भी अभी सरकार ने नियुक्त किया है।
1: वन मित्र की आपने बात की, तो इनका क्या कार्य रहता है?
0: इनका देखिए, ये जो वन मित्र थे ये लोकल लोग हैं, वहीं के मेरिट के आधार पर उनको सिलेक्शन किया गया है। तो ये जो हमारा फॉरेस्ट का जो हमारा लाइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ये लोगों की मदद करते हैं, हमारे लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि स्थानीय लोग हैं, इनको पूरी जानकारी वहां की रहती है। स्थानीय लोगों को कैसे वानिकी योजनाओं से जोड़ना है, कैसे वनों की प्रोटेक्शन करनी है, कैसे उनकी देखभाल करनी है, उसमें ये सहयोग कर रहे हैं। तो एक तो ये हमारी इस तरह की चीज है। हमारे पास जो मैंने बताया आपको 2,059 फॉरेस्ट बीट्स हैं, उसमें हमने अपने गार्ड्स को नियुक्त कर रखा है, उसके ऊपर डिप्टी रेंजर्स हैं, हमारे रेंज ऑफिसर्स, एक पूरी एक लाइन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एक पूरा सिस्टम है जो कार्य करता है। तो कहीं भी कोई वनों को नुकसान आदि की कोई समस्या रहती है या ऐसी कोई शिकायत रहती है तो हम मिलजुल कर इसके प्रयास करते हैं कि वैसा ना हो, तो वनों का संरक्षण एक सुचारू तरीके से,
1: यानी वनों का संरक्षण और विस्तार जो है होता रहे। ये विस्तार को लेकर और संरक्षण को लेकर भी आपके समक्ष चुनौतियां आती,
0: बिल्कुल आती है। अभी मैंने कहा कि चुनौतियां बहुत सारी हैं। अब मैंने आपको कहा कि देखिए क्षेत्र तो लिमिटेड है, अब उसको हमने बढ़ाना है।
1: बिल्कुल।
0: तो अब जो हमारे पास बचे एरियाज हैं वो एक तो पथरीले एरियाज हैं, सूखे एरियाज हैं, उसमें जो है सॉइल इरोजन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, एक तो ये बात है। ऊपर से हमारी जो वन अग्नि है ये भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए समस्या है। तो इन समस्याओं के बीच भी हमने आवरण को बढ़ाने में सहयोग करना है, लोगों को भी साथ लेके चलना है, तो वो हमारे लिए एक चुनौती तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम इस चुनौती को अच्छी तरह से पार कर पाएंगे।
1: डॉक्टर संजीव सूद, जैसे कि हम वनों के संरक्षण विस्तार की बात कर रहे हैं और वृक्षों की भी बात कर रहे हैं कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, तो बात करते हैं कि हर एक वर्ष गर्मी का जब मौसम आता है वनों में आग लगने की समस्याएं जो है घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे वनों को नुकसान पहुंचता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि वनों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है और क्यों ये आग लगती है हर वर्ष?
0: देखिए, आपने बड़ा एक प्रासंगिक प्रश्न मुझसे पूछा है। देखिए, जैसे अब गर्मी आती है, टेम्परेचर्स बढ़ते हैं, जब तापमान बढ़ता है तो नमी भी कम हो जाती है, और जब नमी कम होती है तो बहुत सारे सूखे पत्ते, चिलारू इत्यादि वनों में फैल जाते हैं, उनकी बहुत तादाद बढ़ जाती है, उस कारण से ये ज्वलनशील हो जाता है, तो वनों में आग लगना एक स्वाभाविक प्रक्रिया सी बन जाती है। लेकिन ये हम कोशिश कर रहे हैं कि इन आग की घटनाओं में काबू पाया जा सके, उसके लिए भी बहुत अच्छा हमने जो हमारा एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर इस वर्ष की बात करें तो कुछ देखिए, कुछ दिनों के टेम्परेचर बढ़ा तो 337 घटनाएं हुई, तो उसमें थोड़ा नुकसान भी हुआ हमारा, करीब 1300 हेक्टेयर जो एरिया है वो पूरा इम्पैक्ट हुआ उसके अंदर, और उसमें 300-400 हेक्टेयर की प्लांटेशंस भी हमारी इम्पैक्ट हुई थी उसके अंदर, करीब करीब 1,19,00,000 रुपए का नुकसान भी हुआ, जो प्रारंभिक है। कुछ समय के बाद जब बारिश होती है तो ये नुकसान फिर कम हो जाता है, कि कुछ पौधे दोबारा से जीवित हो उठते हैं उस समय में। अब इनको इन घटनाओं पे काबू पाने के लिए मैं दो तीन पहले तो कहना चाहूँ, ये क्यों होती है वनों में आग की घटना? एक तो इंसानी गलती से हो जाती है, कोई बीड़ी सिगरेट जलाता हुआ छोड़ देता है, उससे हो जाता है। कभी लोग शहद आदि इकट्ठा करने के लिए जंगलों में जाते हैं, वहाँ कुछ जली हुई चीज वहाँ छोड़ देते हैं, धुआं इत्यादि देने के लिए लगाते हैं, जो उस कारण से ये आग ज़रा फैल जाती है। दूसरी, कभी कभी शरारती तत्व भी इस विषय में काफी, उनका भी बड़ा सारा योगदान रहता है, वो भी कभी कभी ऐसा काम कर देते हैं, उसे हमें रोकना है, मेन चीज़ तो ये है। और तीसरा, प्राकृतिक कारण भी हो सकता है, कभी कोई बिजली गिर जाती है जंगलों के ऊपर, या कोई पत्थरों में घर्षण हो जाता है, उससे भी आग की संभावना हो सकती है। तो तीनों चीजें देखी गई हैं, लेकिन जो रोकने की बात है कि शरारती तत्व जो हैं उनको इस विषय में रोका जाए, तो इसमें कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं। अगर कोई जंगलों में आग लगाता है तो उसको मतलब 2 साल की सजा तक हो सकती है, 5,000 रुपये जुर्माना तक हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: और उनके जो लोगों के जो आग लगाते हैं उनको अगर पकड़े जाएं तो उनके हकूक जो होते हैं, जैसे TD इत्यादि है, वो भी अगले कुछ वर्षों के लिए बंद की जा सकती है। तो इस तरह के प्रावधान हैं, कोशिश भी की जा रही है। और फिर हमने कुछ वॉलंटियर्स हैं, करीब 90,000 वॉलंटियर्स हैं पूरे स्टेट में, जब आग लगती है उस समय आग बुझाने में हमारा सहयोग करते हैं, उनके मोबाइल नंबर्स वगैरह सब डिटेल्स हमारे पास हैं, तो जहाँ भी आग लगती है उनको सूचना दी जाती है और वो काफ़ी हद तक हमारा साथ भी देते हैं। इसी तरह से एक कंट्रोल रूम हमने पूरे स्टेट में बनाया, जो कि पूरा दिन चलता है 24/7, वो बिलासपुर में लोकेटेड है, उसका नंबर है 1-800-180-1916। तो आपकी कोई भी सूचना या जानकारी उस कंट्रोल रूम पे दी जा सकती है, और फिर उसके आगे जो है फिर कार्रवाई उस कंट्रोल रूम से बाकी के जो हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको दी जाती है।
1: स्थानीय लोगों में जन जागरूकता और जन सहयोग की भूमिका अपेक्षित है।
0: बिल्कुल अपेक्षित है। जो वन है वो हम सबकी धरोहर है, किसी विभाग के नहीं है, वन तो हम सबके हैं, और हिमाचल इसीलिए भी सुंदर माना जाता है कि उसमें वन अच्छे हैं।
1: जी।
0: तो जब तक लोग, स्थानीय लोग हैं, उनके संरक्षण में आगे नहीं आएंगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा इस चीज को काबू पाना जो है।
1: हमारे प्रदेश की सुंदरता हरियाली है।
0: जी जी जी।
1: तो स्वच्छ पर्यावरण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, स्वच्छ पर्यावरण में देखिए प्रकृति के 5 तत्व हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: उसमें सबसे पहले भूमि आता है, फिर वायु आता है, फिर आकाश आता है, फिर अग्नि आता है, और फिर नीर आता है। इसका अगर पहला शब्द आप सब जोड़ दें तो भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से आपकी अग्नि, और न से नीर, तो ये भगवान इससे बनता है। तो मैं समझता हूँ कि इन 5 तत्वों को जो सबसे बड़ा सामंजस्य जो बना के रखता है, जो इकाई पूरी एक सृष्टि में वन है, तो सामंजस्य इसी में देखा जाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा कि प्रकृति और वृक्षों में ही देवता निवास करते हैं, हम देव भूमि में रहते हैं।
0: बिल्कुल, देव भूमि में रहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं, चाहे आप सकंद पुराण में देखें, चाहे यजुर्वेद में देखें, उसमें वृक्ष को कितनी बड़ी महत्वता दी गई है, जिसमें कहा गया है, मूलम ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा रुद्र महेश्वरा पातले पातले देवानाम वृक्ष राजनमस्तुते, जिसके मूल में ब्रह्मा का निवास है, तने में भगवान विष्णु का निवास है, और शाखाओं में भगवान शंकर का निवास है, पत्ते पत्ते पर देवता निवास करते हैं, हे वृक्ष हम आपको नमस्कार करते हैं। इसीलिए क्योंकि वो वृक्षों से ही तो सब कुछ है हमारे जीवन में जो है। अगर वृक्ष अच्छे नहीं होंगे तो शायद ये जीवन एक तरह का सार्थक नहीं रह जाएगा हम लोग पूरे प्रदेश।
1: बहुत बढ़िया बात कही, हम सबको मिलकर अपने वनों को बचाना है, वृक्षों को लगाना है, तभी हम अपने पर्यावरण की सही देखभाल कर
0: पाएंगे। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये तो हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, पर्यावरण दिवस कल है, कल हम एक नया कार्यक्रम जिसमें चिनार के वृक्ष हम पूरे शिमला के आसपास लगाने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जो हिमाचल के हैं वो उसका शुभारंभ करेंगे, आगे भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह से बुरांश के वृक्ष हम आगे लगाने जा रहे हैं और बहुत सारी प्रजातियां जो शिमला के आसपास होती हैं लगाई जाएंगी। ये जो चक्र है ये इसी तरह की हमें पूरे प्रदेश में इस तरह की बात करेंगे। तो मेरा सिर्फ लोगों से अपेक्षा रहेगी कि कम से कम 5 वृक्षों को लगाइए, उनका संरक्षण कीजिए। आप प्रकृति को इतना बड़ा योगदान कर देंगे जो अन्यथा आप कर नहीं सकते, किसी भी तरह से नहीं कर पाते वो जो है,
1: क्योंकि जब तक प्रकृति है तभी तक हम हैं।
0: बिल्कुल
1: जी, हमारी पहचान भी प्रकृति से ही है। डॉक्टर संजय सूद, बात आती है कि टीडी है क्या, इसकी वर्तमान स्थिति

0: क्या है और टीडी प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया है
1: जी
0: वो क्या है।
1: देखिए, टीडी एक तरह का हक हकूक है लोगों का जो जंगलों के आसपास रहते हैं। तो देखिए उसमें ये प्रक्रिया ये है कि अगर आपको टीडी की आवश्यकता है तो आपको एक बार जो है 7 क्यूबिक मीटर टीडी दी जाती है शुरू में मकान बनाने के लिए, और फिर 5 वर्ष बाद अगर आप चाहें तो आपका मकान के रिपेयर्स के लिए भी 5 क्यूबिक मीटर टीडी दी जाती है, पर बशर्ते कि उसके लिए पेड़ उपलब्ध हों।
0: जी बिल्कुल
1: और अब तो क्योंकि ग्रीन पेड़ों पे सभी तरह से बैन है तो पेड़ उपलब्ध होने चाहिए, तो सूखे होने चाहिए, गिरे पड़े पेड़ होना चाहिए, तो ये लिमिटेड है। ये नहीं कि ये एक अनलिमिटेड अधिकार, ऐसा नहीं है, क्योंकि तो किसी ने टीडी अप्लाई की तो उसको देनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है। वो सिल्वीकल्चरल अवेलेबिलिटी, जिसको हम एक शब्द बोलते हैं फॉरेस्ट्री में, कि अगर वो पेड़ उपलब्ध होगा तो दी जाएगी, और प्राथमिकता उसको दी जाएगी जिसको सबसे अधिक आवश्यकता हो। और
0: जी
1: एक अधिकार है तो एक जिम्मेवारी भी है,
0: जी
1: और उन्हीं लोगों को ये अधिकार दिया जा सकता है जो वनों के संरक्षण में, आग बुझाने में और अन्य चीजों में वन विभाग का सहयोग करें।
0: जी
1: तो इस
0: बिल्कुल
1: तरह की बात है। तो टीडी एक अच्छी चीज है, जो लोगों को जो इतने ज्यादा सानिध्य नहीं, उनको नहीं है जिनके जीवन में, उनको टीडी दी जाती है, पर एक नियम के अनुसार दी जाती है। उसके लिए उनको एक अप्लाई करना तो पड़ता है फॉरेस्ट गार्ड के थ्रू, फिर रेंज ऑफिसर उसको चेक करता है, फिर डीएफओ का अधिकार है टीडी देने का, जो कि पूरी चीजों को ध्यान में रखते हुए टीडी को स्वीकृत करता है,
0: बहुत सही बात कि जो अच्छा काम करेगा उसी
1: उसी को
0: को
1: दे
0: इनाम प्राप्त
1: प्राप्त। जी
0: होगा।
1: जी बिल्कुल
0: सूजी वर्तमान सरकार इको टूरिज्म को अधिक बढ़ावा दे
1: जी
0: रही
1: जी
0: है,
1: जी
0: तो हिमाचल प्रदेश में इको टूरिज्म को लेकर क्या संभावनाएं हैं?
1: देखिए आपने बहुत एक प्रासंगिक प्रश्न पूछा। इको टूरिज्म मतलब प्रकृति से जुड़ा हुआ टूरिज्म, इसकी अपार संभावना हिमाचल प्रदेश में है। अभी पिछले साल हमने कुछ स्टडी करी और 136 साइट्स पूरे हिमाचल में निकाली जहां पर कि इको टूरिज्म की संभावना है। इससे दो तीन फायदे होंगे, एक तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा,
0: बिल्कुल
1: और जो हमारे बहुत सारे जहाँ ऐसे क्षेत्र हैं, शिमला है आपका, मनाली है, कुल्लू है, जहाँ पर टूरिज्म बहुत ज़्यादा लोग आने लगे हैं, तो उसको भी कम करने में सहायता मिलेगी हमको, क्योंकि लोग और दूसरे डेस्टिनेशन पर भी जाएंगे। और एक तो प्रकृति को इससे बढ़ावा मिलता है, साथ ही साथ इसमें स्थानीय लोगों की रोजगार भी, की आय के साधन भी बढ़ते हैं, उनको भी आय के साधन बढ़ते हैं, ताकि ताकि फिर वो अपना स्वरोजगार की तरफ जा पाएं और फिर अपनी जीवन यापन जो है अच्छी तरह से कर पाएं। तो
0: जी
1: संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। एक इसी तरह से पीपीपी मोड में पिछले 2 सालों में हमने 17 साइट्स लोगों को दी हैं, जिसको डेवलप किया जा रहा है पूरे जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो हमारी एक्ट्स रूल्स हैं उसके हिसाब से, और 50 साइट्स अभी हम और अगले कुछ ही दिनों में आवंटित करने जा रहे हैं। एक प्रॉपर प्रक्रिया है, इसमें एक कॉम्पिटिटिव टेंडरिंग प्रोसेस होता है, फिर उसमें से देखा जाता है कि कौन व्यक्ति सबसे ज्यादा सक्षम है इस साइट को चलाने के लिए, उसको साइट दी जाती है, और पहले 10 साल की दी जाती है, और फिर अगर उसका कार्य अच्छा रहता है तो उसको अगले 5 साल के लिए और बढ़ाया जाता है। तो
0: जी
1: 15 वर्ष के लिए वो साइट्स, 1 हेक्टेयर की साइट्स लोगों को दी जाएंगी, ताकि वो इको टूरिज्म की व्यवस्था वहां कर सकें, टूरिज्म को बढ़ावा दे सकें, और स्थानीय लोगों को भी उससे आय जो आज साधन उससे अधिक हो पाए।
0: इको टूरिज्म के लिए प्रदेश में क्या कोई विशेष स्थान चिन्हित किए गए हैं और इस योजना से कैसे लाभ उठाया जा सकता है, कैसे लोग संपर्क कर सकते हैं?
1: देखिए मैंने आपको कहा कि हमने पिछले वर्ष स्टडी किया था, तो 136 स्थान हमने इसमें पूरा चिन्हित किए हैं, 136 साइट्स को चिन्हित किया था, क्योंकि यहाँ संभावनाएं अधिक हैं, और ये रोड कनेक्टिविटी भी अच्छी है, वाटर अवेलेबिलिटी वहां पर है, और साथ ही साथ बिजली इत्यादि भी है, तो ये साइट्स हमने चिन्हित की हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इस योजना का फायदा उठाना चाहता है तो हमारे जो इको टूरिज्म कार्यालय है उससे संपर्क कर सकते हैं वो लोग, और फिर जितनी भी हम साइट्स आवंटित करते हैं वो उसके लिए एक प्रॉपर टेंडरिंग प्रोसेस होता है, पहले प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट होगा, फिर उसके बाद में टेंडर होगा, तो उस टेंडरिंग प्रोसेस में कोई भाग ले सके, और उसमें अगर वो सबसे आगे है तो उसको दी जाती है वो साइट जो है, तो एक
0: जी
1: कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के तहत किया जाता है
0: संजीव
1: ये।
0: सूजी, कल 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा
1: जी
0: रहा
1: जी जी
0: है, इस अवसर के लिए आपका क्या संदेश
1: देखिए
0: रहेगा?
1: मैंने आपको कहा कि जो जीवन को शब्द को अगर संधि विच्छेद करो तो
0: कहने
1: जीव जमा वन, जब जीव में वन का संधि हो जाती तभी जीवन बनता है, तो अगर पर्यावरण को बचाना है तो आपको फिर वनों को बचाना ही पड़ेगा। वन नहीं है तो हमारी फिर हमारी जीवन भी काफी फिर लिमिटेड हो जाता है। तो मेरा संदेश सिर्फ इतना ही रहेगा कि हर व्यक्ति जो वानिकी कार्यक्रमों में वन विभाग का साथ दे, कम से कम 5 वृक्ष हर साल लगाए, और ना केवल लगाए उसका संरक्षण भी साथ साथ करे, बच्चों की तरह उसको पाले, बच्चों की तरह उसको पालेंगे तो वो भी आपको फिर बाद में आने वाले समय में आपको पालेगा। तो ये एक
0: जी
1: तरह का संदेश है कि आप उसको जैसा आप मान सम्मान वृक्षों को देंगे वैसा ही आपका जीवन
0: वापस
1: आगे
0: मिलेगा,
1: निकलेगा, आपको वहां से
0: वापस
1: वापस मिलेगा। तो उसमें
0: मिलेगा।
1: आगे आप साथ आए और हम साथ मिलकर चलें, तभी हिमाचल एक सुंदर, स्वच्छ और समृद्ध हिमाचल आगे बनेगा, यही मेरी कामना है, और इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वन विभाग आगे बढ़ रहा है और सभी हिमाचल वासियों से इसी सहयोग की अपेक्षा रखता है।
0: डॉक्टर संजय सूद, आज हमने वनों के महत्व विषय पर आपसे जानकारी हासिल की, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे वनों का महत्व विषय पर डॉक्टर संजय सूद, वन प्रमुख वन विभाग हिमाचल प्रदेश से भेंट।

0: था। भेंट करता थी सपना ठाकुर।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 8:22 हुए हैं। अब से लेकर 8:45 तक आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, और इस दौरान 8:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या अंक और रात्रि 9 बजे न्यूज़ 8:00। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए कृष्णा के संगीत निर्देशन में राजशेखर का लिखा गीत, आवाजें मोहित चौहान और उज्जैनी की फिल्म का नाम तनु वेड्स मनु।

इंग्लिश बिंग्लिश, अब सुनिए इस फिल्म का गीत सुनिधि चौहान और स्वानंद किरकिरे की आवाजों में। बोल लिखे हैं स्वानंद किरकिरे ने और संगीत से सजाया है अमित त्रिवेदी ने।

अब सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम की अंतिम पेशकश। इस गीत को संयुक्त रूप से लिखा है कैसर उल जाफरी और संदीप श्रीवास्तव ने। संगीत प्रीतम का, बोल पापोन के। फिल्म का नाम मेट्रो इन दिनों।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: The discussions also
2: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: Can enter the Venezuelan market successfully.
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
3: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ इंजन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
4: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
0: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
3: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
8: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में

विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरल में दस्तक।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:15 हुए हैं। अब से लेकर रात्रि 10 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

लता मंगेशकर के बाद आइए सुनते हैं आशा भोसले को फिल्म अनामिका में। रचनाकार है मजरू सुल्तानपुरी, तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

आशा भोसले का ही गाया एक और गीत सुनते हैं अली बाबा 40 चोर से। धुन बनाई है आर डी बर्मन ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली। जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नूतन समर्थ बहल, जी हां नूतन। इनका जन्म शोभना समर्थ और कुमार सेन समर्थ के घर सन 1936 के 4 जून को हुआ। चार भाई बहनों में नूतन सबसे बड़ी थी। पिता कुमार सेन समर्थ जाने माने कवि और निर्देशक थे तो माता शोभना समर्थ अपने जमाने की मानी हुई अभिनेत्री थी। पौराणिक फिल्मों में उनके द्वारा अभिनीत सीता के किरदार को इतना सराहा गया था कि शोभना समर्थ और सीता ये जैसे एक समीकरण ही बन गया था। आज हम बात कर रहे हैं इनकी सुपुत्री नूतन की। नूतन को अभिनय कला, संस्कृति के संस्कार धरोहर ही में मिले थे, लिहाजा उनकी माताजी ने 1950 में नूतन को ब्रेक देने के इरादे से फिल्म हमारी बेटी का निर्माण किया। तब नूतन की उम्र महज 14 साल की थी। उल्लेखनीय बात यह है कि नूतन इस छोटी सी उम्र में मिस इंडिया खिताब की विजेता रही थी। 1953 में उन्हें बड़ा ब्रेक मिला शम्मी कपूर अभिनीत फिल्म लैला मजनू में। सरदार मलिक साहब का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय बन पड़ा था इस फिल्म का।

उनकी बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी को जैसे कॉम्प्लीमेंट करती थी। यही उनके खूबसूरत अदाकारी की खूबी थी। किसी भी चरित्र की गहराई में घुसकर उस चरित्र को जीवंत करने के लिए अधरों का कंपन, उनके भाल पर उभरती रेखाएं, आंखों की सूक्ष्म हलचल, इन बातों से वो पात्र को बिल्कुल जीवंत बना देती थी। यही वजह है कि सन 1955 में अमिया चक्रवर्ती द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म सीमा के लिए उनका चुनाव हुआ। इस फिल्म में उनकी भूमिका को इतना सराहा गया कि इस साल के फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया।

दोस्तों, फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 5 बार जीतने वाली अपने जमाने की वो पहली अभिनेत्री थी। बात सन 1959 की है। सामाजिक विषमता की विभिषिका को बिंब बनाकर फिल्मों के साथ साथ सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले सुलझे हुए निर्देशक बिमल रॉय फिल्म सुजाता का निर्माण कर रहे थे। नारी प्रधान और सामाजिक विषमता के विषय वाली ये फिल्म और इसका सुजाता का किरदार बड़ा ही जटिल था। इस फिल्म के रोल के लिए नूतन का चुनाव हुआ और नूतन ने भी अपनी सशक्त अदाकारी से इस फिल्म के इस किरदार में जैसे जान फूंक दी। फिल्म जबरदस्त हिट हुई। इस फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।

नूतन अपनी अभिनय क्षमता के कारण जटिल से जटिल भूमिकाओं को साकार करने में महारत रखती थीं। फिल्म सुजाता के बाद जो बहुचर्चित उनकी फिल्म आई वो थी बंदनी। सन 1963 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। बिमल दा ने इस फिल्म का विषय भी बड़ा ही हटके चुना था। स्त्री का मनोविज्ञान और उसकी पेचीदगी को दर्शाने का मार्मिक चित्रण था इस फिल्म में। जैसे कि फिल्म के नाम से ही जाहिर होता है, ये फिल्म नारी प्रधान फिल्म थी। नूतन ने अपने तरल अभिनय से विषय वस्तु की जटिलताओं को समझते हुए बड़ी सहजता से उन्हें अभिनीत किया था। इस फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया।

1959 में एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पेइंग गेस्ट में उन्होंने अदाकारी के कुछ रोमानी अंदाज पेश किए। इनके हीरो थे एवरग्रीन अदाकार देवानंद।

0: बनना क्या चाहेगा।
1: कुछ ऐसी ही रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी अनाड़ी, जो आई थी सन 1959 में। इस फिल्म में नूतन के हीरो थे अपने जमाने के ग्रेट शोमैन राज कपूर।

रोमांटिक कॉमेडी फिल्म छलिया में भी उन्होंने राज कपूर साहब के साथ हेरोइन का रोल निभाया था। फिल्म के निर्देशक थे मनमोहन देसाई।

1958 में एक फिल्म आई थी सोने की चिड़िया। इस म्यूजिकल फिल्म में भी नूतन ने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। दोस्तों, देवानंद साहब के साथ उनकी एक और चर्चित फिल्म आई थी 1960 में, जिसका नाम था तेरे घर के सामने।

इसी दौरान यानी सन 1959 के आसपास नूतन ने नेवल कमांडेंट रजनीश बहल से शादी कर ली और वो नूतन समर्थ से नूतन समर्थ बहल बन गई। इसी साल आई थी फिल्म छबीली। इस फिल्म में उन्होंने जितने गाने उन पर फिल्माए गए थे स्वयं ही गाए थे। इस फिल्म का निर्माण किया था उनकी माताजी शोभना समर्थ ने।

60 से 70 के दशक में उनकी कई फिल्में आईं। बहुत कम फिल्में हैं जो नहीं चली। लगभग हर फिल्म का संगीत हिट था, चाहे 1952 की फिल्म शीशम हो या 1954 की फिल्म शबाब हो, 1956 की बारिश हो या 1957 की फिल्म दिल्ली का ठग हो, 1958 की फिल्म आखिरी दांव हो या 1964 की फिल्म खानदान हो, 1965 की फिल्म रिश्ते नाते हो या हो 1968 की फिल्म सरस्वती चंद्र।

0: जहां तक फिल्म फेयर के चौथे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का सवाल है, वो उन्हें मिला था फिल्म मिलन के लिए, जो रिलीज हुई थी 1967 में। प्रसाद प्रोडक्शंस के बैनर तले ये फिल्म बनी थी।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,

0: करे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ।

1978 में आई फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की। इस फिल्म में उनके सशक्त अभिनय के लिए भी उन्हें मिला था फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। इस समय उनकी उम्र थी 42 साल।

0: दोस्तों, अभिनेत्री नूतन ने मुख्य अभिनेत्री की भूमिकाएं तो कई की, साथ ही साथ चरित्र भूमिकाएं भी की हैं। इनमें जो यादगार हैं वो हैं 1986 में आई फिल्म जो कि दिलीप कुमार के साथ थी, फिल्म कर्मा।
1: बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी, डू यू लव मी,
2: तो क्या कहा आपने?
1: अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूं मैं आई लव यू, सुबह सवेरे काम पे जाऊं आई लव यू।

1985 में फिल्म मेरी जंग, जिसमें उन्होंने अभिनेता अनिल कपूर की माता का रोल किया था। दोस्तों, नूतन ने कुल 70 फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी पहली फिल्म थी 1950 में आई फिल्म हमारी बेटी, और आखिरी फिल्म थी 1994 में आई फिल्म इंसानियत, जो उनके स्वर्गवास के पश्चात रिलीज हुई थी। दोस्तों, उनके बेटे मोहनीश बहल एक सफल अभिनेता हैं। नूतन की छोटी बहन अपने जमाने की जानी मानी मारूफ अदाकारा रही हैं तनुजा। इन्हीं की बेटी है काजोल भी, जो हिंदी फिल्मों में एक कामयाब अदाकारा हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने फिल्मों में नूतन के अभिनय को सराहते हुए सन 1974 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। हिंदुस्तानी फिल्मों में अदाकारी के शिखर को छूने वाली शोभना कुमार सेन समर्थ की ये छबीली बेटी अपने बेटे मोहनीश बहल को खानदान की अदाकारी की ये यादगार धरोहर सौंपकर 54 वर्ष की छोटी सी आयु में 21 फरवरी 1991 में हम लोग की दुनिया छोड़ परलोक सिधार गई।

0: तो ये था आज के फनकार ये कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने की जाने मानी अभिनेत्री नूतन पर। शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

खेल जगत कार्यक्रम सुनने वालों को हमारा नमस्कार। आइए बात करते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम अक्टूबर में न्यूजीलैंड के ऐतिहासिक दौरे पर जाएगी। दौरा 22 अक्टूबर से शुरू होकर 1 दिसंबर तक चलेगा। भारतीय टीम 40 दिनों में कुल 12 मुकाबले खेलेगी, जिसमें 5 T20, 5 वनडे, 2 टेस्ट शामिल हैं। यह मैचों की संख्या के लिहाज से न्यूजीलैंड क्रिकेट इतिहास में किसी भी मेहमान टीम का सबसे बड़ा दौरा है। भारतीय टीम ने भी इस सदी में किसी द्विपक्षीय दौरे पर 11 से ज़्यादा मैच एक साथ नहीं खेले हैं। इस सीरीज़ के जरिए भारत व न्यूजीलैंड के बीच 100 साल के खेल संबंधों का जश्न भी मनेगा। 1926 में भारतीय आर्मी की हॉकी टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी। टीम इंडिया 6 साल से ज़्यादा समय बाद न्यूजीलैंड की धरती पर कोई टेस्ट मैच खेलेगी। पिछली बार भारतीय टीम ने 2019-20 में यहां टेस्ट खेला था और उसने सीरीज के दोनों मैच हारे थे। वहीं साल 2024 के अंत में न्यूजीलैंड ने भारत को उसी की सरजमी पर टेस्ट सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया था। यह क्रिकेट इतिहास में पहली बार था जब भारत अपने घर में 3 या उससे ज़्यादा मैचों की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप हुआ था। ऐसे में भारत के लिए यह दौरा सम्मान की लड़ाई ही रहा है। लिमिटेड ओवर्स की सीरीज में दोनों टीमें इसी साल भारत में भिड़ी थी। तब न्यूजीलैंड 2-1 से वनडे जीता, जबकि T20 में भारत 4-1 से जीत हासिल कर आगे बढ़ा था।

चलिए आइए बात करते हैं अफगानी टेस्ट की तैयारी में जुटी टीम। यशस्वी राहुल ने बहाया पसीना। अफगानिस्तान के खिलाफ 6 जून से शुरू होने वाले एकमात्र टेस्ट से पहले भारतीय टीम ने लाल गेंद से अभ्यास शुरू कर दिया है। शुभमन गिल की अगुवाई में यशस्वी, केएल राहुल और कुलदीप यादव समेत खिलाड़ियों ने नेट्स में जाकर पसीना बहाया, जबकि मुख्य कोच गौतम गंभीर ने तैयारियों की निगरानी की। यह भारत का इस साल का पहला टेस्ट होगा। इसी बीच पूर्व लेग स्पिनर साईराज बहुतुले को टीम स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है।

नॉर्वे चेस के 8वें राउंड में भारत के आर प्रगनंदा ने वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को क्लासिकल गेम में हरा दिया है। अब प्रागी 12 पॉइंट्स के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान में पहुंचकर खिताबी रेस में मजबूती से बने हुए हैं। वे टेबल टॉपर अमेरिका के वेस्ले सो 14 अंक में सिर्फ 2 पॉइंट्स पीछे हैं। टूर्नामेंट में 2 राउंड बाकी हैं। टूर्नामेंट में 7 दिनों के भीतर प्रागी ने कार्लसन को दूसरी बार शिकस्त दी है। इसके साथ ही वह

इंडोनेशिया ओपन टूर्नामेंट में भारत के युवा शटलर आयुष सेट्टी ने रोमांचक जीत के साथ प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। विश्व रैंकिंग में 20वें स्थान पर मौजूद आयुष ने 66 मिनट के कड़े मुकाबले में दुनिया के 15वें नंबर के खिलाड़ी होंग यांग वेंग को 8-21, 22-20, 21-15 से शिकस्त दी। हालांकि पुरुष डबल्स में भारत को बड़ा झटका लगा,

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पेन कमिंग्स ने संकेत दिया है कि वे इंटरनेशनल शेड्यूल और वनडे वर्ल्ड कप को प्राथमिकता देने के लिए अगले साल आईपीएल के नाम वापस ले सकते हैं। 33 वर्षीय कमिंग्स पिछले 3 सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान हैं। अगले साल ऑस्ट्रेलियाई टीम का क्रिकेट कैलेंडर बेहद चुनौतीपूर्ण है। जनवरी फरवरी में ऑस्ट्रेलिया टीम भारत में 4 टेस्ट की सीरीज खेलेगी, फिर मार्च में मेलबॉर्न में इंग्लैंड के खिलाफ 150वीं वर्षगांठ वाला ऐतिहासिक टेस्ट है। इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज व अक्टूबर नवंबर में वर्ल्ड कप है। कमिंग्स ने कहा है अगले साल किसी न किसी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा और वह टेस्ट या वर्ल्ड कप नहीं होगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारतीय हॉकी टीम ने पूल ए के अपने अंतिम मैच में सिंगापुर को 25-0 के विशाल अंतर से करारी शिकस्त दी। पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी भारतीय टीम सभी पूल मैच जीतकर टॉप पर रही। भारत की 10 अलग अलग खिलाड़ियों ने स्कोर शीट पर अपना अपना नाम दर्ज करवाया। नौशीन नाज मैच की सबसे बड़ी स्टार रही हैं, जिन्होंने 7 गोल दागे। प्लेयर ऑफ द मैच गीताश्री, उसने 5 गोल किए। कप्तान स्वीटी कूजर ने 4 और प्रियंका मिंज ने 3 गोल किए। सेमीफाइनल में भारत का सामना चीन से होगा।

सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर एलिस पेरी बोली, अलग अलग तरह के खेल खेलें, बेहतर खिलाड़ी के साथ बेहतर इंसान भी बनेंगे। जब 16 साल की एक लड़की सन 2007 में ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पहनकर डार्विन के एक छोटे से मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने उतरी, तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि वही खिलाड़ी एक दिन सदी की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर जो हैं वो चुनी जाएंगी। लगभग 2 दशक बाद एलिस पेरी के नाम रिकॉर्ड का अंबार है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि खेल के साथ बना रहा वह रिश्ता जिसने उन्हें लगातार आगे बढ़ने से प्रेरणा दी। 35 वर्षीय ऑलराउंडर पेरी कहती हैं कि उनके करियर का सबसे खूबसूरत पहलू यह रहा कि हर साल कुछ नया सीखने का और खुद को बेहतर बनाने का मौका मिला है। क्रिकेट लगातार बदलता रहा, खासकर T20 में नए शॉट्स और नई टेक्निक सीखना उनके लिए चुनौती भी था और आनंद भी था। उनके अनुसार खेल में असली संतोष तब मिलता है जब आप अपनी सीमाओं को पहचान कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ एशेज टेस्ट भी पेरी की यादों का अहम हिस्सा हैं, खासकर 2017 में नॉर्थ सिडनी ओवल पर लगाया गया दोहरा शतक। वे कहती हैं कि उस पारी की सबसे बड़ी खुशी यह थी कि उनके पिता स्टैंड में बैठकर उसे देख रहे थे। क्रिकेट सिखाने से लेकर हर मैच से पहले बात करके उसके पिता आज भी उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं। पेरी अपनी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय परिवार को देती हैं। उनके लिए माँ प्रेरणा है, पिता मार्गदर्शक हैं और बड़ा भाई सबसे अच्छा दोस्त। वहीं कप्तानों की बात करें तो गैग लैनिंग की शांत नेतृत्व क्षमता और कठिन परिस्थितियों में फैसले लेने की कला ने उन्हें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। जी हाँ, नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को सलाह देते हुए पेरी कहती हैं

ये सिर्फ एक खेल का हमें अंदाज़ा ना हो बल्कि एक खेल तक सीमित ना रहें। जितने ज़्यादा खेलेंगे, जितने ज़्यादा अनुभव हासिल करेंगे, उतना बेहतर खिलाड़ी और इंसान बनेंगे। उनके मुताबिक खेल का असली मकसद आनंद है। अगर मज़ा ख़त्म हो गया तो खेल का सबसे खूबसूरत हिस्सा भी खो जाएगा। और अब एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, सुनवाते हैं आपको ये गीत।

विश्व चैंपियन में देश का नाम रोशन करने को कर्ज ले रही बेटियां, अंडर 20 विश्व हैंडल के लिए ये सब खो रहा है। एक ओर ओलंपिक और एशियाड पदक के लिए खिलाड़ियों पर जमकर धन वर्षा हो रही है, वहीं एक विश्व चैंपियनशिप में खेलने के लिए बेटियों को कर्ज लेकर राशि जुटानी पड़ रही है। चीन के जिनझोंग में 24 जून से होने जा रही हैंडबॉल की अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में 14 सदस्यीय महिला टीम 3-3 लाख रुपए की व्यवस्था कर रही है। टीम के सदस्यों में किसी के पिता नहीं है, तो किसी के पिता का डायलिसिस चल रहा है और किसी के पिता 10 से 15 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं। लेकिन विश्व चैंपियनशिप में खेलने का सपना पूरा करने के लिए बेटियां पैसा जुटाने में लगी हैं। दरअसल भारतीय हैंडबॉल संघ की खेल मंत्रालय से मान्यता रद्द होने के कारण इस दौरे को सरकारी खर्च की मंजूरी नहीं मिली है।

फीफा विश्व कप में इस बार कई नई प्रतिभाएं खुद को साबित करने के लिए उतरेंगी। कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर घर की विरासत को आगे बढ़ाने का दबाव रहेगा। आइए जानते हैं कुछ ऐसे फुटबॉलरों के बारे में जिनके पिता अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए विश्व कप में छाप छोड़ चुके हैं और तब उनसे खिताब जीतने की उम्मीद लगाई जा रही है। लुका जिदान, अल्जीरिया। फ्रांस को 1998 का विश्व कप जिताने वाले जिनेदिन जिदान के बेटे लुका जिदान इस बार अल्जीरिया के लिए विश्व कप खेलेंगे। गोलकीपर लुका ने फ्रांस की यूथ टीम से खेलने के बाद अल्जीरिया में 2024 में पदार्पण किया। वे 2025 का नेशंस कप खेल चुके हैं। अर्लिंग हॉलैंड, नॉर्वे। अर्लिंग पिता आल्फी हॉलैंड को पीछे छोड़ चुके हैं जिन्होंने 1994 में विश्व कप खेला था। मैनचेस्टर सिटी के स्ट्राइकर दुनिया के सबसे घातक गोलकीपर और गोल स्कोरर में शुमार हैं। वह टीम के लिए 55 गोल कर चुके हैं। 1998 के बाद नॉर्वे का वह पहला विश्व कप था।

महिला अंडर 18 एशिया कप का हॉकी में भारत ने सिंगापुर को 25-0 से करारी शिकस्त दे रखी है। पूल ए के अंतिम मैच में भारत ने एक तरफा जीत दर्ज की है। आईसीसी ने महिला T20 विश्व कप में हिस्सा ले रही सभी 12 टीमों में एक स्टार गेंदबाज को चुना है, जिसे सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जा रहा है। आईसीसी ने भारत की गेंदबाजी की असली धुरी 7 माह पहले भारत को महिला वनडे का विश्व खिताब दिलाने में योगदान देने वाली दीप्ति शर्मा को ही माना है। भारतीय टीम फिर दीप्ति उम्दा प्रदर्शन करने की उम्मीद करेगी, ताकि उसे T20 में सबसे और पहली बार चैंपियन बनने का मौका मिले। अनुभवी ऑफ स्पिन ऑलराउंडर दीप्ति ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में अपना एक दशक पूरा किया।

पुरुष 100 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी गुरिंदर वीर सिंह ने 21-22 जून को चीन के शांग्यू में होने वाली दूसरी एशियाई रिले चैंपियनशिप में 29 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई करने का फैसला लिया है। भारतीय एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष बहादुर सिंह ने बताया कि भारतीय टीम सभी 6 स्पर्धा जो मैच हैं उसमें भाग लेगी। एशियाई रिले का तीसरा संस्करण भारत में ही होगा। युवा शटलर आयुष सेट्टी ने इंडोनेशिया ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। विश्व नंबर 20 आयुष ने विश्व नंबर 15 हॉन्ग यांग वेंग को 8-21, 22-20, 21-15 से हराया।

ईशांत शर्मा ने बचपन के कोच श्रवण कुमार को रणजी ट्रॉफी में 7 विकेट लेकर जम्मू कश्मीर के पहला खिताब दिलाने वाले पेसर आकिब नबी को अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में बैकअप बनाए जाने पर सवाल उठाया। श्रवण ने कहा, रणजी में कमाल करने वाले को एकादश में जगह क्यों नहीं मिल रही? जिन्होंने बहुत कम विकेट लिए उन्हें मौका मिल रहा है, फिर रणजी का क्या मतलब? या तो इसे बंद कर दो या प्रदर्शन को मान्यता दो। तो अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम में एक और गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल जगत। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। आप पेश है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम चांदनी रातें।

कार्यक्रम चांदनी रातें सुनने वालों को संजय शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख ही लिया है।

चांदनी रातें कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। तेरी आंखों में एक सपना देखा है, हर हंसी में तेरा ही नाम लिखा है। तू दूर है फिर भी मेरे पास है, तेरी रूहानियत को इतना हमने चाहा है।

चांदनी रातें कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। तेरी मुस्कान से जहां रोशन हुआ, तेरी हंसी से मेरा आसमान महका, तू जो पास होकर यूं ही धड़कती है दिल में, हर घड़ी मेरे लिए खास है।

चांद जाते कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। कहते हैं किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते, जिनके बिना दिल ना लगे उसे मोहब्बत कहते हैं।

चांद राते कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। मेरी दुनिया में बस तुम हो और कुछ नहीं, तेरे बिना ये जिंदगी कोई ख्वाब नहीं।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम चांदनी रातें ही संपन्न होता है। संजय शर्मा को दीजिए अनुमति, नमस्कार। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। कृपया लेके प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण

0: ये तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ अलका गुर्जर और डॉ सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चम्फाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:05 हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। अपनी प्रातःकालीन सभा में सुबह 5:55 पर पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।